0: कतल क्या था और कातिल कौन था।
1: सौदागर मूवी का ये गाना आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज में ये वाला गाना था। सुबह के 5:32 हो चुके हैं और पता नहीं आप मेरी तरह यकीन कर पा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आपको फील होता होगा या नहीं कि इतनी जल्दी साल बीतने वाला है। मतलब हम सितंबर में हैं, आज 5 सितंबर हो गई है, घड़ी के कांटे भाग रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अरे मतलब अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन के पलों को ना खुशहाल बनाना चाहिए, जो भी है बस यही पल है। भोर सुहानी सुनते रहिए, मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था। खैर, गर्मियां बस जो हैं जाने ही वाली हैं और सर्दियां शुरू होने वाली हैं। फिर हम दिल्ली वाले जो हैं आलू पूड़ी ज़्यादा खाएंगे और फिर वो भी तीखी। मतलब देखिए, वैसे तो हम दिल्ली वाले खाने पीने के मामले में मौसम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ठंडी में हम लोग ना दो मेथी के पराठों की जगह चार खा लेते हैं और सच में बड़ा मज़ा आता है। नवंबर दिसंबर में यानी मुफ्त की एसी जैसी ठंडी हवा में मिलती है। और बाकी हाँ, एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी त्यौहार की ढेरों बधाई। बाकी गणपति जी के आगमन की तैयारी भी जोर शोर से होने लगी है। 14 सितंबर से श्री गणेश जी हमारे घर विराजमान होंगे और घेवर के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो होगी मोदक की मार्केट में। यानी खुशियों के दिन आ रहे हैं। बाकी अच्छा, खुशियों के दिन आ रहे हैं, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ भोर सुहानी शो से और आपसे अनुमति मांग कर जाऊँगा। बाकी दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा और हाँ, अगले घंटे आपके साथ होंगी सुनीता चौहान अर्पण शो में। तो इसी तरह FM गोल्ड चैनल सुनते रहिए। और वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ कि FM गोल्ड 1 सितंबर को जो है पूरे 25 साल पूरे कर चुका है। आपकी ढेर सारी विशेस देखी थी मैंने, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे मेरे मन में आया कि आपसे बात करूँ इस बारे में भी। तो अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी थोड़ी ही देर में सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें सुनीता चौहान

मैं आपके साथ होंगी। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान अयोध्या कांड भाग 44। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे सुनीता चौहान। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे सुनीता चौहान के साथ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। 9:10 पर आप सुनेंगे भावना संजीवा के साथ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। फरमाइशी कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स भावना संजीवा के साथ आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:10 पर फिल्मी सॉन्ग्स आप सुनेंगे भावना संजीवा के साथ। सुबह 11:25 पर आप सुनेंगे लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज होंगे संगीतकार सलील चौधरी। इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगे संगीता राय। दोपहर 2:30 पर संगीत.com इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे संगीता रॉय के साथ। दोपहर 3:10 पर पूर्वोत्तर डायरी आप सुनेंगे सीमा वर्मा के साथ। दोपहर 3:25 पर सीमा वर्मा आपके लिए लेकर आएंगे रिक्वेस्ट शो मन भावन। शाम 4:10 पर सीमा वर्मा के साथ आप सुनेंगे फिल्मी गीत। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते सीमा वर्मा के साथ। इसमें आप 80s और 90s के गीतों का आनंद ले सकते हैं। शाम 6:10 पर विश्लेषण कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम होगा, इसमें रेशमा तिवारी आपके साथ होंगी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। शाम 7:25 पर सांझ ढले इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे। इसमें आप भूले बिसरे पुराने गीतों का आनंद ले सकते हैं रेशमा तिवारी के साथ। रात्रि 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विकास जुत्शी के साथ कार्यक्रम अखिल भारतीय साहित्य की पत्रिका कार्यक्रम। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विकास जुत्शी के साथ कार्यक्रम हर सिंगार। रात्रि 11:10 पर मार्केट मंत्र आप सुन पाएंगे। रात्रि 11:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत विकास जुत्शी के साथ। इसमें आप कुछ पुराने और कुछ नए गीतों का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे

0: जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। सुबह के 6:11 और 55 सेकंड ये समय है भक्ति रस में डूब जाने का कार्यक्रम अर्पण के माध्यम से, और शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न करने का कार्य करता है। इसलिए वो अच्छा और बुद्धिमान है।

आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशानवासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवनवासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: भगवान बुद्ध ने कहा, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है और ये एक अटूट सत्य है।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

समय नोट कर लें, 6:31 और 4 सेकंड। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज शनिवार है। हमेशा की तरह शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ।

कबीरदास जी कहते हैं, कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। अर्थात शिष्य कुबुद्धि रूपी कीचड़ से भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्म की बुराई गुरु क्षण में नष्ट कर देते हैं।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: और अब समय हो चला है कि हम जाने देश दुनिया का हाल और सुने समाचार। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब आप सुनेंगे समाचार, और समाचारों के बाद मैं यही मिलूंगी आपसे, यानी गोल्ड चैनल पर आपके लिए लेकर आऊंगी प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात, ठीक 7:10 पर। तो करिए इंतजार और सुनिए समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षकान् शिक्षाविदश्च स्वज्ञानं निरन्तरं प्रवर्धनाय प्रौद्योगिकीम् अङ्गीकरणाय नवोन्मेषपूर्णाः शिक्षणपद्धतीश्च आत्मसात्करणाय च आहूतवती। अद्य शिक्षक दिवसावसरे स्वीय सन्देशे एषा उक्तवती यत् शिक्षकाः शिक्षाविदश्च स्वमार्गदर्शनेन परामर्शेन च प्रतिभापोषणे चरित्रनिर्माणे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। सा उक्तवती यत् समर्पिताः संवेदनशीलाश्च शिक्षकाः विद्यार्थिनां विशिष्ट क्षमताः ज्ञात्वा तान् प्रेरयन्ति तथा उत्कृष्टतां प्राप्तुं प्रयत्नाय प्रोत्साहयन्ति। प्रसिद्धस्य शिक्षाविदः लेखकस्य दार्शनिकस्य पूर्वराष्ट्रपतेः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् इत्यस्य जन्मजयन्त्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य पञ्चमे दिनांके शिक्षक दिवसः आचर्यते।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष

0: 126 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: वी हैव एक्सटेंडेड आवर सॉलिडैरिटी एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ नेपाल।
2: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: एंड रिकवरी एफर्ट्स इन द कंट्री।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through the guidance and mentorship. Teachers' Day is observed every year on 5th of September to mark the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, a renowned educationist, author, philosopher and former president. The occasion honours the vital role of teachers and educators in nation building. On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of

शुरू से हमारी पहचान कराते हैं, मुश्किल फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, कैलकुलेशंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाकर हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, दिल से करते हैं सलाम अपने सभी मेंटर्स और टीचर्स को। यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, जिसे आप ट्यून करते हैं 100.1 MHz पर। गोल्ड सुप्रभात लेकर साथ हूं मैं सुनीता।

चकदाना। 1955 की फिल्म श्री 420 का ये सॉन्ग लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में था। स्क्रीन पर एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स से पहेलियां पूछती हुई नरगिस जी। टीचर्स और स्टूडेंट्स के इस प्यारे से

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है गोल्ड सुप्रभात, आपके फेवरेट एफएम गोल्ड पर। मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान, ये कहना है मौसम विभाग का। वैसे कल भी बहुत बहुत बारिश हुई और कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत डेकोरेशन की थी कृष्ण जन्माष्टमी की, उन्हें थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन वैसे तो जन्माष्टमी पे हमेशा ही बारिश होती है, इसकी आदत हो चुकी है हमें। बादल छाए रहेंगे आज भी, बारिश की भी संभावना है। और प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी और प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा पर फिल्माया गया ये मजेदार सॉन्ग, अब एंजॉय करते हैं। प्रोफेसर फिल्म प्रोफेसर ये फिल्म नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर थे ये दोनों। और ये जो फिल्म थी ना, मैं बोलते बोलते एकदम से मैंने अपनी जबान पे काबू कर लिया है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये फिल्म हम बहुत देखते हैं। और मैं हूँ प्रोफेसर, सॉरी मैं हूँ सिर्फ सुनीता।
1: अरे बस बस बस बस, सांपे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है
1: तो चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर सारे गा मा सारे गा का सारे मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा।
1: 51 साल पुरानी ये वो फिल्म है जिसे हम आज भी देखना पसंद करते हैं। जबरदस्त कॉमेडी चुपके चुपके। चलिए अब आज के प्रोग्राम्स की बात कर लें तो सुबह 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स और कलाकार बेमिसाल दोपहर 1:10 पर होगा, जिसमें आज संगीतकार सलील चौधरी जी की बातें होंगी। तो मैंने नेक्स्ट कॉम्पोजिशन सलील दा की ही चुनी है।

ये आवाजें येसुदास और आशा भोसले जी की और फिल्म थी छोटी सी बात। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का प्रोग्राम आज सवेरे। फिलहाल थोड़ा सा गाना एंजॉय करना भी बाकी है।

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रेणु कटारिया के साथ आज मैं नवीन सक्सेना। रेणु, आज 5 सितंबर है
1: जी।
0: और जब भी ये तारीख आती है तो सबसे पहले सामने आती है एक ऐसी शख्सियत जिसने शिक्षक को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत माना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।

0: रिनवाल्ड शिक्षक दिवस है, यानी उस गुरु को सलाम करने का दिन जिसने हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि जिंदगी को पढ़ना सिखाया।
1: जी, वेरी ट्रू नवीन। एंड टॉकिंग अबाउट टीचर्स डे, यू नो हाउ इन टुडेज टाइम्स द टीचर्स आर बिकमिंग मोर अप्रोचेबल, मोर सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड और आल्सो क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस वेयर स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल शेयरिंग देयर थॉट्स। सो आई थिंक टीचर्स शुड दीस डेज बी मोर मेंटर्स एंड फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज सच अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर इमोशनल चैलेंजेस आर सो many for students these days. And थोड़ा सा मैं एक अपना एनेक्डोट यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी नवीन। When we were kids and I remember when it was the first time for me to go on stage and talk about, I think it was either reciting a poem or something like that, which I remember it. It was my Hindi teacher who said that now go on the stage and do what you can do your best. And I was so scared that I have to talk in front of so many students. But you know what she said, you are the best, and that was the first competition that I won.
0: Binu, जानते हैं कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों का, हमारे टीचरों का हमारे ऊपर प्रभाव रहा होगा, और तभी तो शायद उन्होंने बहुत कुछ उस समय सिखाया होगा जो आज हम आकाशवाणी के माध्यम से बहुत से लोगों को अपनी बात कह पाते हैं ना।
1: बिल्कुल, सो वेरी ट्रू। And you know what, even the teachers are did also say that even if you are the sweetest of all the mangoes, there will always be people who prefer strawberries. So stop trying to fit in, dear students, and learn to stand out.
0: और जानते हैं यही वो पहला शख्स था, शिक्षक, जिसने हमें बताया कि ये दुनिया कैसी है और हमें क्या सीखना है। और इन्हों जानते हैं फिर चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो, वो भी तो हमारी पहली शिक्षक है,
1: हमारी पहली टीचर हमारी मदर्स होती हैं।
0: चलिए अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी पायल शर्मा की जुबानी।

0: गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है, क्योंकि गुरु केवल हमें ज्ञान नहीं देते, वे हमें ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाते हैं। हर वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये दिन भारत के महान दार्शनिक शिक्षाविद और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शिक्षक दिवस केवल शुभकामनाएं देने, फूल देने या शिक्षकों का सम्मान करने का दिन नहीं है। ये उस रिश्ते को याद करने का दिन है जिसने हमारे व्यक्तित्व को आकार दिया। याद कीजिए वो शिक्षक जिन्होंने हमारी छोटी सी उपलब्धि पर भी हमारा हौसला बढ़ाया, वो शिक्षक जिन्होंने हमारी गलतियों पर हमें डांटा जरूर, लेकिन उन गलतियों से सीखना भी सिखाया, वे शिक्षक जिन्होंने शायद हमसे कहा हो तुम कर सकते हो, और कभी कभी किसी विद्यार्थी के लिए ये चार शब्द ही उसकी पूरी दुनिया बदलने के लिए काफी होते हैं। ज्ञान का एक भाग गुरु से मिलता है, एक भाग अपनी बुद्धि और प्रयास से, एक भाग अपने सहपाठियों से, और शेष समय तथा अनुभव के साथ प्राप्त होता है। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अरिणु, आज इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
2: And the National Testing Agency NTA has released the admit cards for candidates appearing for UGC NET June 2026 in English, Commerce and Sociology on the 9th and 10th of this month. So dear students, gear up for your exams and all the best to all of you. And candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. The NTA announced retest for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The English paper will be held on the 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The Sociology paper will be held on the 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। अगली खबर, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे।

0: ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका की भी शुरुआत करेंगे।
1: एंड नवीन, आप मानते ही होंगे कि वन हैज़ टू बी वेरी होपफुल एज टॉकिंग अबाउट नेपाल, देर हैज़ बीन अ मेजर रे ऑफ होप विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द डेवस्टेटिंग फ्लड्स इन दीज एरियाज, एंड एवरी सिंगल लाइफ इज डीपली वैल्यूबल। सो टॉकिंग अबाउट दैट, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट थ्री मोर इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग अ 5-year-old चाइल्ड हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द फ्लड हिट त्रिशूली बाजार एरिया ऑफ नेपाल, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing border updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home, and here we would like to say that Nepal, we stand with you.
0: बिल्कुल, नेपाल के हम साथ हम शुरू से थे और अब भी हैं, लेकिन कभी कभी रिंग ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, इनमें कहीं ना कहीं मानव हाथ तो रहा ही होगा, भले ही आज नहीं, लेकिन जिस तरह से हम दोहन करते जा रहे हैं भूमि का, शायद इससे भी बड़ी आपदाएं कहीं हमारा इंतजार न कर रखी हो।
1: एंड वी आर लिसनिंग हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग द राइज इन द सी वाटर लेवल्स आल्सो, और आप देख ही रहे हैं कि कैसे ग्लेशियर्स बर्स्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं द ह्यूमंस आर रिलेटेड टू ऑल दीज डिजास्टर्स,
0: एंड दिस इज द वार्निंग टू द सोसाइटी कि अब भी नहीं संभले
1: तो फिर हम कभी नहीं
0: संभल पाएंगे।
1: वी विल लूज आवर मदर अर्थ।
0: अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका के वास्तविक आकार को बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया।
1: मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, द वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 बिगिंस एट अहमदाबाद इन गुजरात टुडे। द इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर 105 एथलीट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज। इट इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग द वर्ल्ड Shri Para Series. The third stage of the series is being held at the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad and will continue till the 9th of this month, and Union Home and Corporation Minister Amit Shah virtually inaugurated the event last evening.
0: और अब बात आपके शहरों की। सबसे पहले दिल्ली, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कॉर्केट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, और इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। तो घर से निकलने से पहले एक बार एडवाइजरी जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट जाने में या रेलवे स्टेशन जाने में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े।
1: जी, यस।
0: अगली खबर, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं करा पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा करा सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
1: मूविंग ऑन टू चेन्नई मेट्रो न्यूज, ज़ाइस, अ जर्मन मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, launched an innovation hub at IIT Madras Research Park, Chennai. The center will focus on advanced frugal engineering, harsh environment optics, robotics and fluid dynamics, while promoting interdisciplinary research with real-world industrial applications. The hub will foster collaboration to advance research, validate new ideas and translate them into scalable solutions.
0: Baat Mumbai ki. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता जनवरी से मार्च 2027 के बीच लागू हो जाएगा। मुंबई में भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप भारत के जनसांख्यिकी लाभ और यूरोप की प्रौद्योगिकी एवं पूंजी का उपयोग करके एक दूसरे के लिए प्रेरक शक्ति बन सकते हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 5 अक्टूबर तक सभी अनाधिकृत और रद्द किए गए ऑटो रिक्शा को सड़कों से हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।

0: And moving on to Bengaluru Metro News, the Karnataka government has signed an MOU with Australia-based Inc. Innovation Global Private Limited to strengthen technology, startup, research and investment ties with New South Wales. The partnership will help Karnataka startups access Australian markets, investors and industry networks with focus on deep tech, AI, biotechnology, clean technology, quantum computing, defense and aerospace.
1: बात कोलकाता की। जन स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में एक विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार अधिकारियों ने 1 सितंबर से शुरू हुए इस सप्ताह के अभियान के पहले 3 दिनों में 2,337 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 1,277 नमूने एकत्र किए। जांच के बाद खाद्य तैयारी नियमों का पालन न करने के कारण 17 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया या बंद कर दिया गया।
0: एंड नवीन, आई हैव वन मोर न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु। द बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस यस्टरडे एनफोर्स्ड अ बैन ऑन टू व्हीलर्स ऑन द एक्सप्रेसवे टू केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलॉन्ग विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन 3 अदर मेजर फ्लाईओवर्स। द रिस्ट्रिक्शन cover the International Airport Row Elevated Corridor, BJS Flyover, Peenya Elevated Corridor and the Silk Board Ragi Guda Double Decker Flyover. The measures are aimed at improving road safety and traffic flow and will be monitored through CCTV cameras. Two-wheelers will also be banned on the Electronic City Flyover from September 11.
1: और अब रुख करते हैं मौसम का और जानते हैं कि मौसम के मिजाज कैसे हैं। रेनू, मौसम कभी कभी
0: का मिजाज आजकल बहुत अच्छा है अगर हम दिल्ली की बात करें तो।
1: ऐसा लगता है कि मौसम ट्रायल रन ले रहा है, कभी धूप कभी छांव और कभी बारिश। अब जिस तरह से कल दिल्ली का हाल देखा और आज भी लगभग वैसे ही बना रहेगा, तो अगर घर से निकल रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, छाता साथ ले लीजिए। और अगर बारिश में रोमांस करने का दिन है तो भी आप कर सकते हैं,
0: और अगर पकौड़े खाने का दिन है जरूर खाइए।
1: तो दिल्ली वालों के लिए आज आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, यानी सुबह से ही आज लगभग आपको बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है।
0: जी बिल्कुल। मूविंग ऑन टू चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म एंड द टेम्परेचर विल बी 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड।
1: और रेनू, अगर मुंबई की बात करें ना, तो मुंबई वालों के लिए तो ऐसा है कि जैसे बारिश उनकी ना एक फैमिली मेंबर की तरह है, कभी भी आ जाती है कभी भी चली जाती है। आज भी बारिश इसी तरह से आएगी और जाएगी, तापमान 27 और 28 के आसपास रहने का अनुमान है। और मुंबईकरों को कहना पड़ सकता है कि अरे बारिश बहन थोड़ा सा धीरे धीरे, ऑफिस पहुंचना है
0: जी।
1: तो छाता रखिए, रेनकोट रखिए और हाँ, ट्रैफिक का हाल जरूर ध्यान में रखिए। अब तो ट्रैफिक अपडेट भी आ जाते हैं, आपको पता नहीं रहेगा।
0: I was about to talk about that, कि अगर आप रेडियो कंटिन्यूअसली सुनते yes. रहेंगे और कंसिस्टेंटली सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पे ज्यादा ट्रैफिक है और कहां कहां पे आपको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है
1: और कहां कहां पे आपको मौसम का हाल कैसा रहेगा, ये भी हम बताते रहते हैं। लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है कि 8 बजे से पहले हमें सुन लेना है ना।
0: सो मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स of rain or thunder showers and the temperature will be around 21 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers and the temperature will be around 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius.
1: और अब बारी कोलकाता की। कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश, गरज चमक की संभावना, तापमान 26 से 33 डिग्री के बीच रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा और दोपहर होते होते तापमान बोलेगा अब जरा मेरी गर्मी भी देखिए। तो ये थे आपके शहरों के मौसम का हाल और अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और जानते हैं कि क्या कुछ कहता है देश दुनिया का इतिहास आज के दिन।
0: जी, सो beginning with the year 1666, on this day, that is the 5th of September, the Great Fire of London was brought under control, destroying the city's structures but resulting in few deaths.
1: 1952 में वो आज ही का दिन था जब भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की दिशा में शुरुआती महत्वपूर्ण प्रयास इसी दौर में हुए थे, जिसने आगे चलकर भारतीय फिल्म संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया था।

0: In 1958, on this day, the year marked the publication of Boris Pasternak's epic novel, Dr. Zhivago, in the United States. This literary masterpiece would go on to capture the hearts of readers around the world.
1: 1972 म्यूनिख ओलंपिक त्रासदी। म्यूनिख ओलंपिक के दौरान आतंकवादी हमले में इजरायली खिलाड़ियों और अधिकारियों की हत्या हुई थी और ये आधुनिक ओलंपिक इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है।
0: On this day in the year 2000, Tuvalu, a group of 9 coral islands in the West Central Pacific with a population of about 10,000, became the 189th member of the United Nations. And on the same day, that is 5th of September in the year 2001, at a scientific conference in Washington, D.C., this day, a scientist described an observation of energy flares that provided strong evidence of the theorized black hole at the center of the Milky Way galaxy.
1: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और अब उन विभूतियों को याद करते हैं जो आज हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सबसे पहले याद करते हैं मदर टेरेसा को, जिनका निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। मानव सेवा को अपना सर्वस्व देने वाली मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबों, असहायों और बीमारों की सेवा में लगा दिया था। 5 सितंबर उनके निधन की तारीख ही नहीं बल्कि सेवा और करुणा की उस मिसाल को याद करने का दिन है जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है।
0: And in the year 1950, Teresa founded the Missionaries of Charity, a Roman Catholic religious congregation that had over 4,500 nuns and was active in 133 countries in 2012. Teresa received a number of honors, including the 1962 Ramon Magsaysay Peace Prize and the 1979 Nobel Peace Prize.
1: और अब याद करते हैं उस व्यक्तित्व को जिसका नाम भारतीय औद्योगिक इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता रहा है, रतन जी टाटा। आज ही के दिन 1918 में उनका निधन हुआ था। वो जमशेद जी टाटा के निकट सहयोगियों में रहे और शुरुआती दौर में टाटा समूह को मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: And we are also remembering Nirja Bhanot today, Naveen. She was an Indian flight attendant. On 5th of September 1986, she saved a large number of passengers on board Pan Am Flight 73, which had been hijacked by 4 Palestinian terrorists. And it was making a stopover at the Jinnah International Airport in Karachi, Pakistan. And around 17 hours into the standoff, after she opened an emergency exit the door and began helping passengers escape from the plane, Nirja was shot and killed by the hijackers. And posthumously, Bhanot became the first female recipient and until 2003, the youngest recipient of the Ashok Chakra, the highest peacetime gallantry award of India.
1: और अब बात एक ऐसे साहित्यकार की जिसने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर एक ऐसी चोट की कि पाठक मुस्कुराते हुए बिना सोचने को मजबूर हो जाता है। उनकी कलम हमें हास्य था लेकिन इस हास्य के पीछे समाज का एक आईना था और एक गहरी शक्ति थी। और इनू हम बात कर रहे हैं शरद जोशी की। शरद जोशी ऐसा व्यंग लिखते थे कि उनकी आलोचना से खिन्न होकर लोगों ने उन पर ही व्यंग लिखना शुरू कर दिया। भारत के पहले व्यंगकार जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में एक गद्य पढ़ा और उसके बाद फिर वो इतने प्रसिद्ध हुए कि लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया। अगर आप टेलीविज़न के दर्शक रहे हैं और सीरियल्स के शौकीन रहे हैं तो ये जो है ज़िंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वहाँ जनाब और ऐसे बहुत से धारावाहिक है जो उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म भी लिखी थी और वो फिल्म थी छोटी सी बात, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उसका एक डायलॉग और गीत सुनते हैं और शरद जोशी को याद करते हैं उनके व्यंग के साथ।
2: जी। प्रभा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको लेने गया था।
3: रियली?
2: ऑफ कोर्स। एंड अरुण, तुमने मुझे कहा था कि प्रभा को साथ लेकर आना और तुम खुद चले आए उसके साथ। ए, डोंट लाफ नाउ। हाँ,
4: प्रभा को कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा चलो मैं ही चला चलता हूँ साथ।
2: क्या शॉपिंग करनी थी?
4: अरे भाई, औरतों की कई खरीदारियाँ ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती।

0: और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसकी डायलॉग डिलीवरी और जिसकी एक्टिंग भले ही मुंबई ने देर से पहचानी हो, लेकिन आज वो सबके दिलों पे छाया हुआ है। बात पंकज त्रिपाठी की, आज उनका जन्मदिन है।
1: जी बिल्कुल, ही इज एन इंडियन एक्टर हु अपीयर्स प्रीडोमिनेंटली इन हिंदी फिल्म्स एंड ही डेब्यूड इन 2004 विद अ माइनर रोल इन रन एंड ओमकारा एंड हैज सिंस वर्कड इन मोर देन 40 फिल्म्स एंड 60 टेलीविजन शोज। और अगर हम थोड़ी सी उनकी मूवीज की बात करें तो फुकरे, मसान, नील बट्टे सन्नाटा, बरेली की बर्फी, न्यूटन, एंड यू नो व्हाट नवीन, फॉर न्यूटन त्रिपाठी अर्न सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन।
0: तो मैं और रेनू आपके लिए पंकज त्रिपाठी के कुछ चुनिंदा डायलॉग लेकर आए हैं, सुनते हैं और ध्यान देते हैं कि कैसे कलाकार हैं वो।
1: जी,
2: शक और यकीन में थोड़ा सा फर्क होता है। शक में रूम फॉर डाउट होता है और यकीन में रूम फॉर डाउट नहीं होता है। न्याय बदला नहीं होता, बदलाव की उम्मीद होती है। सीधा और सिंपल तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं।
3: अब लोगों को सोचने से तो रोक नहीं सकते, पर हाँ अब लोगों की सोच बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हो।
2: कभी कभी उत्तर नहीं सही प्रश्न मिल जाए तो भी खेल हो जाता है।
0: तो ये थे पंकज त्रिपाठी, और अब बात उस शख्सियत की जिसने भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई ऊंचाई दी। बात सलिल चौधरी की। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। वो केवल एक संगीतकार नहीं थे रेडू, एक अद्भुत संगीतकार थे, गीतकार थे, कहानीकार थे और संगीत की विभिन्न परंपराओं को जोड़ने वाले कलाकार थे सलिल चौधरी।
1: जी बिल्कुल, एंड यू नो व्हाट नवीन, इन एन इंटरव्यू विद ऑल इंडिया रेडियो सलिल चौधरी डिस्क्राइब्ड हिज कमिंग टू बॉम्बे इन 1953 एज अ स्ट्रोक ऑफ लक। होता है ना कभी कभी आपको पता ही नहीं है आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है और सडनली एक वो यू टर्न ले लेती है। एंड ही वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर अ बंगाली फिल्म अबाउट अ पेजेंट हु वाज sound of his own land and had gone to Calcutta to earn money as a rickshaw puller. And here Rishikesh Mukherjee, who heard it from Chaudhary during a visit to Calcutta, liked it immensely and suggested that he narrate it to the director Bimal Roy. Aur aapko pata hi chal gaya hoga ki hum kis movie ki baat kar rahe hain,
0: Do Bigha Zameen.
1: Ji bilkul, so this is how Do Bigha Zameen movie was made.
0: Rinu, सलिल चौधरी कहानी लिखते थे, कविता लिखते थे, संगीत रचते थे और सबसे बड़ी बात है वो कहानी को ही धुन देते थे।
1: जी,
0: जानती हैं, बारिश की बूंदें हो, खिड़की के बाहर ठंडी हवा हो, कानों में लता मंगेशकर की आवाज हो,

0: And you know what? For working about 20 years in Bengali and Hindi films, he also entered the Malayalam film industry. Dekhiye, music aapko kahan kahan le jata hai. And in 1964, composed music for the movie Chameen. He went on to compose music for films in 13 languages. Aur agar inki baat kare languages ki, to 75 Hindi films, 41 Bengali films, around 27 Malayalam films, and Marathi, Tamil, pata nahi kitni saari.
1: Renu, सलील चौधरी की धुनों में खास बात थी, सादगी के भीतर छिपी जटिलता। ऊपर से गीत गीत जो था बहुत आसान लगता था, लेकिन संगीत को ध्यान से सुनिए तो पीछे कई सुर साथ चलते थे। और छोटी सी बात का ये गीत, जाने मन तेरे दुनिया, देखिए

0: And when he was asked about his method, Chaudhary described that he would usually ask the filmmaker to explain the situation to him, and then Chaudhary would compose a tune to suit the mood, and the lyric writer would set in the words. And this remained in practice for most of his films, including Madhumati, in which Shailendra wrote the lyrics subsequently.
1: Salil Chaudhary ne aam aadmi ki zindagi ko bhi bahut acha puraya apne geeton mein, aur shayad isliye unki dhune aaj bhi purani nahi lagti. मैं और रेनू इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं. जिंदगी कैसी ये पहेली हाय,
2: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए.
1: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही, और उम्मीद है आज सवेरे का हर पन्ना आपको बहुत पसंद आया होगा. अब मुझे नवीन और रेणु को दे इजाजत.
0: प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. नमस्कार.
2: पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया. 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे. सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है. संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया. विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू, और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है. शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
4: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है. यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है. शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं.

0: पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए।

0: और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
3: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
6: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से

0: शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया, कहा हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर एनएचएआई ने कार्यक्रमों की एसओपी में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: has predicted similar weather conditions today as well. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. GSLV successfully places advanced eye in the sky in orbit, writes the Statesman, while the Tribune headlines, India gets eye in the sky as ISRO launches first imaging satellite into orbit. The Asian Age headlines, Yogi warns against bids to harm India, flays opposition. The Pioneer writes about Manjeet Singh Bedi, who was arrested in Punjab. The headline says, FBI's most wanted fraudster arrested in Punjab. The Indian Express writes, Corps commander set to meet Chinese counterpart in northeast. The Hindu reports, two rescued from Nepal tunnel after 9 days. The Asian Age carries a beautiful picture of Sri Krishna Janmasthan temple compound in Mathura, all lit up and devotees thronging the temple on Janmashtami. And finally, award for teacher who turned kids into tutors. The Times of India writes about geography teacher Rajesh Bordoloi, who gives his students, mostly first-generation tribal learners, a daily assignment that goes beyond textbook teaching methods to teach their mothers to read, make UPI payments, access online banking and navigate digital services. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges teachers to embrace technology and adopt innovative teaching methods on Teachers' Day to confer national awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Prime Minister Modi to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Government proposes 3-year permissions and tighter safety rules for importing and transporting petroleum in ISO tank containers. External Affairs Minister S. Jaishankar says, India in continuous touch with Ukraine and Russia to help end the conflict. UN votes to adopt new world map reflecting accurate size of Africa. Stage 3 of World Archery Para Series begins at Ahmedabad in Gujarat. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असाज़ा से जोर देकर कहा है कि वो यौम असाज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीसी के इख्तराई तौर पर इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असाज़ा को कौमी अवार्ड अदा करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त तर हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के राबते में है। अक्वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। तीरंदाजी की आलमी पैरा सीरीज का तीसरा मरहला गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है और खवातीन क्रिकेट में T20 एशियन कप के ग्रुप ए का फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। ये मैच आज रात दुबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा और मुअल्लिमीन से कहा है कि वो अपनी मालूमात में लगातार इजाफा करते रहें, टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करते रहें और तदरीस के इख्तराई तरीके इख्तियार करते रहें। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन अपनी रहनुमाई व सरपरस्ती से सलाहियतों की आबियारी और किरदार को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते रहें। उन्होंने कहा कि खुद को वक्फ कर देने और तलबा का ध्यान रखने वाले असातिज़ा उनकी मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर उन्हें तहरीक दे सकते हैं और महारत हासिल करने में उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जो एक मारूफ माहिर तालीम, मुसन्निफ, फलसफी और सदर जमहूरिया थे। इस मौके पर मुल्क की तामीर में असातिज़ा और मुअल्लिमीन के रोल की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में स्कूलों के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी।

0: इस असाध्या को 27 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम 7 इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से मुंतखब किया गया है। सदर जम्हूरिया आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक इदारों के 21 असाध्या और फैकल्टी अरकान को भी कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
1: मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कल शाम असाज़ा के कौमी अवार्ड याफ्तगान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि असाज़ा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बच्चों को तैयार करें। उन्होंने कहा कि तलबा मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है और उन्हें हमा जह सलाहियत वाले अफराद के तौर पर परवान चढ़ाया जाना चाहिए। जनाब जोशी ने अवार्ड याफ्तगान के एजाज में एक इशाइये की मेजबानी की। इस मौके पर तालीम के वजराए ममलकत जैन सिंह और डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क का आला तालीम का एक मायानाज इदारा है। 1926 में मारूफ सनतकार और सामाजिक कारकुन सर श्री राम के जरिए कायम करदा इस कॉलेज ने गुज़िश्ता एक सदी के दौरान स्कॉलर्स, पेशावर अफराद, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सनतकारों, पॉलिसी साजों और मुल्क के मेमारों की एक नस्ल को परवान चढ़ाया है। ये 100 साला तकरीबात योम असाज़ा के मौके पर मुनक़िद की जा रही हैं, इसलिए ये मौका खास तौर पर नस्लों की परवरिश और माशरे की बुनियाद को मजबूत करने में असाज़ा और दरसो तदरीस से वाबस्ता अफराद के बेशबहा तआवुन का एतराफ करने के लिए खास अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने आईएसओ टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 साल तक की इजाजत देने और इस पर अमल करने के लिए कामकाज के 7 दिन वाले एक निजाम की तजवीज रखी है। ये तजवीज पेट्रोलियम से मुतालिक 2002 के जाब्तों में मुजवजा तरामीम का हिस्सा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने जुमे को इस नोटिफिकेशन का मुसवदा जारी किया है, जिसमें पेट्रोलियम से मुतालिक जाब्तों में 2026 की तरमीम की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने इस मुसवदे पर एतराजात और तजावीज तलब की हैं, जिन पर गेजेट कॉपीज आवाम को दस्तियाब कराने की तारीख के 30 दिन पूरे हो जाने पर गौर वखौज किया जाएगा। मुजवजा तब्दीलियों के तहत किसी को भी ये इजाजत नहीं होगी कि वो पेट्रोलियम से भरे हुए या भरे जाने वाले किसी आईएसओ टैंक कंटेनर को चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर की इजाजत के बगैर दरामद करे। ये दरख्वास्तें पेट्रोलियम और धमाका खेज मादनों से हिफाजत की तंजीम पीईएसओ के ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के जरिए खसूसी टेक्निकल और हिफाजती दस्तावेजात के साथ जमा करनी होंगी। इस सिलसिले में अगर कोई एतराजात या तजावीज हैं तो वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी MNVOR के नाम भेजी जा सकती हैं या इस ईमेल पते पर भी इरसाल की जा सकती हैं js.mkt.png@gov.in। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 9 और 10 तारीख को अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के UGC नेट जून 2026 के इम्तिहानात के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। तलबा UGCnet.ta.nic.in पर लॉग इन करके अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने सवालिया पर्चों में मुख्तलिफ गलतियों की शिकायत के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक़िद कराने का ऐलान किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीरे खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि भारत लगातार यूक्रेन और रूस दोनों के राबते में है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे नजरियात और तजावीज की तलाश में है जिनसे तनाजे से निपटा जा सकता है या इसे खत्म किया जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने यह रायजनी कल वारसोवा में पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा रेड सोलो सिक्रोसिकी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। वजीर खारजा ने एक बार फिर कहा कि भारत इस बात में यकीन रखता है कि इस न खत्म होने वाली जंग को खत्म करने का एक तरीका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगों में कोई फातह नहीं होता और इनसे मजीद हलाकतें, तबाही और आलमी सतह पर नुकसान वाक़ होते हैं। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने पोलैंड के सदर कारोल नारोकोसी से भी मुलाकात की और दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन तनाजे और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। कीफ में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सदर वोलादिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के अपने हम मनसब एंद्री सियाभा से भी कीफ में जुमेरात को मुलाकात की। उमूरे खारजा की वजारत ने कहा है कि एक 5 साला बच्चे समेत मजीद 3 भारतीय शहरियों को नेपाल के सैलाब से मुतासिरा त्रिशूली बाजार इलाके से बहफाजत

0: निकाल लिया गया है। इसके साथ ही नेपाल से निकाले गए भारतीयों की मजमूई तादाद 169 हो गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारतीय शहरियों की सलामती से मुतालिक ताजा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय शहरी चीन से बहफाजत नेपाल पहुंच चुके हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि काठमांडू में भारतीय सफारतखाना बहफाजत निकाले गए भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए परवाजों का इंतजाम कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद से अब तक 95 टन इमदादी सामान नेपाल को भेज चुका है। इस दौरान हिमालयी मुल्क में सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 1295 हो गई है। तकरीबन 5000 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रिवायती आलमी नक्शे की जगह एक ऐसा नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है, जिससे अफ्रीका के रकबे का ज्यादा सही अंदाजा होता है। टोगो के तआवुन और अफ्रीकी यूनियन की हिमायत से एक करारदाद मंजूर की गई, जिसका उन्वान था नक्शे को ठीक करो। इस करारदाद के हक में 164 मुल्कों ने वोट दिया, जिसमें फ्रांस और बरतानिया भी शामिल है। अमरीका ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया और 6 ममालिक गैर हाजिर रहे। अक्वाम मुत्तहिदा की इस वोट की अगरचे पाबंदी लाजमी नहीं है, लेकिन इससे हुकूमतों और इदारों की हौसला अफजाई होगी कि वो रिवायती नक्शे को इस्तेमाल करना बंद कर दें। चाहे उकुआ जाहिर करने वाला ये नक्शा 16वीं सदी से आम इस्तेमाल में है, लेकिन इस पर यह एतराज किया गया है कि इसमें अफ्रीका को ग्रीनलैंड के बराबर दिखाया गया है, जबकि ये ग्रीनलैंड से 14 गुना ज्यादा है। बिहार के 14 जिलों में, जिनमें रियासत की राजधानी पटना भी शामिल है, सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तश्वीशनाक बनी हुई है। कई दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि नशीबे इलाके अब भी जेर आब हैं। सैलाब ने कई इलाकों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। इन मुतासर अजला में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयां तेजी से जारी है। हुकाम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं और मुतासर इलाकों के लोगों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार में सैलाब की सूरत हाल में अब तक कोई नुमाया बेहतरी नहीं है। राजधानी पटना के अलावा औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, लक्कीसराय, मुंगेर, बीगूसराय, खगड़िया और वैशाली में भी सैलाब की सूरत हाल अब भी बरकरार है। कुदरती आफात से निपटने के महकमे के मुताबिक 8,50,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मवेशी परवरी के महकमे के मुताबिक 70,000 जानवर भी इससे मुतासिर हुए हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों में लोगों की सहूलत के लिए 700 कश्तियां चलाई जा रही हैं। सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंपों और इज्तिमाई तौर पर बावर्ची खाने भी कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रात पुनपुन घाट पर रेलवे पुल नंबर 21 के नीचे ट्रैक में पानी दाखिल होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त को अगले अहकाम तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: महाराष्ट्र में दहीहांडी का त्यौहार आज बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार जन्माष्टमी के मौके पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर नौजवान, जिन्हें गोविंदा कहा जाता है, एक के ऊपर एक खड़े होकर ऊंचाई पर लटकी हुई मिट्टी की हांडी को तोड़ते हैं, जो दूध, दही और मक्खन से भरी हुई होती है, और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की याद ताजा करते हैं। मुंबई में इस त्यौहार की तकरीबात जारी हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक रोजा दौरे पर होंगे। वो इंडिया वोल्व्स 2026 में शिरकत करेंगे। ये अमराज कल्ब के सुराखों और बनावट से मुतालिक जदीद इलाज पर मरकूज एक कौमी एकेडमिक मीटिंग होगी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शुमाल मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। आलमी तीरअंदाजी के पैरा सीरीज 2026 आज गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इन मुकाबलों में 19 मुल्कों के 105 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारत तीरंदाजी की इस आलमी पैरा सीरीज की मेजबानी कर रहा है। सीरीज का ये तीसरा मरहला अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे मुनाकिद किया जा रहा है, जो इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। जनाब शाह ने कहा कि भारत खेलकूद की तरबियत और इससे मुतालिक सहूलियात और आलात की पैदावार का भी एक मरकज बनेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत का मकसद न सिर्फ मजीद तमगे हासिल करना है, बल्कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, दौलत मुश्तरका खेलों और पुलिस खेल मुकाबलों को मुस्तहकम बनाना भी है। जनाब शाह ने कहा कि भूटान, बरतानिया

0: चीन, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया और अमेरिका समेत 19 मुल्कों के एथलीट्स इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले इन खेलों का सदसाला एडिशन होंगे। खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में आज भारत का मुकाबला उसकी रिवायती हरी पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के GSLV F-17 के जरिए EOS-5 की कामयाब लॉन्चिंग को शानदार कामयाबी करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि इसरो और भारतीय सनत के दरमियान तालमेल से वसत और भारत के कुर्रे अर्ज के मुशाहदे की सलाहियतों में अहम इजाफा हुआ है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म योम असातज़ा के मौके पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे और तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल को इमदाद फराहम करना जारी रखेगा।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातज़ा से जोर देकर कहा है कि वो योम असातज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीस के इख्तराई तौर तरीके इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असातज़ा को कौमी अवार्ड अता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सत्साला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के रबते में है। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। और ख्वातीन क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

सितंबर महीने का पहला शनिवार, वो भी भीगा भीगा सा। कल रात से हो रही है बारिश दिल्ली में, थोड़ी एंजॉयमेंट थोड़ी परेशानी, लेकिन हम दिल्ली वाले हर हाल में खुश रहना जानते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड। 8:46 हो चले हैं, यह है म्यूजिकल दिल्ली और मैं हूँ सुनीता।

0: ठंडा भी छा गई है और बहार भी आ गई है, और इस सब के साथ सुनीता एक इन्फो भी ले आई है आपके लिए। पहले ये बता दूं कि ये जो गाना था ये वारिस फिल्म का था और सुरेश वाडकर और लता जी ने इसे गाया था। अब इन्फो ये है कि ब्रिक्स समिट 2026 के चलते आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मोटर कार्केज रिहर्सल की जा रही है, और कौन से रूट्स प्रभावित रहेंगे इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अपडेट देखनी जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दिन को प्लान करेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि अगर आपको कहीं निकलना है, कुछ डाइवर्जन्स हैं, तो उन्हें पहले से जान लेना बहुत जरूरी है। और ये इन्फो हमें आपको देनी थी, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम यहाँ हैं एफएम गोल्ड पर खास आपके लिए।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग

0: together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर जी और साथ में उदित नारायण, ये फिल्म थी दिल तो पागल है। तो ये गाने को एंजॉय कीजिए यहाँ मेरे साथ। मैं हूँ सुनीता और ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने इसे ट्यून किया है।

तो इस प्यारे से गाने के साथ अब सुनीता लेगी आपसे इजाजत उसी वादे के साथ जो मैं हमेशा आपसे मांगती हूँ कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आप बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फिलहाल समय हो चला है अब समाचार का, आप सुनिए समाचार, जानिए आपके आसपास क्या हो रहा है, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि FM गोल्ड है इंफोटेनमेंट, यानी इन्फॉर्मेशन भी है एंटरटेनमेंट भी है। तो अब आप सुनिए समाचार, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ना आपसे और होंगी बहुत सारी बातें, सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से भेंट की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्व अभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा।

0: सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनर को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया है। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। केरलम के त्रिशूल जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात कैंपा मंगलम के पनामबिकुन्नू में एक कार के हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने से हुई। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के विद्यार्थी थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज वर्षा की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In a message on the occasion of Teachers' Day today, the President said, "Teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship." On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of the country's premier institutions of higher education. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The ministry has invited objections and suggestions on the draft, which will be considered after the expiry of 30 days from the date the gazette copies are made available to the public. Under the proposed changes, no person would be allowed to import an ISO tank container filled or intended to be filled with petroleum without obtaining permission from the chief controller or controller. External Affairs Minister S. Jaishankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jaishankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following the talks in Warsaw yesterday.
2: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves, and more cost to the rest of the world. This concern was voiced publicly by Prime Minister Modi recently. Our efforts must therefore focus on promoting dialogue and diplomacy.
1: The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation has crossed 1,340 after rescue workers recovered more bodies from affected areas, while emergency teams have rescued more than 12,000 people. Roughly 5,000 remain missing as search and rescue operations continue. The UN General Assembly has voted to replace the traditional world map with one that more accurately reflects the size of Africa. The Correct the Map resolution, sponsored by Togo and backed by African Union members, passed with the support of 164 nations, including France and the UK. The United States was the only nation to vote against it, while six countries abstained. The World Archery Para Series 2026 begins at Ahmedabad in Gujarat today. The event brings together 105 athletes from 19 countries. It is the first time India is hosting the World Archery Para Series. And in women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना।

अगर तू मेरा नहीं तो कोई नहीं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी के लिए कोई एहसास रखते हैं तो हमारे मन में ये फीलिंग उसके लिए आती है। तो ऐसी ही फीलिंग हमारे दिल में उन सबके लिए आनी चाहिए जिनको हमारी जरूरत है। आज है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये जो दिन मनाया जाता है, आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसका एक कारण है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की आज के दिन पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, अनाथों और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो दुनिया भर के लोगों को, स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं जिन्हें एनजीओस कहते हैं, उनको, परोपकारी संगठन, सामाजिक और मानवीय कार्य जो कर रहे हैं उसको करने के लिए प्रेरित करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। यानी सबकी जो संकट में है उनकी मदद करिए, समाज में जो गरीब हैं, पीड़ा से जो जूझ रहे हैं उनको, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए दान के महत्व को आज के दिन बताया जाता है, ताकि नफरत को मिटाया जा सके और प्यार को बढ़ाया जा सके।

प्यार में हद से गुजर जाना बहुत ही कहते हैं कि एक बहुत ही ऐसी बात है जो सबके दिलों में होती है, खासकर जब रिश्ता माँ और बच्चे का हो तो ये बात बहुत ही खास हो जाती है। किसी भी हद तक एक माँ अपने बच्चे के प्रेम में गुजर सकती है। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम, जिसको माँ के नाम से जाना जाता है, माताओं को पूर्ण स्नेह, इस कार्यक्रम में ये कोशिश की जाती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो ये कोशिश करता है कि हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाए। नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर पहला स्तनपान कराना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बच्चे के जन्म के पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराया जाए और 6 महीने के बाद उसको ऊपर का खाना भी दिया जाए और स्तनपान भी कराया जाए, ये जारी रखा जाए कम से कम 2 साल तक। तो स्वास्थ्य केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से माताओं को स्तनपान से जुड़ी सही जानकारी और सहायता प्रदान करना इस योजना के तहत आता है, ताकि हर माँ अपने बच्चे को अपना पूरा प्यार और स्वास्थ्य दे सके।

कैसा लगता है जब आप सड़क पर चल रहे हो और दूसरा आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना कर रहा हो और आपको उससे परेशानी हो रही हो? बहुत बुरा लगता है। देखिए, अपनापन होना अच्छी बात है, लेकिन सड़क पर चलते वक्त नहीं, खासकर सड़क पार करते समय। कुछ लोग चलती सड़क को ही पार करने लगते हैं, मतलब ट्रैफिक चलता रहता है और मिस्टर या मिस चल पड़ते हैं सड़क के दूसरी पार। ऐसे में अगर सामने से वाहन आता दिखे तो कभी आगे कभी पीछे, ये शुरू हो जाता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों को पूरी तरह से पालन कीजिए उनका, और चलती सड़क को पार करने की गलती कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

9:36 हो गए हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये। म्यूजिकल दिल लगे प्रोग्राम का नाम। मैं हूं आपके साथ भावना।

जिंदगी हमें मिली है उसे हम भरपूर जिएं, उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और पूरे स्वास्थ्य के साथ हम आगे बढ़ें, पोषण से भरा खाना खाएं, जीवन का आनंद उठाएं, ये हमारी कोशिश होती है। पता है हर साल

से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ना, तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं आज। अच्छा स्वास्थ्य, सही पोषण, ये सबकी जरूरत होती है। और जो ये अभियान चलाया गया है ना, ये कुपोषण को दूर करने के लिए, और सबको मतलब अपने अपने शरीर के हिसाब से जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, उन सब की सबको जानकारी हो, ताकि सब लोग स्वस्थ रह सकें। अब किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि होती है ना, और उसका जो खाद्य उत्पादन का स्तर है, उसको जोड़ के देखा जाता है। और भारत जो है वो उभरता हुआ बाजार है, तो भारत ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है कि जो हमारा खाद्य स्तर है, जो हमारा उत्पादन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, और जो फसल है उनमें व्यापक विविधता लाकर, अलग अलग तरह की वैरायटीज लाकर, अलग अलग तरह का मोटा अनाज, आपने देखा होगा कि बात चलती रहती है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इन सब चीजों से पोषण संबंधी कमियां जो है ना वो दूर होती हैं, और सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम सब, सारे भारतीय जो है वो पोषण से भरा खाना खाएं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर।

0: आज 5 सितंबर है और भारत में हर साल 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। लेकिन ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने कैसे लगा, मतलब कैसे शुरुआत हुई? 1962 की बात है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति बने थे, तब उनके छात्र जो थे उन्होंने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई और कहा कि सर हम मिलकर आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम सब लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो अलग से मनाने की बजाय शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाओ तो मुझे बहुत गर्व होगा। तब से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

म्यूजिकल दिल लगी का सफर भावना के साथ आज यहीं तक, लेकिन 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहें जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉ राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्रशासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सा में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर

0: सात कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। केरलम के त्रिशूर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात केपामंगलम के पन्नाम्बिकन्नु में एक कार के हाईवे पर खड़े एक ट्रक से टकराने से हुआ। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के छात्र थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology, and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said that teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. She said, dedicated and caring teachers can recognize the unique potential of students, inspire them, and encourage them to strive for excellence. President Murmu also urged teachers to promote independent thinking and cultivate a spirit of inquiry among students. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On the occasion, the President will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. The President will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7 working day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The Ministry has invited objections and suggestions on the draft, which will be considered after the expiry of 30 days from the date the Gazette copies are made available to the public. External Affairs Minister Jay Shankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jay Shankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following their talks in Warsaw yesterday.
2: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves, and more cost to the rest of the world. This concern was voiced publicly by Prime Minister Modi recently. Our efforts must therefore focus on promoting dialogue and diplomacy.
1: The UN General Assembly has voted to replace the traditional world map with one that more accurately reflects the size of Africa. The Correct the Map resolution, sponsored by Togo and backed by African Union members, passed with the support of 164 nations, including France and the UK. The United States was the only nation to vote against it, while six countries abstained. The External Affairs Ministry has said three more internationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation has crossed 1,340, with 5,000 remain missing as search and rescue operations continue. The Inter-Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeastern states, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Sikkim, Bengal and Uttar Pradesh for the next 2 days. And in women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian time. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी, बेली ब्रिज के साथ अन्य सामग्री और भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा बलूच छात्र के जबरन अपहरण, यातना और हत्या की जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
4: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों प्रतिनिधि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बातचीत में आगे बढ़ने की संभावना का पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध में हो रहे भारी सैन्य नुकसान को देखते हुए ये समझौता जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि अमरीकी प्रतिनिधिमंडल पहले मॉस्को और फिर कीव जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से तीन और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन से 1,907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि नेपाल को बेली ब्रिज भी भेजे जाएंगे।
5: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
6: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने

0: तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: इस बीच नेपाल बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1295 हो गई है। बचाव दलों ने 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि लगभग 5,000 लोग अब भी लापता हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। एक रिपोर्ट।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानून तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया गया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में छात्र इमरान अली के लापता होने, कथित यातना के बाद मौत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से इमरान अली की हिरासत और मौत की तुरंत, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बताया कि इमरान अली को पिछले साल 27 अगस्त को उनके घर से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद करीब एक साल तक परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व बंदियों ने बताया कि अली को हिरासत में रखकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाद में बताया कि मई में एक मुठभेड़ में अली की मौत हो गई थी। उनके परिवार ने क्वेटा के एक अस्पताल में तस्वीरों के जरिए शव की पहचान की। संयुक्त राष्ट्र ने मामले की फॉरेंसिक जांच, अली के अवशेषों की उनके परिवार को सम्मानपूर्वक वापसी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: अमेरिका में डाक से मतदान को लेकर ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को डाक से मतदान को सीमित करने वाले नए डाक सेवा नियम कानून को रोकने का आदेश दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करने की बात कही है।
4: अमेरिका में डाक से मतदान को लेकर ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को डाक से मतदान को सीमित करने वाले नए डाक सेवा नियम लागू करने से रोकने का आदेश बढ़ा दिया है। जज इंदिरा तलवानी ने कल ये आदेश जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करने की बात कही है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में डाक से मतदान के लिए मतपत्र भेजे जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में भी मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के समय मतदान के नियम बदलने से मतदाताओं में भ्रम हो सकता है। इससे कुछ लोगों को मतपत्र समय पर मिलने या वापस भेजने में परेशानी हो सकती है। जज तलवानी ने कहा कि इन बदलावों का असर लाखों मतदाताओं पर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से डाक से मतदान को सीमित करने की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिसका असर आगामी मध्यावधि चुनाव पर पड़ सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्चना रंजन।
1: मिस वर्ल्ड 2026 का फाइनल आज वियतनाम के तटीय शहर ना ट्रांग में होगा। प्रतियोगिता में कुल 111 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। भारत का प्रतिनिधित्व 2024 की फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता निकिता पुरवाल कर रही हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
5: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उस वक्त अहमदाबाद

ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें हम करते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, fmgoldaird@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो इन दोनों में से किसी पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने दिल की बात लिखकर भेज सकते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना, और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा सब, शिवाजी चौक कटनी से और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किटू, गाना सुनना चाहते हैं ये।

0: खबर
1: हमें सब खबर है। सीताराम कांगड़ा जी का मैसेज हमारे पास आया है। बबीता बोट है साथ में, निखिल कांगड़ा है, तन्वी बोट है, एकता कॉलोनी रोहतक से इनका संदेश हमारे पास आया है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके अलावा मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हमारे पास आया है। और मेहर अरोड़ा और ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, इनका संदेश है, साथ में भूमिका अरोड़ा भी है, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से गाना सुनना चाहते हैं। ये प्यारा सा गाना आनंद फिल्म से।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तीन श्रेणियों में चयन डेयरी किसान सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025 आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
2: श्रीपाल गोयल जी हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से इनका संदेश हमें मिला है दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये कह रही हैं प्रीति और इनका संदेश हमें मिला है राजस्थान से राजस्थान में कहां ये इन्होंने नहीं लिखा लेकिन दिल की एक बात बहुत ही खूबसूरती से लिखी है कि हम कहीं भी जाएं उनका ख्याल हमें रहता है हम कहीं भी जाएं उनका ख्याल

ख्याल हमें रहता है, हम कुछ भी सुने एफएम गोल्ड हमारे साथ रहता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां इन्होंने हमारे लिए लिखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सादिक अली खान, इनका संदेश हमें मिला है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से अपना संदेश हमें पहुंचा रहे हैं। मास्टर अशोक वर्मा जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, इनके साथ हैं अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोडाना, और भी इनके दूसरे साथी हैं हमारे साथ। भगवती का हमारे पास संदेश आया है, पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से, और गाना सुनना चाहते हैं, ये प्यारा सा गाना फिल्म लोफर से, बहुत ही खूबसूरत।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो। इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं आपके साथ भावना और मेरे साथ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका चंडीगढ़ से ही शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राम राम जी हमें लिखकर भेजा है, तो राम राम जी। उग्रसेन यादव जी, शकुंतला यादव भी हैं, साथ में गरिमा भी हैं, नई दिल्ली से इनका संदेश आया है। और मौसम को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत सा झूमता मौसम मस्त महीना ये गाना सुनना चाहते हैं। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इनका संदेश हमें मिला है, और नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुनहेकर, मलकापुर महाराष्ट्र से इनका संदेश मिला है। और ये कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जो दही हांडी है उसको बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और ये जो गाना है ये सुनना चाहते हैं, मच गया शोर सारी नगरी में। तो चलिए, ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा।
1: हो सकता है एकाध बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हर एक को कोई ना कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग।
0: श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है। ये भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महाशिक्षक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के

0: ये व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से बातचीत की। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: अब जैसे ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: This year, 82 teachers and educators have been selected for the National Teachers Awards from 3 departments. These include 48 teachers from the Department of School Education and Literacy, 21 teachers and faculty members from higher educational institutions and polytechnics, and 13 skilled trainers from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The awardees highlighted the experiences and innovations that have shaped their teaching journey. They shared several creative approaches adopted by them to make classroom learning more engaging and effective. The Prime Minister further underlined that Teachers' Day is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and noted that it is also a day to pay homage to Bharat Ratna Dr. S. Radhakrishnan. President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said that teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On the occasion, the President will confer National Teachers' Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan and Home Minister Amit Shah have extended their greetings on the occasion of Teachers' Day. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees.

0: Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you live description of the presentation ceremony of the National Award to Teachers, being organized by Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaiz Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएश यार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएश यार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक रॉय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवाभाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस that India has for its teachers. On the occasion of National Teachers Day, from the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaiz Yar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shoaiz mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted

0: acted with the teachers, and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing, and he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced, and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot district in erstwhile Madras presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy, and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day." Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य को दर्शाने वाले लघु वृत्त चित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का ये ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती

0: द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रसारित करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India Shrimati Draupadi Murmu has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she has been loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: Yatyant garima mein drishya hai Bharat ki rashtrapati is waqt

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार,
2: पहले 24 पुरस्कार विजेताओं पर हम एक
0: देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डी।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए

0: जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगलेई स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव आईसीटी टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी।

0: जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमल द्वारा प्रदान करें। ऑफ इंडिया
3: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education Shri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education Shri Jayant Chaudhary and Dr. Sukanta Majumdar and other dignitaries are on the dais, and now the first teacher to receive the award is Shri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहाड़।
4: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब
4: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
2: तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग
4: और
3: सिक्किम रिसीव्स द साइटेशन फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति। झारखंड Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teacher Award 2026.
2: Shantanu Patra, West Bengal.
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है. 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है.
2: रवि जायसवाल चंडीगढ़.
4: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए.
2: ललनुन मोई मिजोरम.
3: फ्रॉम मिजोरम मिस ललनुन मावी. And what a proud moment it is indeed for these teachers to receive the National Teachers Award.
2: Sunita Yadav, Chhattisgarh.
3: Rashtrapati ji and Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
2: Manjuri V. Mahajan, Himachal Pradesh.
4: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjuri ji Mahajan Marathi Rashtrapati ke samaksh अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई माननीय राष्ट्रपति
2: जय प्रकाश राव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
4: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के इस छड़ी के धारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें
3: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for Jay Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
2: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
3: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
2: Khushbu Kumari, Bihar.
4: और अब बिहार की खुशबू कुमारी माननीय राष्ट्रपति से अपना ये सम्मान ग्रहण करते हुए
2: अर्चना शुक्ला मध्य
4: समारोह के
3: पुरस्कार फ्रॉम मध्य प्रदेश मिस अर्चना शुक्ला एंड शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर हर वर्क स्पेशली ऑन इनोवेशन.
2: रेणु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश.
3: मिस रेणु त्रिपाठी फ्रॉम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद एंड शी इज वर्किंग फॉर स्पेशली स्कूल ड्रॉप आउट स्टेम एंड ऑटोमेशन अमंग
2: भवानी बोम्मपल्ली तेलंगाना.
3: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
2: Suman Goel, Delhi.
3: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
2: Umakant Nayak, Orissa.
4: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है. ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान.
3: फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
2: महादेव हनुमंत शिंदे गोवा.
4: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए.
2: Wanglim Bam Govind Singh, Manipur.
3: And from the land of jewels, Manipur is Wanglim Bam Govind Singh.
2: Shri Prasad Arvind Singare, Sainik School.
3: From Sainik School, Shri Prasad Arvind Singare receives the National Teachers Award from the Honorable
2: Sangeeta Yadav, Central Board of Secondary Education.
4: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maranee Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
2: हैं. मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल.
4: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
2: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय.
3: एंड नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज बीन एस्कॉर्टेड टू द डेस अलोंग विद द Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayan Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
4: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया.

0: और आप माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
1: महाराष्ट्र के कैच थारू रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं ICT सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम FLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाई कोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाई कोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय

0: शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबाकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनाल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुप्सा में समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनाल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बरदोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित ICT सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षाई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं AI सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो URSC नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कई खेल
4: गतिविधियों को कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर
2: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक गुजरात
4: गुजरात नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक एंड ही इज नोन फॉर हिज इनोवेशंस 7DVR लैब्स ICT एंड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल
4: पार्टिसिपेटेड इन इसरो कॉम्पिटिशन।
3: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही है।
4: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who has worked for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
4: for
2: Singh
4: education.
2: Bisht, Uttarakhand.
4: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
4: module.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
2: Palash Chaudhary, West Bengal.
4: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
2: Pushpa
4: food
2: Prasad,
4: for education.
2: Bihar.
3: और अब बिहार से पुष्पा प्रसाद अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह और
2: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली
4: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल receives the award from the Honorable President
2: Dr.
4: of India.
2: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
3: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar praapt kar rahe hain. Mananiya Rashtrapati Shripati Draupadi.
2: Jatna Kumari S. Karnataka.
4: from Karnataka.

0: Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
1: Mohammed
0: among
1: Ayaz
0: children.
1: Mohammed Ayaz Raina, Jammu and Kashmir.
2: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष.
1: अनिल कौशिक हरियाणा.
0: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, ही हैज 40 मॉडल्स in his mathematics lab and is now receiving the award from the Honorable Rajpati ji.
1: Ranjan Devnath, Tripura.
2: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं.
1: शालिनी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश.
2: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदब और अद्भुत कार्य के लिए.
1: थंगराज एम, तमिलनाडु.
0: फ्रॉम तमिलनाडु, थंगराज एम is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji, and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.
1: Vartika Gulati, Rajasthan.
2: Rajasthan se Vartika Gulati, Mananiya Rashtrapati se unhone namaskar kiya, jhukkar Mananiya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya aur ab Mananiya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. शिक्षा के क्षेत्र में
1: आर रोनाल्ड मेरू, नागालैंड.
0: फ्रॉम नागालैंड, आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन. हियर इज रिसीविंग
1: शैलेंद्र प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश.
0: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फ्रॉम मध्य प्रदेश, शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award, and he has worked to say that there is no dropout from his school.
1: Vaibhav Basant Rao Kulkarni, Navodaya Vidyalaya Samiti. Larger
0: enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Basant Rao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati
1: Rajesh
0: ji.
1: Badaloi, Assam.
2: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain. इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
1: राधा राजेश, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन.
2: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश.
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय
0: राष्ट्रपति महोदय. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर देवश्री मुखर्जी हैव नाउ टेकन देयर सीट्स ऑन द डेस एंड
2: माननीय राष्ट्रपति.
0: ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कन्फर अवार्ड्स टू टीचर्स एंड to the institutes who have worked in higher education. And now, telephone.
3: आर्किटेक्चर शिक्षा को सस्टेनेबल डिजाइन और रियल वर्ल्ड लर्निंग से जोड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास, स्कूल, अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं. वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा

0: पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भूविज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लैबोरेटरी स्थापित की। भूविज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना

0: सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बैनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने

0: वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बैनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन में क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: ये और शिक्षक शिक्षा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए, आपको बता दें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
1: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल
0: आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने सतत वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
2: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola
0: और प्रोफेसर विनय चमोला, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है, बीएससी प्लानी से।
1: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी आईआईटी भुवनेश्वर
2: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग
1: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण आईआईटी गांधीनगर
0: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता आईआईएसईआर भोपाल
2: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable Rashtrapati ji.
1: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
0: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर
2: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
2: University Gujarat.
1: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
0: रसायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से है।
1: डॉक्टर मनीषा निगम हेमवती नंदन
2: बहुगुणा
1: गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड
2: हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रिसीव्स हर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द
1: डॉक्टर अमर मोहन राव
0: अगला पुरस्कार डॉक्टर अमर मोहन राव को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से।
1: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
2: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स डॉक्टर अरुण बाबू ही हैज वर्कड especially on pediatric treatment and innovation and has
1: Manipur University
2: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri
1: Gans. Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
0: Professor Ashutosh Mohan को जो कि प्रबंध अध्ययन संस्थान बनारस से है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है।
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
2: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
2: and Communication
0: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बैंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से।
1: प्रोफेसर राजीव चौधरी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर
2: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इज फ्रॉम द पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर
1: पॉलिटेक्निक बेंगलुरु।
0: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से।
1: डॉक्टर शशिकला S PSG Polytechnic College, Coimbatore.
2: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Shashikala S. receives the award for her work in electronics
1: Kanan
2: and electrical Rathinam. Engineering.
0: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु।
1: डॉक्टर सांदीपन प्रहलाद नरोटे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर
2: From Maharashtra Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
1: Dr.
2: India.
1: Dr. Harish A., Government
2: ICI, Skilling and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
2: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
2: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
2: Receives the award
1: Patel,
2: from the Honorable
1: Rajesh
2: President.
1: Bhai, Maganbhai, Government ITI.

0: पीली मोरा।
1: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
0: हीरालाल शर्मा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू।
2: एंड ही हैज वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हिज स्पेशल
0: अर्चना राकेश यादव, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदिवासी त्र्यंबकेश्वर नासिक।
2: And she works on fashion design.
0: Rina Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
2: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
0: Somin Pandit, Tollyganj Government ITI.
2: Somin Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
0: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
2: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
0: Sanjay Kumar,
1: कौशल विकास और उद्यमशीलता क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा।
0: ज्योति बाला राठौर, NSTIW, इंदौर।
2: She works on skilling and empowerment of her students from
0: Sri Lanka. Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool Room and Training Center, Bhubaneswar.
2: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her desk, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
1: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा। श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
2: एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग।
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्या रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।

देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो

0: अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्व विख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व तो होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान के लिए
3: निवेदन है। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।

0: in her address, said that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है. राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है. श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है. उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन. इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है. इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने. हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार. मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं. नमस्कार.
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में.
3: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जय

0: राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akash.

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म संगीत का एक अकेला बुद्धिजीवी संगीतकार था। जी हम बात कर रहे हैं सलील चौधरी की। एक ऐसा संगीतकार जो न सिर्फ कमाल का कंपोजर था बल्कि बांग्ला का बहुत अच्छा कवि, गीतकार और संगीत समीक्षक भी था। सलील चौधरी को हम आज याद कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। पर देखिए ना कि जो सच में कलाकार होते हैं, बेमिसाल होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो यहीं रह जाते हैं और शायद इस फानी दुनिया को वो तो छोड़कर चले गए, लेकिन देखिए उनका बहुत सारा किया हुआ काम हमारे साथ रह गया, हमारी यादों में रह गया और हमारी बातों में उनके किस्से रह गए। चलिए हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे सलील चौधरी की, उनके गीतों को सुनाएंगे और उनके कामों को याद करेंगे।

तो अगर आप भी हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं सलिल चौधरी को। सलिल की रचनाएं मात्र फिल्मों तक ही सीमित नहीं थीं, उनकी न जाने कितनी असंख्य बांग्ला गैर फिल्मी रचनाओं का एक हिस्सा वो है जो सर्वहारा वर्ग को संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अपने इन गीतों के जरिए सलिल ने बंगाल के संगीत को एक नई परिभाषा दी, और बहुत सारे उनके गीत ऐसे थे जो जन आंदोलनों में प्रचार करने के लिए जबरदस्त उन्होंने भूमिका निभाई। तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे सलिल चौधरी की, लेकिन फिलहाल छाया फिल्म से ये गीत आपके लिए।

वैसे हम आपको बता दें कि जो सलिल चौधरी का बॉम्बे यूथ कॉयर था, बॉम्बे यूथ कॉयर में मन्ना डे, मुकेश, लता, रूमा गांगुली ये सभी गाते थे। सलिल ने संगीत की क्षेत्रीयता और प्रांतीयता से हटकर उसे अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया। जी हाँ, सलिल चौधरी ने न केवल पश्चिमी लोक संगीत बल्कि पाश्चात्य सिम्फनी और हारमोनी का प्रयोग अपने संगीत में शुरू करके भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। 19 नवंबर 1925 को बंगाल के सोनारपुरा में जन्मे सलिल चौधरी की ढेरों बातें करेंगे, वो बातें जो जरा लीक से हटकर हैं।

पता है बांसुरी जो है सलील चौधरी 8 साल की उम्र से ही बहुत अच्छा बजाने लगे थे और बाद में तो वॉयलिन इसराज पियानो सभी में पारंगत हो गए थे। सलील के भाई निखिल चौधरी ने भी मिलन परिषद नामक एक ऑर्केस्ट्रा समूह बना रखा था जिसका साथ सलील को बचपन से मिला। सलील अपने गीतों के जरिए अपने संगीत के जरिए लोगों के बीच गए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं सलिल चौधरी को. सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले सलिल के लिखे और स्वरबद्ध किए गए गीत भारतीय संगीत के इतिहास में खासा महत्व रखते हैं. संगीत मात्र पुराने शास्त्रीय रागों की शुद्ध अदायगी नहीं है. महफिलों की गजलों की बात करें, ठुमरियों की बात करें या मंदिरों में गूंजता भजन कीर्तन ही नहीं रह गया है संगीत, बल्कि सलिल के साथ संगीत को एक नई परिभाषा मिली और संगीत में आम आदमी, गरीब, मजदूरों और कामगारों को आवाज मिली. सलिल चौधरी ने संगीत को इलीट क्लास से निकालकर उसमें आम आदमी की कराहों, पसीनों और आशाओं का रंग भरा. सलिल का संगीत केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ न होकर भारतीय समाज में व्याप्त शोषण पर भी चोट करता है. तो सलिल का ये प्रगतिशील रूप हमें उनके जो शुरुआती दौर की फिल्में हैं उनमें दिखाई देता है. और 1953 में आई दो बीघा जमीन में तो सलिल ने संगीत की एक नई धारा ही बहा दी थी.

वैसे हम आपको बता दें कि सलील चौधरी को अगर हम याद कर रहे हैं तो सलील चौधरी जाने जाते रहे अपने प्रयोगों के कारण, कोरल गायन और पाश्चात्य सिम्फनी के अद्भुत प्रयोग के साथ। मखदूम की लिखी जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, एक कमाल का गीत है जिसे गाया था मन्ना डे और बबीता बैनर्जी ने। बहुत सारा ऐसा कुछ है जो अनकहा रह गया सलील चौधरी के बारे में, क्योंकि बहुत काम है उनका और संभवतः इतने छोटे से कार्यक्रम में समेटना संभव नहीं होगा। तो ज़रूर कभी फिर मौका मिला तो सलील चौधरी की फिर से बात करेंगे, बहुत सारी उनके बारे में जानकारी देंगे और बातें बताएंगे, उनके गीत सुनेंगे। फिलहाल तो इतना ही, संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे कहना यह है कि आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अभी आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और 2:30 पर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम संगीत.com।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ मेयारी तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। सदर जमहूरिया ने 48 स्कूली असातिज़ा को कौमी अवार्ड अता किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तलबा की जिंदगी को संवारने के लिए सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद न रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों में जरूरत से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए खेलों

0: और मैदानी सरगर्मियों को फरोग देने पर जोर दिया। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सद साला तकरीबात से खिताब करेंगे। बिहार के 14 जिलों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल को 95 टन इमदादी सामान भेजा है, मजीद इमदादी सामान और बेले ब्रिज भेजे जाएंगे। बैडमिंटन में शेंजेन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में आज शाम सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। और खवातीन क्रिकेट में आज रात दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत मियारी तालीम के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। आज नई दिल्ली में असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अपने असातिज़ा का एहतराम करने वाला माशरा ही सही मानों में तरक्की पसंद माशरा होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि तालीमी महारत, हुनरमंदी का फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप मुल्क की तरक्की में अहम रोल निभाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत को दुनिया में हुनरमंदी की राजधानी के तौर पर कायम करना और साथ ही इल्म का मरकज बनाना मुल्क की तरजीह है। इल्म को ताकत का सरचश्मा करार देते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तालीम अफराद को आजादाना तौर पर सोचने की ताकत देती है, आगाही पर मबनी फैसले लेने के काबिल बनाती है और मुल्क की तरक्की में गिराकदर ताउन करती है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि फर्ज शिनास असातिजा मुल्क की तामीर के सफे अव्वल के मेमार हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: सदर जमहूरिया ने खवातीन के हकूक और तालीम को फरोग देने में सावित्रीबाई फुले के अहम रोल को भी याद किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने आज नई दिल्ली में असातिज़ा के कौमी इनामात तफवीज किए। इस दौरान 27 रियासतों, 7 मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों और मरकजी हुकूमत के 6 इदारों से मुंतखब किए गए 48 स्कूली असातिज़ा को इनामात दिए गए। सदर जमहूरिया ने 21 असातिज़ा और आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक के तदरीसी अमले को भी कौमी इनामात से सरफराज किया। इसके अलावा मरकजी आला तालीमी इदारों के 12 असातिज़ा, 5 रियासती यूनिवर्सिटियों और 4 पॉलीटेक्निक कॉलेजों के असातिज़ा को भी इन इनामात के लिए चुना गया। तकरीब के दौरान इनाम हासिल करने वाले असातिज़ा के गैर मामूली काम पर मबनी मुख्तसर डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की गईं। सदर जमहूरिया ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर गुलहाय अकीदत भी नजर किए। मुमताज फलसफी स्कॉलर और उस्ताद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन साल 1952 से 1962 तक मुल्क के नायब सदर और साल 1962 से 1967 तक सदर जमहूरिया रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज यौम असातिज़ा के मौके पर मुल्क भर के असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया है। एक अंग्रेजी रोजनामे में लिखे मजमून में सदर जमहूरिया ने दरसो तदरीस के अमल को बेहतरीन जिम्मेदारी करार दिया है जो इल्मी मालूमात फराहम करने से आगे बढ़कर किसी फर्द और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करता है। सदर जमहूरिया ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को तालीम, इकदार और खुद एतमादी से लैस करने पर असातिज़ा के तई इजहार तशक्कुर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद न रहें बल्कि इससे आगे बढ़कर तलबा की जिंदगी को संवारने और बचपन को महफूज रखने में अपना अहम रोल अदा करें। वजीर आजम ने यह बात कल नई दिल्ली में असातिज़ा के कौमी दिन का अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा के साथ बातचीत करते हुए कही। सोशल मीडिया पोस्ट पर असातिज़ा के साथ बातचीत की झलकियों को मुश्तरक करते हुए वजीर आजम ने कहा कि असातिज़ा को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हर तालिबे इल्म के अंदर मौजूद बच्चा हमेशा जिंदा रहे और साथ ही साथ असातिज़ा को भी अपने अंदर मौजूद बच्चे को भी महफूज रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों में हकीकी तब्दीली लाने के लिए जरूरी है कि असातिज़ा खुद को सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद न रखें बल्कि उन्हें तलबा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी

0: में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: बुनियादी सेहत और सामाजिक मसाइल को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बच्चों के जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल पर तश्वीश का इजहार किया। वजीर आजम ने मोबाइल की लत को कम करने के मौसर तरीकों पर खेलों, मैदानी सरगर्मियों और तख्लीकी मशगलों को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया।
0: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सद साला तकरीबात से खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्से के तौर पर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भारत के सरकर्दा आला तालीमी इदारों में से एक है। ये कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट की तालीम का मुमताज इदारा है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर दाखिला अमित शाह ने यौम असातिज़ा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर ने मुल्क भर के असातिज़ा को भारत के मुस्तकबिल की तामीर में उनकी बेलौस खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि एक मुमताज फलसफी, स्कॉलर, उस्ताद, साबिक सदर जमहूरिया और मुल्क के पहले नायब सदर की हैसियत से उनकी गिना कदर खिदमात को याद रखा जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि असातिज़ा इल्म, महारत और एतमाद के जरिए तलबा के मुस्तकबिल को मजबूत बनाते हैं। यौम असातिज़ा के मौके पर सोशल मीडिया पर नशर पैगाम में जनाब जोशी ने अजीम स्कॉलर, फलसफी और उस्ताद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि डॉ राधाकृष्णन एक दूरअंदेश उस्ताद थे और तालीम के शोबे के लिए उनकी मेहनत, लगन और खिदमात आज भी तमाम लोगों के लिए तहरीक का बायस हैं।
2: इस बार सम्मानित किए जा रहे हैं भैया जी शिक्षकों में स्कूल शिक्षण से 48, उच्च शिक्षण से 21 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 13 शिक्षक शामिल है। लेकिन यह सम्मान केवल उन शिक्षकों के तक सीमित नहीं है, यह देश के 1,03,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचाता है।
1: बिहार में गंगा, गंडक और कोसी समेत बड़े दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रियासत में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। वजारत खारजा ने कहा कि एक पांच साल के बच्चे समेत मजीद 3 भारतीय शहरियों को नेपाल के सैलाब से मुतासरा त्रिशूली बाजार इलाके से बहिफाजत निकाल लिया गया है। इसके साथ ही वहां से निकाले गए भारतीय शहरियों की मजमू तादाद 169 हो गई है। तर्जुमान ने बताया कि पिछले महीने की 26 तारीख को आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद भारत ने नेपाल को तकरीबन 95 टन इमदादी सामान भेजा है। बैडमिंटन में आज शेंजन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ म्यारी तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। सदर जमहूरिया ने 48 स्कूली असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तलबा की जिंदगी को संवारने के लिए सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद न रहें। वजीर आजम ने बच्चों में जरूरत से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए खेलों और बैरूनी सरगर्मियों को फरोग देने पर जोर दिया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सद साला तकरीबात से खिताब करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports and outdoor activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of

0: कूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख

0: शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
4: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

0: वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वक्त हो चला है 2:30 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है संगीत.com और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ सुने नहीं जाते, वो याद किए जाते हैं। कभी किसी सड़क पर हुई मुलाकात की तरह, कभी खिड़की के बाहर छिपे चांद की तरह, और कभी उस रात की तरह जब नींद आंखों से रूठ जाती है और दिल किसी एक चेहरे को ढूंढता है। 90 का दशक ऐसा ही तो था जब मोहब्बत थोड़ी मासूम थी, थोड़ी शरारती और सबसे ज्यादा संगीतमय थी। 1994 की फिल्म विजयपथ, अजय देवगन और तब्बू पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज, संगीत तनु मलिक का था और बोल जमीर काजमी के। और अनु मलिक ने बाद में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि विजयपथ के गानों के लिए, उसके संगीत के लिए कहा था कि उन्हें खुद इन गीतों से खासा लगाव है। यानी कि ये महज पर्दे का रोमांस नहीं था, इन गीतों के पीछे एक ऐसी संगीत टीम थी जिसने 90s की रोमांस की भाषा ही बदल दी।

1993 में एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म आई। फिल्म का नाम था फिर तेरी कहानी याद आई। महेश भट्ट की फिल्म, राहुल रॉय और पूजा भट्ट और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के बोल लिखे थे मशहूर शायर कतील शिफाई ने। कतील शिफाई ने प्रेम को किसी घोषणा की तरह नहीं बल्कि कैफियत की तरह लिखा और अनु मलिक ने उसे ऐसी धुन दी कि गीत सुनते हुए लगता है जैसे रात खुद धीमी हो गई हो। ये गीत 1993 के उस दौर का हिस्सा था जब फिर तेरी कहानी याद आई, इसका पूरा संगीत एल्बम ही जाना गया अपनी उदासी और रोमांस के लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: '91 में आई थी ये फिल्म फूल और कांटे, अजय देवगन की पहली फिल्म, और उनके करियर की शुरुआत में ही इस फिल्म के संगीत ने जबरदस्त हलचल मचा दी थी। नदीम श्रवण का संगीत था, समीर के बोल और कुमार सानू की आवाज, और इस फिल्म का एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत ये था जो हम आपको सुनाने वाले हैं, प्रेमी आशिक आवारा। इस गीत की खासियत ये है कि इसमें प्रेम को किसी गंभीर उदास शायरी की तरह नहीं रखा गया है, मस्ती है, शरारत है और थोड़ा आवारापन भी। और इसी गाने के जरिए कुमार सानू की वो आवाज मिली जो आने वाले दशक में रोमांस की सबसे जानी पहचानी आवाज बनने वाली थी। सुनते हैं इस गीत।

0: प्रोग्रेस।
1: आपने पहचान तो लिया होगा इस गाने की धुन को। 1990 की फिल्म दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित, संगीत आनंद मिलन का, बोल समीर की और आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। वैसे कई बार पर्दे पर गाना अलग चलता है और उसके पीछे का किस्सा भी अलग होता है।

ध्यान से इस गीत के बोलों को सुनिए तो महसूस होगा ना कि इंदीवर बड़ी साधारण सी चीजों को इतनी खूबसूरती से पिरोकर रख देते हैं कि प्रेम की पूरी एक तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। सुनिए इस गीत को।

और अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे कहना यह है कि आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। सीमा वर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं और आप जुड़िएगा उनके साथ। फिलहाल वक्त है समाचारों का, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: आम सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी याद किया। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण

0: संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं, जबकि पटना सहित 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेलीब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेलीब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today said that Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi. On the occasion of Teachers' Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
4: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
3: President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी,
2: हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमने बीते दिनों आपको बहुत सी ऐसी कहानियां सुनवाई जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उद्यमिता के नए अध्याय लिख रही हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम, ऐसी ही एक कार्यशाला अभी हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हुई है, जो स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने और किस तरह से महिलाएं उद्यमिता से क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को पैदा कर सकती हैं, इस सिलसिले में ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर ये रिपोर्ट भेजी है।

0: एक हुनर नए अवसर पैदा कर सकता है, एक अवसर आय का साधन बन सकता है और अपनी आय एक महिला को आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने हुनर, रचनात्मकता और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से बेहतर आजीविका और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के इन प्रयासों को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोमती जिले के माताबाड़ी ब्लॉक में विभिन्न पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में अलग अलग स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एक मंच पर एकत्र हुई। उन्होंने अपने समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया और समूह की ओर से किए जा रहे अलग अलग कार्यों के बारे में जानकारी दी। उत्पाद बनाने से लेकर उनकी बिक्री और बाजार तक पहुंच बनाने के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यशाला ने प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने अनुभव साझा करने और अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशने का मौका दिया। TRML के जिला समन्वयक ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
1: PRI बॉडी के साथ हमारा CLF के अंडर जो पंचायत है, उन पंचायत में क्या क्या अभी तक काम हुआ है वो सब डिटेल LRP दीदी के द्वारा, मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन दीदी लोगों के द्वारा सभी के सामने उपस्थापन किया है। तो इस वर्कशॉप में ब्लॉक का BDO, पंचायत समिति का चेयरपर्सन, सभी पंचायतों का प्रधान, अंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सभी मौजूद था। तो हमारा ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है।
0: कार्यशाला में शामिल कई महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह नए हुनर सीखने और आय के अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। कार्यशाला में महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन पर लोगों की राय जानने का अवसर मिला। इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिली कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम ने अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक दूसरे से बातचीत करने, नए विचार साझा करने और अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी दिया।
2: हमारा मेन काम यही है, गांव का हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर एक महिला का पास अपना खुद का बिजनेस हो, ताकि गांव में कोई गरीब ना रहे। कुछ दिन पहले हमारे CLF में ERI बॉडी के साथ एक वर्कशॉप किया है। इसमें LRP मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन द्वारा हर पंचायत का अंडर क्या क्या विकास हुआ था वो सबके सामने पेश किया गया।
0: ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत अक्सर एक छोटी से अवसर से होती है। एक हुनर, एक उत्पाद, एक स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास, ऐसी कार्यशालाएं महिलाओं को एक साथ लाकर और उनके हुनर को प्रशिक्षण, सरकारी सहायता और बाजार से जोड़कर नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है। कार्यशाला में ये संदेश भी सामने आया कि सही सहयोग और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद उनकी स्थायी आजीविका का साधन बन सकते हैं। कार्यशाला में महिलाओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ने के उनके संकल्प को दर्शाती है। इन महिलाओं के लिए कार्यशाला में प्रदर्शित हर उत्पाद सिर्फ बिक्री की एक वस्तु नहीं है, ये उनके हुनर, मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की उनकी कोशिश का प्रतीक है। माताबाड़ी में आयोजित ये कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं को अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल को बढ़ावा देकर महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें नए अवसरों से जोड़कर ऐसी पहले छोटे स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को स्थायी आजीविका में बदलने में मदद कर सकती है। क्योंकि जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं मिलता, इससे परिवार मजबूत होते हैं और पूरे समुदाय का विकास होता है। सशक्त महिलाएं, मजबूत परिवार और आत्मनिर्भर समुदाय। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला, श्याम सुंदर दत्ता के साथ गोमती जिले से वैष्णवी।

श्रोताओं, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक खास रिपोर्ट सुनते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। पवित्र यात्रा होने के साथ साथ ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा

0: अभी होती है क्योंकि पर्वतों की दुर्गम चोटियों से यात्रा होकर गुजरती है और तिब्बत में मानसरोवर झील तक ये यात्रा होती है। और इस यात्रा का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव का जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में, वो बहुत पवित्र स्थान है और इसी के दर्शन के लिए यात्री इस यात्रा को करते हैं। और साथ ही अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्मों में भी इस यात्रा की पवित्रता की मान्यता है। और इस यात्रा में यात्री अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो आइए हम एक विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में आपको सुनवाते हैं।
1: सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने रविवार को गांतोक में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के नथुला मार्ग से सफल समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों, सपोर्ट स्टाफ और अन्य संबंधित लोगों के प्रयासों की सराहना की गई। मीडिया से बातचीत में एसटीडीसी के चेयरमैन लुकेंद्र रसाईली ने सभी श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने पर बधाई दी और यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी पूरी टीम की सराहना की। रसाईली ने कहा कि श्रद्धालुओं से मिले फीडबैक और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
2: एज अ चेयरमैन बहुत खुश हैं क्योंकि इतना सक्सेसफुल हुआ, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है क्योंकि जितना भी यात्री हमने सब 10 बैच को ही हमने फेलिसिट करने के लिए इधर आए थे। सिर्फ फेलिसिट नहीं था लेकिन हमको फीडबैक भी चाहिए था कि सो दैट वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर के लिए, और बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा बात क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक इतना इम्पोर्टेंट यात्रा है क्योंकि जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है 140 बिलियन में देयर आर हिंदूज और द बुद्धिस्ट और दे आर द सिक्स, दे ऑल वांट टू गो टू कैलाश फॉर टू वर्शिप शिव जी। तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म में क्या होता है कि सिक्किम का टूरिज्म में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि जितना भी यात्री आ रहा है इधर से जा रहा है नथुला से, उन लोग को बहुत मीडिया में पब्लिसिटी भी हुआ है और भव्य रूप में हम लोग इनॉग्रेशन किया और आज भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग को कल्बिनेट हो गया है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हिसाब से वो सिक्किम को इतना बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत पब्लिसिटी कर रहा है कि सिक्किम विजिट के लिए ऑर्गेनिक स्टेट है, पीपल ऑफ सिक्किम अच्छा है।
1: उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जाएगा। एसटीडीसी के प्रिंसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरमी यूशल ने बताया कि इस वर्ष कुल 10 बैच में 464 श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा 12 जून से शुरू हुई थी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आभार व्यक्त किया।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 द लास्ट बैच हैज अराइव्ड इन यात्रा टुडे फ्रॉम चाइना बाय नथुला एंड दिस यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम 15th June 2026 एंड कंक्लूडेड टुडे एंड इन द कोर्स ऑफ द यात्रा 10 बैचेस वर सेंट एंड आउट ऑफ दैट total of 464 yatris participated and SCDC provided all the hospitality and other services and we are happy to say that the yatras have gone off comfortably and without any mishap.
1: गिरमी यूशल ने यात्रा को सफल बनाने में एसटीडीसी की टीम और सपोर्ट स्टाफ के प्रयासों को भी रेखांकित किया। वहीं लाइजन अधिकारी नितेश कुमार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए एसटीडीसी टीम और सिक्किम सरकार का आभार जताया। यात्रा की सफलता ने श्रद्धालुओं के साथ साथ इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे अधिकारियों और सहयोगी टीम के समन्वित प्रयासों को भी रेखांकित किया। आकाशवाणी समाचार गांतोक से मैनक चटर्जी के साथ मैं दिलराम दुलाल।
0: श्रोताओं, सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति सिक्किम की एक बहुत बड़ी विरासत है और यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित करती है। तो सिक्किम की लेपचा संगीत संस्कृति का प्रदर्शन अभी हाल ही में एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में देखने को मिला और इस समारोह की ये खास बात रही कि यहाँ पर तुंगवुक नाम का एक जो महत्वपूर्ण वाद्य है, इसके वादकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 32 वादकों ने एक साथ तुंगवुक वाद्य बजाकर इस रिकॉर्ड को कायम किया और एक अलग ही माहौल का प्रदर्शन देखने को मिला। ये वाद्य GI टैग प्राप्त वाद्य है और लेपचा संगीत एक मधुर संगीत है। आइए हमारे संवाददाता के इस विशेष रिपोर्ट में इस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में जानते हैं और साथ ही

0: gathering of Lepcha musicians playing traditional instrument Tumbuk.
1: 7 अगस्त को गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित योंगथोंग ओपन मार्केट में 32 कलाकारों ने एक साथ तुंगबुक बजाया। GI टैग प्राप्त यह पारंपरिक वाद्य लेपचा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
0: All right, ladies and gentlemen, let's count with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go!
1: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सबसे बड़े तुंगबुक वादकों के समूह का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को मनन केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान सौंपा गया। यह पहल योंगथोम सीजन 3 के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लगभग भुलाए जा चुके तुंगबुक वादन को फिर से जीवंत करना और युवा पीढ़ी को लेपचा लोक संगीत सीखने के लिए प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तेंदोंग लोरूम फात लेपचा समुदाय के मयेल ल्यांग यानी सिक्किम प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने विकास के साथ साथ भाषा पारंपरिक ज्ञान संगीत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बोंग थिंग की पारंपरिक रस्मों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लेपचा विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों तक सिक्किम की स्वदेशी परंपराओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मोइनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

3:25 वॉयलिन के इस खूबसूरत पीस के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1। आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मैं सीमा वर्मा। शुरू करते हैं बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जो आपके दिल के बड़ा करीब है, जिसे कहते हैं

फिल्म कर्ज से हमने शुरुआत की आज के मन भावन की, और ये जो गाना आप तक मैंने पहुंचाया है ये सनावत से शेख मूसा मोहसिन और राजकुमार पोडाना, और राजकुमार जी का ये पसंदीदा गीत आज थोड़ा सा चेंज किया। पहला गीत हमेशा अपनी तरफ से सुनाती हूँ आपको, मैंने सोचा कि समय बच जाएगा, चलिए आप ही की पसंद से शुरुआत करते हैं। और ये तो वो लोग हैं जिन्हें नंबर मालूम है और वो हमें बिना बताए ही यानी बिना बोले मेरे नंबर हमें कर देते हैं क्योंकि नंबर उन्हें याद हो गया है। जो अभी अभी जिन्होंने ट्यून इन किया है मैं उन्हें बता दूं, ये एफएम गोल्ड 100.1 है, मन भावन प्रोग्राम है जी, आपकी पसंदीदा फरमाइशों का प्रोग्राम है। 9868868753 एक बार फिर से नंबर सुन लें आप, 9868868753। और मन भावन प्रोग्राम में आज आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और बड़े ही खुशी के साथ और बड़े ही प्यार के साथ आपके पसंदीदा गीत आपके अपनों तक या फिर सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचा रही हूं। यहां पर हमारे पास जो संदेशा है चलिए शुरू करते हैं, ये है जी दुर्गई सेलू से, चंदू कुलकर्णी है इनके साथ, हेमलता और सी आर कुलकर्णी है, इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है। और अगला संदेशा हम लेते हैं, आप कई बार आपका कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो इस वजह से वो ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए कृष्ण मेहरा हैं, ये कोमल मेहरा हैं, इनके साथ किरण हैं, कपिल हैं और कुणाल मेहरा हैं, इन्होंने नमस्ते कहा है। और दादरी गेट भवानी से इन्होंने हमें संदेशा भेजा, शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। छत्तीसगढ़ से हमारे पास विश्वनाथ साहू जी, पंकज साहू हैं, तिरुपति जी हैं और कुंती साहू हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संदेशे के लिए। और संदेशों की इस फेरिस्त में अगले संदेशे की तरफ, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से गुड आफ्टरनून करते हैं, और ये हैं जी किशन वंजानी हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगला संदेशा जो है वो हम तक किसने पहुंचाया है, हरजिंदर सिंह भाटिया हैं, एंजल भाटिया हैं, सोनू भाटिया हैं, तमन्ना भाटिया हैं, और हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं इन्होंने टीचर्स डे की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्कूल के टीचर्स को तो खैर हम याद रखते ही हैं, वो टीचर्स खास तौर पे हमें याद होते हैं जो हमसे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे या हमें जो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होते थे वो हमें याद होते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी की बात करें तो इस दुनिया में, इस दुनिया को जीते हुए हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई टीचर मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही मिलता है, ज़िंदगी में किसी बात की सीख देने वाला भी हमारा टीचर ही होता है। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपका संदेशा ले लिया गया है और आप की फरमाइश आप तक पहुँचा दी गई है तो कृपया दोबारा ना लिखें आप, वो इसीलिए भी क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हों। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये जी कौन है, ये हैं रोशन लाल देवगन है, कौशल्या देवगन है, हेमलता और डिंपल देवगन है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगले संदेशे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो जी शमशूर कमर राही हैं, शाहीन फातिमा है, अदनान खान साहब हैं, फैज़ान खान हैं और अनु खान हैं, कंच डुंडवारा से आपने हमें संदेशा भेजा है। और होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु हैं, और स्वर्ण सिंह जो हैं वो गांव दौले वाला पंजाब से हमें संदेशा भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़ जी हैं हमारे साथ, अम्रपाली हैं और अनामिका हैं और प्रणीता हैं इनके साथ। और अगला संदेशा लूं या आप तक एक गीत पहुंचाऊं, चलिए केरलम से हमारे पास एन श्री निवासन का संदेशा आया है और इनके साथ श्रीजा निवासन।

और अंकिता है, अभिषेक है, और अगला संदेशा अब फिलहाल के लिए यहाँ पे विराम लगाना है क्योंकि बहुत देर से मैं पढ़ रही हूँ। और एक गीत है, खूबसूरत गीत है, अपने समय की बहुत ही मशहूर फिल्म गंगा जमुना का गीत है। 1961 में ये फिल्म आई और सभी गीत इस फिल्म के बहुत पसंद किए गए। आशा जी की आवाज़ में ये गीत

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तीन श्रेणियों में चयन डेयरी किसान सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025 आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं आपकी

0: मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज मन भावन में आपके साथ मैं सीमा वर्मा और मेरे साथ आप हैं, हम सबके साथ गीत हैं और आपके साथ थोड़ी सी सुस्ती भी है। अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज शनिवार है। हम में से बहुत सारों की आज छुट्टी होती है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हाफ डे होता है और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सैटरडे का या संडे का इंतज़ार करते हैं कि पूरे हफ्ते की जो थकान है वो उतारनी है जी हमने, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साहब घर जो है वो भी काम मांगता है और घर भी इंतज़ार करता है कब शनिवार आएगा और कब रविवार आएगा तो हमारा जो काम है पेंडिंग वो किया जाए। तो साहब आप अपना काम भी करते रहें और साथ हमें भी सुनते रहें क्योंकि हम यहाँ पर आपकी फरमाइशें जो हैं वो पहुँचा रहे हैं 9868868753। ये वो नंबर है, एक जादुई नंबर है साहब, आप इसे करिए तो सही, फिर उसके बाद देखें कि पलक झपकते ही आपका संदेशा हम तक पहुँच जाएगा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हैं और आपने सत्यम शिवम सुंदरम का एक गीत जो है उसकी फरमाइश की है। जी हाँ, अभी जन्माष्टमी का जो खुमार है बिल्कुल कायम है, पिछले कल हम सब ने जन्माष्टमी मनाई और थोड़ी सी बचपन की बात भी करेंगे लेकिन कुछ मैसेजेस पढ़ लें उसके बाद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी हैं हमारे साथ और करुणा वर्मा है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से अगर हम अपना ये संदेशा लेते हैं तो मुकेश कश्यप हैं, शीतल हैं, सोनू सुरेश, काजल, सीमा, लक्ष्य सोना और मोहिनी ऋतिक, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। रुपेश शंघाई ये महाराष्ट्र से हमें मैसेज करते हैं, इनके साथ महेश हैं, इनके साथ प्रजेश हैं और प्रतेश हैं, पूरा का पूरा शंघाई परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, पूरा का पूरा अब्बासी परिवार है जो हमें संदेशा भेज रहा है। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आपका मैंने मैसेज जो है उसे पढ़ लिया है और आप मुस्कुरा बैठे हैं अपने गीत को सुनने के बाद तो आप अपने दूसरे भाई बंधुओं को भी थोड़ा सा समय दें कि वो हम तक अपना पहला संदेशा पहुंचाएं। 9868868753। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार हैं और ऐसे तो मैं सारे संदेशे पढ़ती ही चली जाऊंगी और गीतों की जो दिलकश दखलंदाजी है फिर वो कैसे होगी। ताज मोहम्मद अंसारी साहब बताइए ज़रा, आप गुलाम साबिर राही हैं आपके साथ और महराज जहां हैं, बहुत शुक्रिया आपने उत्तराखंड से हमें संदेशा भेजा है। मैं अपनी वाणी को बस विराम लगाती हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गीत फिल्म सट्टा बाजार से, आइए सुनते हैं। 1959 में ये फिल्म आई और गाना बहुत इंजॉय करेंगे।

7753 ये नंबर है जिस पे आपको हमें मैसेज करना है। वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान खुराना है, और ये हमें जो संदेशा भेजा है ये बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें इन सब ने संदेशा भेजा, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं चंडीगढ़ से हमारे पास सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का संदेशा आया है, आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आदिल कंवर गुन्नौर से हमारे पास ये संदेशा भेजते हैं, शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और अगला संदेशा जो है वो किसका है भला, ये भी देखना होगा। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी हैं इनके साथ, और इनके साथ सोनाली हैं, सोनम हैं, आशीष विश्वकर्मा हैं, और बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश से आपने हमें अपना ये संदेशा भेजा है। वहीं अगर हम एक और संदेशे की तरफ जाएं, सिरसा हरियाणा से पूजा हैं, यश हैं और नायरा हैं, इन्होंने भी हमें संदेशा भेजा है। कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खां साहब हैं, फैज़ी हैं, फरजान हैं, फरहीन हैं, फरहान है, फारिया है और ताहिरा है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले हम जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, कल आपने इस गीत को ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर सुना होगा और कई कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी फरमाइश आई है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। याद कीजिए बचपन में हम किस तरह से जन्माष्टमी से पहले अपने घर के बाहर या आंगन में बहुत सुंदर सुंदर झांकियां बनाया करते थे, यही हमारा बचपन हुआ करता था, ये खेल हुआ करते थे घंटों घंटों, फिर आवाज़ें लगती थी घर से कि खाना खाने तो आ जाओ कम से कम, क्या दिन थे वो। लेकिन ये गीत अब मेरी

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations

टीचर्स के लिए ही नहीं, आज बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हैप्पी टीचर्स डे सबको। और बच्चे भी आज जो 11th और 12th की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो साड़ी पहनकर आज स्कूल से बाहर निकल रही थी, मैंने उन्हें देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। फिलहाल वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे

0: पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें स्ट्रांग रूम तोड़ना और प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ शामिल है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशुली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की टीमों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालेमा अनेजा डैंग। President Draupadi Murmu has said, a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. She said, a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The President was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today.
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
2: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country. Stressing on the importance of knowledge as the greatest source of power, the President said, education empowers individuals to think independently, make informed decisions and contribute meaningfully to the progress of the nation. The President said that dedicated teachers are the frontline nation builders. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
1: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते. टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे.
2: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi this evening. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The flood situation remains critical in Bihar, including in the state capital, Patna. The rising water levels of major rivers in Bihar, including the Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. Relief and rescue operations are underway in the affected districts. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav reviewed the flood and heavy rain situation in Bhopal today. He visited the SDRF State Command Center and spoke to the officials. The Chief Minister reviewed the deployment of rescue teams and directed the NDRF, SDRF and district administration teams to remain fully prepared. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. MEA spokesperson Randhir Jaiswal said yesterday that 275 Indian nationals remain missing. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on the 26th of last month. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from the affected areas. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. IST. And that's the end of this news bulletin.

सभी सुनने वालों को नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। एफएम गोल्ड पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में शाम 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे साथियों, और 5:10 पर आप सबकी मुलाकात मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ होगी। हमारे साथ जो कदम दर कदम आगे बढ़ेगा वो कार्यक्रम है गाते गुनगुनाते, इसमें 80 और 90 के दशक के कुछ रेट्रो गीत हम सुनेंगे। 6:00 हिंदी में समाचार होंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 का वक्त कार्यक्रम विश्लेषण का रहेगा। शाम 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। और आगे की जानकारी देने से पहले एक बहुत खूबसूरत गीत, आइए फिल्म चिराग से सुन लेते हैं।

0: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 में। और हम आप तक पहुंचा रहे थे ये बात कि आप एफएम गोल्ड में और कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अगर फिल्मी गीतों की बात करें तो 7:25 पर शाम आप सुन सकते हैं सांझ ढले कार्यक्रम, आपके साथ रहेंगी रेशमा तिवारी। वहीं शाम 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम आप सुनना ना भूलिएगा। एक बेहतरीन कार्यक्रम है जिसमें गीतों के साथ साथ हम किस राग पर आधारित वो गीत हैं उनकी जानकारी देते हैं, ये ज़रूर आप सुनिएगा। 8:30 का वक्त स्पॉट स्कैन का रहेगा। वहीं 8:45 पर आप समाचार संध्या सुन सकते हैं। रात 9:00 न्यूज़ एट 9 होगा और 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और फिल्मी गीतों की एक बार फिर से अगर हम बात करें तो 10:30 का वक्त हर श्रृंगार कार्यक्रम का होगा। आपके साथ इस कार्यक्रम में विकास रहेंगे, इससे ज़रूर ज़रूर सुनिएगा। रात 11:10 की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम मार्केट मंत्र आप सुन सकते हैं। और 11:40 पर आप एक बार फिर विकास के साथ जुड़ेंगे, साथ होगा कार्यक्रम गीत मेरे मन में। तो ये तो कार्यक्रमों की जानकारी हमने आपको दी। आज आप अपने मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर कौन कौन से कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, और आपको याद दिला दें कि आप हैं
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: साथियों, हमने आपको शुरू में कहा था कि 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार। तो वक्त हो चला है अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Sahitya Academy, an autonomous organization under the Ministry of Culture, Government of India, and India's premier literary institution, invites applications for various posts on direct recruitment basis, including Deputy Secretary, General Administration 1, unreserved post, Assistant Editor 1, unreserved, Senior Library and Information Assistant 2, 1 OBC, 1 EWS, Junior Translation Officer 1, unreserved, Technical Assistant 1, OBC, Program Assistant 1, unreserved, Publication Assistant 5, 3 unreserved, 1 SC, 1 EWS, Proofreader cum General Assistant 2, 1 unreserved, 1 OBC, Stenographer Grade 2, 4 posts, 2 unreserved, 1 OBC, 1 EWS, Messenger cum Rider, 1 unreserved, Van Driver, 1 unreserved, Junior Clerk 4, 1 OBC, 1 SC, 1 ST, 1 EWS, and Multitasking Staff 6 vacancies, 3 for OBC and 3 for EWS. The post carry pay levels 11, 10, 6, 4, 2 and 1 as applicable as per the 7 CPC. With postings at the Academy's head office New Delhi and regional sub-offices in Mumbai, Kolkata, Bangalore and Chennai. Detailed eligibility qualifications, experience, reservations and location-wise vacancy details are available.

0: 9 applications from Indian nationals for one post of translator Group B through deputation or direct recruitment. The post carries pay level 6 with one unreserved vacancy and the upper age limit is 30 years. The application window closes on 21st September 2026. The application fee is ₹500 and ₹250 for SC/ST. Women and PWBD candidates are exempted. Applications must be submitted online through the recruitment section on the website. For detailed eligibility, qualifications and other conditions, kindly visit the website. That is at www.ncpsl.csu.co.in. I repeat, www.ncpsl.csu.co.in. Archaeological Survey of India, ASI, Ministry of Culture, Government of India, invites applications for one post of Additional Director General, Research and Training Capacity Building, Group A Gazetted Technical in Level 14 as per the 7 CPC, on deputation including short-term contract basis. Eligible officers from central or state government, UTs, universities, recognized research institutions and statutory autonomous organizations should possess a doctorate in archaeology, ancient medieval Indian history, structural scientific conservation of ancient monuments or heritage buildings, with 15 years experience in training, capacity building or guiding research and published research papers, reports in relevant fields. The maximum age limit is 56 years as on the closing date. The selected officers will head ASI's Research and Training Division and supervise training and capacity building activities. Applications in duplicate along with complete and updated ACRs and RPARs should be submitted through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The initial place of posting is ASI Headquarters, Dharohar Bhavan, 24 Tilak Mark, New Delhi, 11001. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। व्यावसायिक चिकित्सक, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक श्रवण दिव्यांगता तथा नर्स। आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट pdunippd.nic.in। केंद्र, राज्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से रिक्त पदों के लिए स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत निर्देश, आवश्यक योग्यताएं, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mhu.ac.in। दूरसंचार विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ पदों को भरा जाना है, जिनका विवरण इस प्रकार है। आशुलिपिक ग्रेड 1, वरिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक ग्रेड 2 तथा अवर श्रेणी लिपिक। नियम और शर्तें, आवेदन का प्रपत्र तथा अन्य पात्रता मानदंडों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cgca.gov.in। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कंसल्टेंट प्रशासन एवं स्थापना, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, कंसल्टेंट मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन, यंग प्रोफेशनल वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, यंग प्रोफेशनल मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन तथा यंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी और तकनीक। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी

0: के लिए देखें राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की वेबसाइट jute.com। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के पद को भरने के लिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर इन पदों को भरने के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। महाप्रबंधक विधि पदों की संख्या 2, महाप्रबंधक परिवहन योजनाकार 1 पद, महाप्रबंधक परिवहन अर्थशास्त्री 1 पद, महाप्रबंधक पर्यावरण 1 पद, महाप्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पद तथा महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 2 पद और उप महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 4 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 3 1 पद, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2 1 पद और परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 2 पद। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु में छूट, मासिक पारिश्रमिक, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, सामान्य निर्देश और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.nccr.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, दोपहर के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आज परिक्रमा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ बात करेंगे शिक्षक दिवस की, जो कि बेहद उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर आज हम उन को भी नमन कर रहे हैं जो हमारे जीवन को ज्ञान से अलोकित करते हैं। और एक शिक्षक न केवल अक्षर का ज्ञान देता है बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी को एंकर लालिमा अनेजा डैंग। हेलो लालिमा।
2: हेलो करिश्मा, आपने बहुत सुंदर रूपरेखा बांधी और जैसे आपने शिक्षक डे के बारे में आज बताया, वेल लेट मी फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स। वेल यस, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। एज करिश्मा मेंशनड, आई एम लालिमा अनेजा डैंग एंड वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट बिफोर वी गेट ऑन टू अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। So let's begin with the headlines, shall we, Karishma? Okay, here we go. President Draupadi Murmu says Vikasit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
2: प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी।
2: इंडिया डिलीवर्स 95 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड हिट नेपाल टू सेंड मोर सप्लाईज एंड बेली ब्रिजेस।
1: चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज

0: life skills. It's about observation. Observe every child and see what is lacking where, and then hand hold the child to, you know, get out of it.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के बजाय यह सुझाव दिया था कि इस दिन को शिक्षण पेशे के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए. और यह परंपरा 1962 में शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं लालिमा हमारा देश एक ऐसा है जहां पर गुरुओं को सर्वपरि सबसे ऊपर रखा जाता है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट. वी ऑलवेज से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. दैट मींस वी रियली एलिवेट द गुरुज स्टेटस वेरी हाई एंड प्रोबेबली दिस इज द ओनली कंट्री वेयर वी टेक देम टू सच अ हाई पेडेस्टल. एंड कमिंग बैक टू यू नो द टीचर्स डे एज इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड, द कमीशन्स 1948-49 report is regarded as one of the important, I'm talking about the University Education Commission, which was formed in 1948. This commission's report is regarded as one of the important foundations for the development of a higher education in independent India, and its recommendations also contributed to the concept of institutions being recognized as quote unquote deemed to be universities.
1: तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारे आज के स्कूल और कॉलेज में यह जश्न कुछ अलग तरह से मनाया जाता है. छात्र अपने शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, खेल और विशेष गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं.
0: And I remember when I was small, this just after the Dashehra day, you know, a small children are taken to the gurus, to the teachers. A thali is taken, rice is spread on the thali, and the children, the teacher holds the little child's hand and makes him write Om or whatever the auspicious symbol, or which means you are initiated into education formally by your guru or your teacher. That is such a beautiful parampara we've had in our country, isn't it?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. तो चाहे हमारे स्कूल के पहले टीचर हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों, कोच हों, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमें क्लासरूम के बाहर कोई जरूरी चीज सिखाई हो, हम जो बनते हैं उसे आकार देने में टीचर की हमेशा से खास भूमिका रही है.
0: एंड आस्क एनीबॉडी इन आवर कंट्री फॉर दैट मैटर, दे विल हैव सम फेवरेट टीचर for sure, you know, in school or in college, who inspired them, some role model. If teachers, a good teacher becomes your role model, I think half the job is done, because if you have role models as you know, I'm sorry to say, film stars and all those, then it's tough. How are you going to, you know, chart your course of life? What will the blueprint of your life be if you have Bollywood stars as your role models? But if you have a teacher as a role model, surely it's going to be way up. Your character will be strengthened, your hard work will bear fruit, because if your role models are good, you will follow the correct path. Don't you agree with me?
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बेहतरीन टीचर हमें सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि वे हमें खुद जवाब खोजना भी सिखाते हैं, जो कि आजकल की जिंदगी में और भी ज्यादा जरूरी है.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स लिसन टू अ वेरी इंस्पिरेशनल डायलॉग फ्रॉम द फिल्म हिचकी इन द वॉइस ऑफ रानी मुखर्जी. लेट्स लिसन इन.
2: अपने नोटबुक का आखिरी पेज खोलो, 10 मिनट लो और सोचो, किस चीज से डर लगता है, नफरत है अपने बारे में, उसे उस पेज में लिखो. कम ऑन, जब तक ये पेज किताब में है, तुम्हारे जिंदगी की किताब यहीं पे खुलेगी और यहीं पे रुक जाएगी. लेकिन अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो वही सच तुम्हारे पंख बन जाएंगे.
1: तो कभी कभी हमें एक टीचर की असली अहमियत कई सालों बाद समझ आती है. हम बड़े होते हैं, असल दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक हमें टीचर की दी हुई वह सलाह भी याद आने लगती है.
0: यस एब्सोल्युटली. आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, शी वुड नेवर वेस्ट टाइम. ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो टॉट मी टू बी वेरी पंक्चुअल करिश्मा, टू बी ऑनेस्ट वी गो बाय द सेकंड ईयर. बट व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैड अ टीचर हु टॉट मैथ्स, एंड व्हेन शी वुड एंटर द क्लास शी वुड से, व्हेन आई एंटर द क्लास योर नोटबुक्स शुड बी ओपन सो दैट वी डोंट वेस्ट time and you know we don't waste minutes opening the textbooks. So these are the small things which a good teacher tells you, and as I said, if those teachers become your role models, your life, your blueprint for your life is laid out, and life will be easy. लाइफ विल बी इजी।
1: बिल्कुल, तो आइए आज हम उन शिक्षकों को याद करें जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी गलतियां सुधारी और हमें वह इंसान बनने में मदद की जो आज हम हैं।
0: Absolutely. And moving ahead, well, Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a group.

0: greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves.
1: किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही विकसित भारत का सपना सच हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही असल में प्रगतिशील समाज होता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह को संबोधित कर रही थी।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ लालिमा, अगर देखा जाए तो जश्न से परे शिक्षक दिवस हमें एक बहुत बड़ी बात ये भी याद दिलाता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी क्षमता को पहचानना, सवाल पूछना, अच्छे संस्कार अपनाना और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनना।
0: एब्सोल्युटली, आई रिमेम्बर द कोट ऑफ श्री अरबिंदो, ही सेड You can't teach a child everything, but a child can learn everything, you know. Jeez. Which means, I remember there were small children in my neighborhood and they learned from a teacher who wouldn't say, ye padho. She would say, chalo aankh band karo aur hum ab ye sunte hain aur ye padhte hain. Toh chalo mil ke padhte hain. When that is the attitude, it becomes a great movement. The learning becomes a different experience rather than teaching and learning, you know. So it's not us and them. It's like, chalo mil kar padhte hain. All right. So enough on Teacher's Day today.
4: Oonche rahe jo tere kad se iraade.

0: Nature's own cleanup team. He noted that the government is taking concerted steps towards vulture conservation to ensure that these important birds once again soar across the country's skies. The union minister also urged the citizens to renew their pledge to protect vultures, restore their habitats and safeguard the delicate balance of ecosystems. With Sanyukta's report, Shagun Chopra for Parikrama.
1: और इसके साथ ही अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
2: Yes, that's right. Sushma Tamang, a postgraduate teacher of chemistry at PM Shri Government Senior Secondary School in Dikling, has been selected for the prestigious National Teachers Award 2026.
3: Born and brought up in Sikkim, she started her schooling from Deorali Senior Secondary School, Gangtok. She completed her graduation with chemistry from Nar Bahadur Bhandari Degree College, followed by Masters of Science in North Bengal University in Siliguri. She had the passion for teaching since her university days. Talking to Akashvani News Gangtok, she shared her aspiration to work for the children in the last mile of Sikkim, maybe some villages or residing in some difficult terrains where quality education is tough to reach. Tamang lauded government for introducing Samagra Siksha and National Education Plan 2020, by which students could be introduced to information and communication technology in classrooms. Tamang further said National Teachers Award will actually push her limits to contribute more in the field of school education in Sikkim and help her students to build Vikshit Bharat. Moinak Chatterjee, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
1: इसके साथ ही अपनी लगन और मेहनत से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले और अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध करने वाले महाराष्ट्र राज्य के चार शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी मुंबई संवाददाता ने इन शिक्षकों से बातचीत की है, आइए सुनते हैं।
4: महाराष्ट्र के बीड जिले में गन्ने के खेतों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गन्ना काटने वालों के बच्चों को शिक्षा की धारा में लाने वाली डॉक्टर कविता गिट्टे जी से हमने पूछा। कविता जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलना आपके लिए कितना खास है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है?
5: यह पुरस्कार मेरे लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, मेरे 29 वर्षों के संघर्ष की स्वीकृति है। यह पुरस्कार मेरा नहीं, बीड के उन उस्तोड़ कामगारों के बच्चों का है जो गन्ने के खेतों में काम करते हुए भी पढ़ने सपना देखते हैं। युवा शिक्षकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, शिक्षक बनना नौकरी पाना नहीं, एक तपस्या है।
4: छात्रों को एक्सपेरिमेंटल टीचिंग और मिलिट्री नजरिए से ढालने की खास कोशिशें करने वाले शिवप्रसाद अरविंद टिंगरे जी ने देश के युवा शिक्षकों और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा,
6: देश के सभी युवा और भावी शिक्षक साथियों से मैं दिल से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप केवल शिक्षक नहीं बल्कि इस राष्ट्र के सच्चे दिशा निर्देशक है। आज के मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हमारे विद्यार्थी आभासी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आकर दिशाहीन न हो, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों के कंधों पर है।
4: म्युनिसिपल स्कूल में नए और मजेदार टीचिंग तरीकों का इस्तेमाल करने वाली नासिक म्युनिसिपल स्कूल की अध्यापक कुंदा बच्छाव जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश के विद्यार्थियों से कहा,
7: अब की परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, आपके सपने बड़े है, परिस्थितियों से आगे है वो सपने। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए हमेशा मेहनत, सातत्य, जिज्ञासा और सकारात्मक सोच को अपना साथी बनाइए।
4: शिक्षक दिलचस्पी से पढ़ाए तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगा रहता है। कविता जी, वैभव जी, शिव प्रसाद जी और कुंदा जी जैसे शिक्षकों के हाथों में हमारे देश का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं। परिक्रमा के लिए मुंबई से प्रार्थना के साथ मैं माधुरी पांगे।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
2: जी जी जी, इन बैडमिंटन इंडियन मेंस डबल्स पेयर सात्विक साईराज, रणकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विल टेक ऑन द मलेशियन डियो ऑफ नूर मोहम्मद अजरीन अयूब एंड टैन वी क्योंग इन द सेमीफाइनल ऑफ द चाइना मास्टर्स इन शेंजेन टुडे। द इंडियन पेयर डिफीटेड डेनमार्क्स किम एस्त्रुप एंड एंडर्स स्कारप रास्मुसन 21-13, 16-21, 21-18 इन द क्वार्टर फाइनल yesterday. With the victory, Satvik and Chirag reached the semi-finals of the China Masters for the fourth consecutive time.
1: और इसके साथ ही एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: जी,
8: Today is one of the most important days in Indian freedom struggle. On this day in 1920, the non-cooperation movement was agreed upon against the British rule to demand Swaraj. It was Gandhiji's first pan-India satyagraha, and the movement arose from the widespread outcry in India over the massacre at Jallianwala Bagh at Amritsar in April 1919, when the British-led troops killed 700 Indians. That anger was also compounded by indignation at the British failure to take adequate action against those responsible, especially General Dyer, who had commanded the troops involved in the massacre. With non-violent methods to be deployed during the Satyagraha, Gandhiji led the movement from the front, during which Indians resigned their titles, boycotted government educational institutions, courts, government service, foreign goods and elections, and refused to pay taxes. The British were perhaps for the first time confronted with such a united Indian front and were visibly shaken. However, a number of violent outbreaks broke the momentum of the non-violent movement. And after an angry mob murdered police officers in Chauri Chaura in Uttar Pradesh state in February 1922, Gandhiji himself called off the movement.
9: Even though the non-cooperation movement could not achieve its goal of Swarajya, the movement was a massive encouragement to millions of Indians and marked the transition of Indian nationalism from a middle class to a mass basis. It colored the country with national zeal, as during this time, many Indian schools and colleges were opened and Indian-made goods became highly popular. The great South Indian patriot and freedom fighter, the Tamil helmsman, Kapalottiye Tamilian, V.O. Chidambaram Pillai or V.O.C. was born on this day in 1872 in Tirunelveli district of Tamil Nadu. Since his young days, he was influenced by Bal Gangadhar Tilak, and along with Subramanyam Siva and Subramanya Bharati, he was the prominent spokesperson for the cause of Swadeshi in the Madras presidency. A renowned advocate, he was one of the earliest to start the Dharma Sangha Nisavuchillai for handloom industry and the Swadeshi stores for the sale of India-made things to the people. He played a lead role in many institutions like the National Godown, Madras Agro-Industrial Society Limited and the Desa Abhiman Sangam. The partition of Bengal in 1905 saw him taking a direct interest in the political struggle.
8: To challenge the domination of British in the shipping industry, he started the Swadeshi Steam Navigation Company on the 12th of November 1906. He purchased two steamships, SS Gallia and SS Lavo, for the company and commenced regular services between Tuticorin and Colombo. His efforts to widen the base of the Swadeshi movement brought him into increasing conflict with the British Raj, and on 12th March 1908 he was arrested on charges of sedition and his barrister's license was revoked. The court imposed a sentence of 2 life imprisonments. However, VOC stepped out of prison in late December 1912 after a High Court appeal reduced his prison sentence. He died in late 1936 with the passion for freedom still raging in his mind till the last moment. An erudite scholar in Tamil, a prolific writer and a dauntless freedom fighter, his life is a story of resistance, strife, struggle, suffering and sacrifice for the national cause.
1: आज हम प्रसिद्ध हिंदी व्यंग्यकार लेखक और पटकथा संवाद लेखक शरद जोशी को याद कर रहे हैं, जिनकी पुण्यतिथि आज। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज, राजनीति और व्यवस्था पर बेहद सरल और प्रभावशाली अंदाज में व्यंग किया। वे केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि फिल्मों और टेलीविजन के लिए भी उल्लेखनीय काम किया। उनके प्रमुख टेलीविजन धारावाहिकों में ये है ये जो जिंदगी है, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी और वह जनाब जैसे शामिल हैं। फिल्मों के लिए भी उन्होंने छोटी सी बात, उत्सव, गोधली और दिल है कि मानता नहीं जैसे फिल्मों के लिए संवाद और लेखन में योगदान दिया। और हिंदी व्यंग्य साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: Let's talk about Neerja Bhanot. Who doesn't know her? She was an Indian flight attendant. On the 5th of September 1986, she saved a large number of passengers on board Pan Am Flight 73, which had been hijacked by four Palestinian terrorists from Abu Nidal organization. And around 17 hours into the standoff, she opened an emergency exit door and began helping passengers escape from the plane. But unfortunately, Neerja was shot and killed by the hijackers. Much later, she was she became the first female recipient, and until 2003, the youngest recipient of Ashok Chakra, the highest peacetime gallantry award of India. She also received Tamgha-e-Pakistan, fourth highest civilian award.

0: was shot and killed by the hijackers. Much later, she was posthumously, she became the first female recipient and until 2003, the youngest recipient of Ashok Chakra, the highest peacetime gallantry award of India. She also received Tamghae Pakistan, fourth highest civilian award of Pakistan.
1: इसके साथ ही आज प्रसिद्ध चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल की जयंती है. विदेश के जाने माने चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रमुख समर्थकों में एक माने जाते थे. उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत में हृदय रोग के इलाज और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में काफी उनका योगदान रहा था. डॉक्टर अग्रवाल को 2005 में डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया.
0: एंड लेट्स टॉक अबाउट सलील चौधरी, अनदर ग्रेट इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, राइटर एंड पोएट हु प्रेडोमिनेंटली कंपोज्ड फॉर बंगाली, हिंदी एंड मलयालम फिल्म्स. ही कंपोज्ड फॉर म्यूजिक फॉर फिल्म्स, ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर फिल्म्स इन 13 लैंग्वेजेस एंड व्हिच इंक्लूडेड 75 हिंदी फिल्म्स. जस्ट टू टेक यू बैक इनटू नॉस्टैल्जिया.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू कर

0: करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के डिंडीगुल से आ रहे इन 8 विद्यार्थियों को ले जा रही एक कार सड़क निर्माण और यातायात डायवर्जन के काम के दौरान एक खड्डे ट्रैक से टकरा गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि घटना से पहले घटनास्थल पर व्यापक सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेत लगाए गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today said a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi, on the occasion of Teachers' Day, the President said a society that respects their teachers is a progressive society in the right terms. She asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers.
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country, highlighting the importance of knowledge as the greatest source of power. She said education empowers individuals to think independently, make informed decisions, and contribute meaningfully to the progress of the nation. The President also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 school teachers selected from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher educational institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by President Draupadi Murmu on the occasion of Teachers' Day. In a social media post, Mr. Modi said the article highlights teaching as the sacred task of shaping humanity, encouraging independent thinking and curiosity. He said the President has called on teachers to guide students to be good human beings who uphold cultural heritage

5:11:15. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और इस शनिवार की जानदार शानदार शाम है, और इस जानदार और इस शानदार शाम में आपके साथ गाते गुनगुनाते आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है आपकी दोस्त सीमा वर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, और आज के सफर का पहला गीत सुनते हैं।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और बड़ा खूबसूरत गीत गाते गुनगुनाते की दूसरी पेशकश, समय आपको बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए अभी तो बहुत समय है, बता देंगे, लेकिन आप हैं शनिवार की जानदार शानदार शाम अपने मनपसंद कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में सीमा वर्मा के साथ। वैसे तो सुबह होते ही जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना होता है और बड़ी मुश्किल से छोटे बच्चों को तो उठाया जाता है कि चलो चलो स्कूल जाओ। और आज स्कूलों की बात भी हो रही है क्योंकि आज टीचर्स डे है। सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स का डे नहीं है, ज़िंदगी में हमें जो भी एक अच्छी सीख देता है वो हमारा टीचर्स होता है, इसीलिए हैप्पी टीचर्स डे। लेकिन ये पालकी में सवार हो कि न जाने कहाँ जा रही हैं, आइए सुनते

क्या मजेदार गीत अभी हमने सुना फिल्म खलनायक से, और अभी हमने टीचर्स डे की बधाई दी और यही कहा कि स्कूली टीचर्स को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को शुभकामनाएं, लेकिन जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें सही राह बताते हैं, कभी कोई सुझाव देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, वो भी हमारे टीचर्स होते हैं जब जब हम तकलीफ में आते हैं, और कोई हमारा सहारा बनता है तो वो भी तो हमारा टीचर होता है। तो टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और बहुत बहुत खास दिन है जिसके बारे में साथियों बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे भी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, तो नाम से ही आपको जैसे पता चला है साथियों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हमें चाहे नजर नहीं आती है लेकिन हमें चलाने में, हमें बिठाने में, हमारा हम जो काम करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर चलाते हैं, जो भी हमारी मूवमेंट होती है, इसमें जो अहम भूमिका अदा करती है वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, और जिसका हमें बहुत बहुत ख्याल करना चाहिए। तो आज इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे है। ये जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जिंदगी जो है उसका रुख चाहे बदल जाता है लेकिन जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए और हिम्मत से आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हमेशा हम सतर्कता की बात करते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हम कोशिश करें कि इतने सतर्क हों कि ऐसी तकलीफ ना हो हमें। और इस सतर्कता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे हम अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं, हम सब लगाते हैं अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट, तो गाड़ी के पीछे वाली सीट में भी सीट बेल्ट होती है, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि कितने लोग पीछे वाली सीट बेल्ट को यूज़ करते हैं। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है, ये जो दिन होते हैं जिन्हें हम मनाते हैं, ये शायद इसीलिए होते हैं ताकि हम ये जो बातें हैं इनको हम रिफ्रेश कर सकें। तो पीछे जो गाड़ी के जो सीट होती है उसकी सीट बेल्ट

लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मियों के दिनों में कई बार ऐसा होता है ना कि डाइव मारते हैं, तो ये जो डाइव स्विमिंग पूल में मारते हैं या फिर पॉन्ड्स में मारते हैं, तो सबसे पहले सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखें कि जहाँ ये जो स्विमिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं, और देख रेख में है कि नहीं, कोई कोच होना चाहिए साथ में। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ करें उसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हों और हम पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह की इंजरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ना हो। और आज का दिन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम आगे बढ़ें और बहुत ही संभल कर आगे बढ़ें। तो आज ये दिन भी है और हमने इसकी बात तो करनी ही थी, साथ साथ हम गीत भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक बातों के साथ साथ अगर खूबसूरत गीत भी हमें सुनने को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज इस बात के बाद बहुत खूबसूरत गीत 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जिंदगी में कोई आता है तो कितना सहेज कर हम उसे रखते हैं, और जो हमारी जिंदगी में है, जो हमारे इस शरीर में है, उसे संभाल कर सहेज कर रखना तो हमारा फर्ज बनता है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गाते गुनगुनाते का जो सफर है वो चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आपके साथ आज शनिवार की जानदार शानदार शाम सीमा वर्मा, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत गीत अपने समय के 80s के 90s के एक ऐसा दौर जहां रोमांस को एक अलग परिभाषा दी गई और रोमांस के बीचों बीच अगर कभी आंसू टपके तो उन आंसुओं की भी एक अलग कहानी कही गई है ना। आती है जब याद की बदली छाती है तो क्या क्या होता है, ये तो वही बता सकता है जिसको किसी अपने की टूट कर याद आती है। जॉन एलिया साहब का शेर कहता है कि अब तेरी शिकायत किससे कहें, अब तेरी शिकायत किससे कहें, हर शख्स को कह दिया था हमने कि तुझसे बेहतर और कोई नहीं है।

5:43:50 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1। और साथियों, ये तो आप भी जानते हैं कि यादों की बदली जब छाती है तो इतनी जल्दी जो है ये बादल छटते नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जिंदगी है साहब, बहुत बड़ी जिंदगी है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई एक चेहरा आंखों के आगे आ जाता है और बस एक सेकंड लगता है और हम दूसरे जोन में चले जाते हैं, है ना।

बिल्कुल चल रहा है ये सफर गाते गुनगुनाते का। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और मेरे साथ ये बीन कहाँ से बज रहा है, चलिए इसको भी बजाएंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दूं आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 और गाते गुनगुनाते हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप हमें अपनी गाड़ी में सुन रहे हैं, हो सकता है घर पर आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए, और यहाँ आपकी दोस्त सीमा वर्मा आप तक आपकी बहुत खूबसूरत जो पसंद है वो पहुंचा रही हूँ। अब ये जो गीत आप तक मैं पहुंचा रही हूँ ये है फिल्म नगीना से, और बीन की आवाज़ सुनिए। आपको याद है जब हम छोटे थे तो शाम को या कभी दोपहरी में स्कूल से आने के बाद सांप वाले आते थे और वो बीन बजाते थे, और हम सांप का जो खेल है वो देखते थे, ताली बजाते थे, फिर उसे 50 पैसे या 25 पैसे, वो ज़माना कुछ और था, देते थे, बड़े खुश होते थे। ये हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था बचपन का, है ना। लेकिन वक्त बदलता है, हम भी बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए इसमें कुछ दुश्मनी की बात है लेकिन कोई बात नहीं, सुनते हैं। एक शेर कहता है कि हम अपनी इसी बात पे थोड़ा सा गुरूर करते हैं, किसी से दोस्ती हो या मोहब्बत भरपूर करते हैं, लेकिन ये भरपूर क्या कर रही हैं

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

5:56 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन, सीमा वर्मा के साथ। और जो मैंने आपको भी समय बताया, वो समय ये कहता है कि सीमा रुक जाओ, क्योंकि रेशमा आ गई है स्टूडियो में और अब मुझे जाना है, क्योंकि लौटकर फिर अगले शनिवार आपसे मिलने तो मुझे आना है, लेकिन ऐसे तो नहीं जाऊंगी। प्रोग्राम की शुरुआत एक तरन्नुम भरे लहजे से की थी और जो प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग है वो भी कुछ बहुत मज़ेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए साहब, जो पहला नशा होता है ना, जो पहली खुमारी होती है, वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। क्या कहते हैं आप, बहुत एक डिफरेंट फीलिंग होती है। अब ये पहली खुमारी किसी भी चीज़ की हो सकती है। मोहब्बत की सरजमी पर जब आप पैर रखते हैं और ये खुमारी आती है तो शब्द नहीं बचते हैं, समझ नहीं आता है कि किस राह जाना है। किसी शायर ने कहा है कि आंखों से गले लगा लीजिए, आंखों से गले लगा लीजिए, सीने से गले लगाने में पाबंदियां बहुत हैं।

तो साथियों, मैं आपको इस गीत के हवाले किए जा रही हूँ इस विश्वास के साथ कि आप शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे और इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकाश से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैनवी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said, "A Vikasit Bharat will only be possible with quality education." She said a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The President was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today. The President stressed that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our Constitution. She said the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers.
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
1: Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today emphasized on the importance of the culture of healthy disagreement and deliberation. As a part of the ongoing BRICS Chief Justices Forum in New Delhi, Justice Surya Kant addressed the delegations from BRICS member states and partner countries. He emphasized the timely and predictable delivery of justice is necessary. Justice Surya Kant reminded how Nalanda University used to be the most eminent educational center where students and researchers from all over the world used to be admitted without any discrimination or barriers. He added that BRICS should also be known as the living Nalanda University. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said India is increasingly confident in studying and reclaiming its own heritage from inscriptions and maritime trade to mathematics. Addressing the annual History Prize Award ceremony and the Dr. S. L. Bhairappa Memorial Lecture in New Delhi today, the Finance Minister said decolonization should mean expanding the historical archive, bringing in more languages and giving a wider circle of scholars a voice in interpreting the country's past. She said India is now self-assured and no longer waits for anyone else's permission to study and understand its own heritage. The chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Ali Yusuf, has welcomed the United Nations General Assembly resolution that encourages the use of the Equal Earth Cartographic Projection in maps worldwide to replace the Mercator projection widely used so far, which distorts the sizes of continental landmasses. The UN General Assembly has voted to replace the traditional

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। श्रोताओं, पृथ्वी के भीतर मौजूद अपार ताप ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में मौजूद भूतापीय संसाधनों को देखते हुए ये ऊर्जा भविष्य में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। इसी क्षमता को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य भूतापीय ऊर्जा को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये कैसे काम करती है, भारत में इसके संसाधन कितने व्यापक हैं, सरकार की राष्ट्रीय नीति इस क्षेत्र को किस तरह बढ़ावा दे रही है, लद्दाख की पूगा घाटी परियोजना का क्या महत्व है और भूतापीय ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में किस प्रकार योगदान दे सकती है। श्रोताओं, भारत तेजी से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा ने देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नई गति दी है। सरकार ने सितंबर 2025 में भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है और भारत इसके विकास की दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहा है।
2: श्रोताओं, भूतापीय ऊर्जा को सरल शब्दों में समझें तो ये पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त ऊर्जा है। पृथ्वी के भीतर कई किलोमीटर नीचे अत्यधिक तापमान पाया जाता है। पृथ्वी के निर्माण के समय से बची हुई ऊष्मा तथा यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न गर्मी इसके प्रमुख स्रोत है। ये आंतरिक गर्मी पृथ्वी की चट्टानों और भूमिगत जल को गर्म करती है। भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में मौजूद भ्रंश और चट्टानों की दरारें इस गर्मी को पृथ्वी की सतह के करीब पहुंचने का रास्ता देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जलाशयों में गर्म पानी और भाप जमा हो सकती है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूतापीय बिजली उत्पादन में गहरे कुओं के माध्यम से गर्म पानी या भाप को सतह पर लाया जाता है। भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली का उत्पादन करता है। बिजली उत्पादन के बाद पानी को दोबारा जलाशय में पहुंचाया जा सकता है। इसे री इंजेक्शन कहते हैं। इससे जलाशय को बनाए रखने और लंबे समय तक ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है। जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल हीटिंग और कूलिंग, कृषि, जलीय कृषि, ग्रीन हाउस, औद्योगिक प्रक्रियाओं और भवनों के तापमान नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। यानी भूतापीय ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो बिजली के साथ साथ सीधे ताप के रूप में भी उपयोगी है। श्रोताओं, भारत के लिए इसकी संभावनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने देश भर में 381 गर्म झरनों की मैपिंग की है और 10 प्रमुख भूतापीय प्रांतों की पहचान की है। इनमें हिमालयी भूतापीय प्रांत, नागा लुसाई क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सोन नर्मदा तापी क्षेत्र, पश्चिमी तट, कैम्बे ग्रेबेन, अरावली, महानदी, गोदावरी और दक्षिण भारतीय क्रेटोनिक क्षेत्र शामिल है।
1: श्रोताओ, भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण लद्दाख की पूगा घाटी है। समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पूगा घाटी अपने गर्म जल स्रोतों और भूतापीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है। जुलाई 2026 में ONGC ऊर्जा केंद्र ने यहां देश के पहले 2 भूतापीय कुओं को चालू किया। लगभग 1000 मीटर गहराई वाले ये दोनों कुएं भूतापीय जलाशय की क्षमता को समझने और उसका आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रोताओ, भारत के लिए भूतापीय ऊर्जा का महत्व केवल एक नए ऊर्जा स्रोत की खोज तक सीमित नहीं है। ये ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और उन क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का अवसर भी देती है जहां पारंपरिक ऊर्जा ढांचे का विस्तार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सवाल है कि भारत इस क्षमता को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है और इससे ऊर्जा सुरक्षा तथा ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह लाभ मिल सकता है। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
3: श्रोताओं, भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति 2025 का उद्देश्य देश में उपलब्ध भूतापीय संसाधनों की व्यवस्थित खोज, मूल्यांकन और विकास को बढ़ावा देना है। नीति के तहत अनुसंधान, ड्रिलिंग, जलाशय प्रबंधन और प्रत्यक्ष ताप उपयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हीटिंग और कूलिंग के लिए ग्राउंड सोर्स हीट पंप जैसी तकनीकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू परित्यक्त या अनुत्पादक तेल और गैस कुओं का संभावित पुनः उपयोग भी है। भारत में तेल और गैस क्षेत्र में पहले से मौजूद ड्रिलिंग विशेषज्ञता, कुओं से संबंधित डेटा और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल तकनीकी और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर भूतापीय परियोजनाओं में किया जा सकता है। इससे पुराने तेल और गैस कुओं को एक नए स्वच्छ ऊर्जा उपयोग में लाने की संभावना बनती है। श्रोताओं, भारत सरकार अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भी इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है। जुलाई और अगस्त 2025 के बीच भूतापीय ऊर्जा से संबंधित 5 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। गुजरात के अंकलेश्वर में अनुत्पादक तेल और गैस कुओं को रेट्रोफिट कर बिजली उत्पादन की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। गांधीनगर में सौर और भूतापीय ऊर्जा के एकीकरण पर आधारित प्रदर्शन परियोजना के तहत 3 भूतापीय कुएं खोदे गए हैं। तवांग में 5 भूतापीय स्थलों पर क्षेत्रीय जांच और भू रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। वहीं हैदराबाद में एयर कंडीशनिंग के लिए भूतापीय शीतलन प्रणाली विकसित करने पर शोध किया जा रहा है। इसके अलावा उथली भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में बोर होल हीट एक्सचेंजर्स के माध्यम से संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, भूतापीय ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव। जिन क्षेत्रों में भूतापीय संसाधन उपलब्ध है वहां बिजली उत्पादन के साथ साथ हीटिंग, कृषि, जलीय कृषि, ग्रीन हाउस और पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। विशेष रूप से दूर दराज और ठंडे क्षेत्रों में भूतापीय ताप का प्रत्यक्ष उपयोग स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां सर्दियों में तापमान बेहद कम रहता है वहां भविष्य में भूतापीय ताप का इस्तेमाल स्थानीय जरूरतों के अनुरूप किया जा सकता है। इसी प्रकार भूतापीय क्षेत्रों को भू पर्यटन से भी जोड़ा जा सकता है। गर्म जल स्रोत और विशिष्ट भू वैज्ञानिक संरचनाएं पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। श्रोताओं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड के साथ सहयोग के तहत भूतापीय ऊर्जा को सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया है। वहीं सऊदी अरब के साथ हुए समझौता ज्ञापन में भी भूतापीय ऊर्जा को द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है। इंडोनेशिया, अमेरिका, फिलीपींस, तुर्की और न्यूजीलैंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हैं। इन 5 देशों के पास दुनिया की कुल भूतापीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 67% हिस्सा है। भारत के लिए इन देशों का अनुभव तकनीकी विकास और नीति निर्माण के लिहाज से उपयोगी हो सकता है। श्रोताओं, भारत की भूतापीय ऊर्जा यात्रा अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गई है। भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति, अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा लद्दाख की पूगा घाटी में पहले 2 भूतापीय कुओं का संचालन, ये सभी कदम भारत को संसाधन मूल्यांकन से क्षेत्रीय प्रदर्शन और भविष्य के व्यावसायिक विकास की दिशा में ले जा रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today, being Saturday, we'll be taking calls from you on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज शनिवार है। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। श्रोताओं, आज हमारे साथ चर्चा के लिए और आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम शरद।
2: धन्यवाद निखिल, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
0: Benchmark domestic indices decline for the fourth consecutive week. Sensex and Nifty falls around 1%. US stock market indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट का रुख। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% नीचे आए। अमरीकी शेयर बाजार में इस सप्ताह मिला जुला असर देखा गया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह के दौरान 9% से अधिक का उछाल।

0: आर्थिक आंकड़ों के असर को सीमित किया। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 750 अंक यानी 1% गिरकर 76,515 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 278 अंक यानी 1.1% नीचे आकर 23,898 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में इस सप्ताह मिड कैप सूचकांक 1.5% गिर गया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक 20,187.80 के नए उच्च स्तर पर पहुंचा और अंत में लगभग सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ। सेक्टर के हिसाब से देखें तो अगस्त में ऑटोमोबाइल की अच्छी बिक्री के बावजूद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4% की गिरावट आई। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.6% नीचे आए, जबकि निफ्टी मीडिया, हेल्थ केयर और FMCG इंडेक्स में भी 2-2% की सुस्ती देखी गई। हालांकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में इस सप्ताह 1% की बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में कमी आई। BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.4 लाख करोड़ रुपए घटकर 490 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आ गया। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया इस सप्ताह 90 पैसे मजबूत हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.49 रुपए पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे आज के पहले श्रोता परिमल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परिमल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
1: जी नमस्कार, मार्केट मंत्र सभी टीम को नमस्कार और एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये किसान को लेके। जैसे बॉम्बे में थाने में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगभग 30 ईयर्स हो गया मैं रह रहा हूँ
2: जी,
1: और मेरा नेटिव प्लेस है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सिंगूर टाटा नैनो हुआ था। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पे किसान को, जो हम लोग किसान का जो गवर्नमेंट का स्कीम है आय दुगना करने के लिए, ये जो स्कीम चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30-40 ईयर्स मेरा, मतलब मैं देख के आ रहा हूँ, मेरा पिताजी भी किसान ही थे, तो अभी वहां पे 3 रुपए पर किलो भी पोटैटो बिकता नहीं है। और महाराष्ट्र में हम लोग यह 25-30 रुपीज पर किलो हम लोग खाते हैं, इधर बॉम्बे में परचेज करते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है और ये प्रॉब्लम होने से किस तरीके से गवर्नमेंट, मतलब किसान का आय दुगना होगा? क्योंकि इससे मेरा एक ओपिनियन भी इसमें है कि गवर्नमेंट इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे कॉस्ट भी कम हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान भी आसान से लेके आ पाए, इससे किसान का जो मेहनत किया हुआ जो फल है ना, उसको ऑटोमेटिकली उसको खुद का मेहनत से मिल जाए, ना कि गवर्नमेंट को एवरी ईयर में उसको 10,000, 6,000, 8,000, 10,000 देने से अच्छा उसको एक रास्ता दिया जाए।
2: परिमल जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कई सालों में, आपने ठीक कहा। देखिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है, बहुत से राज्यों में बढ़ी भी है, और किसान सम्मान निधि जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी इसीलिए किया गया। आपका जो एक सवाल का हिस्सा है वो बहुत ही काम का है, और मैं भी अक्सर इसको कहता हूं कि किसान कम कीमत लेकर परेशान होता है और ग्राहक जो है वो महंगी कीमत लेके परेशान होते हैं। तो बीच में जो तंत्र है, बीच में पूरा सिस्टम है, और मैं राजेश और निखिल की भी इसमें इजाजत चाहूंगा कि बीच में जो तंत्र है, जो बिचौलिए हैं इसमें परिमल, वो कहीं लाभ उठा जाते हैं। तो मुझे लगता है किसानों को सीधा हमें APMC से जोड़ना और मंडी समितियों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिससे बीच में जो आड़ती हैं, जो बीच में जो लोग हैं जो मुनाफा बीच में कमाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इतनी लंबी परिमल बीच में चेंज है कि वो 3 रुपए की चीज 25-30 रुपए की ग्राहक के हाथ तक पहुंचती हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे इन बिचौलियों को, और सरकार जब किसान के संबंधित बिल लेकर आई थी तो सरकार की मंशा रही थी यही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल पास नहीं हो पाए, पर अगर वो बिल पास होते तो शायद आज हम कुछ और परिस्थिति देख रहे होते। पर सरकार मुझे लगता है प्रतिबद्ध है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और किसानों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा परिमल, आप भी किसानों को बोलिए कि कोशिश करें कि बिचौलियों के ज्यादा वो उसमें घेरे में ना आए, और सीधा मंडी समिति तक या सीधा जहां पर उसको एक्चुअल रिटेल होता है वहां तक, जितने बिचौलियों की चेन कम होगी मुझे लगता है उतना किसान का मुनाफा हो सकता है।
3: फ्रॉम बेंगलुरु वी आर जॉइंड इन बाय NR प्रसाद, अ वार्म वेलकम मिस्टर प्रसाद।
4: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र, दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। गुड इवनिंग राजेश जी, हेलो निखिल,
3: हेलो
4: तरुण जी, गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग,
4: just one question, but it has got a two subdivision questions.
2: Yeah.
4: Sir, I hold a large, mid, and a small caps.
2: Yeah.
4: Whenever I book the profit, there are two things here.
2: Yeah.
4: What is the percentage to be sold and what is the percentage of profit to be made. In sense, generally what I do when I do the profit booking, minimum of I beat the inflation of 5-6% and another 8-10, 12-14 whatever the available on that day. So that is the percentage of profit I book. How much to sell? That percentage of how much to sell, if it is a large cap or if it is a small cap. How much to hold and how much to sell? These are my two sub-questions, sir.
2: Well, I got your question, Mr. Prasad. It's a very subjective question, because I need to, because we don't name here the, you know, the large cap and mid cap funds which you're holding. So unless we know the name, it's very hard for me to predict that how much more you're going to make profit on this. That's a $1 billion question, that where do you stand today? How long have you been holding? But I would suggest that, you know, I follow a principle called profit in the bank is better than profit in the books. So if you are getting a decent amount of profit, I would suggest you should book, because the markets, the way they have been behaving over the last couple of years, it's been a roller coaster ride. And I was looking at the Nifty returns, you know, over the last 2 years, literally Nifty has not given any returns, if I talk of the 50 bunch of Nifty. So I think if you are getting, Mr. Prasad, a decent amount of profit, I would advise you to book maximum of that, because the geopolitical situation, Mr. Prasad, and the geoeconomic situation at this point of time is very, very fragile. And the way things are going in West Asia, the way things are going, you know, in terms of Strait of Hormuz, crude oil prices, things are looking very, very uncertain. So booking little more profit than what you actually do would not be a bad idea. However, I would like to qualify my answer here that a very specific can only be made out after I know the names of funds, which we don't do here. So therefore, but a general opinion which I personally believe in is that try and book profits. If you are in profits, you can always re-enter. If the market corrects, you can always re-enter. So this is not the end of the story, that once you book the profits, you just, it's over and done. Well, you can look for opportunities to re-enter, but for once, I think it's better to book profits and celebrate the day as well once you book profits.
0: और इस बीच दिल्ली से अमित हमारे आज के अगले श्रोता हैं. अमित, सवाल पूछिए. हाँ,
5: नमस्कार सर. नमस्कार. कोली सर का नमस्कार सर.
2: नमस्कार अमित.
5: सर, सेमीकॉन 1.0 के बाद सेमीकॉन 2.0 की वो की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी चीज सर कि अभी भी हमारी जो हिस्सेदारी है वैश्विक स्तर पे 0.1% है. तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा कि हम 10% हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में सेमीकंडक्टर चिप में लाएंगे. ठीक है सर.
2: जी.
5: तो कहने का मतलब क्या अभी है सर कि अभी भी 80-85-90% जो चिप और सेमीकंडक्टर हम चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं.
2: जी, जी.
5: तो ये जो सेमीकॉन 2 का संदर्भ है, आपके हिसाब से क्या इसकी जानकारी है सर आपके पास? धन्यवाद.
2: देखिए अमित, पहले तो ये हमें समझना होगा कि हम सेमीकंडक्टर में कुछ समय पहले तक थे ही नहीं, हमारा कहीं नाम ही नहीं था. भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया जब सेमीकॉन 1.0 आया, उसके बाद जब कुछ और यूनिट्स की परिकल्पना करी गई, प्राइवेट सेक्टर आया, सरकार ने सपोर्ट दिया, सरकार ने स्कीम निकाली, उसके बाद हम सेमीकॉन 2.0 पर आए, जहां पर सरकार ने उसको और इम्प्रूव किया. इस समय मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 6-7 यूनिट्स आपको इस साल भारत से सेमीकंडक्टर्स के कुछ निकलते हुए भी दिखेंगे, और 6-7 यूनिट्स टोटल इन दी प्रोसेस है. तो मुझे लगता है हमारी हिस्सेदारी भले ही अभी 0.1% हो, पर क्योंकि अभी सारे यूनिट्स इंस्टॉलेशन स्टेज पर है, अपने जेस्टेशन पीरियड में है, जैसे ही यूनिट्स इंस्टॉल हो जाएंगे और 1-2 साल के अंदर फंक्शनल हो जाएंगे, आपको सारे यूनिट्स सामान बेचते हुए दिखेंगे. तो आई थिंक आई कॉल दिस अमित एज वर्क इन प्रोग्रेस. उस परिस्थिति से हम आज बहुत अच्छे हैं. जब हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर बनाने का तो छोड़िए, फैक्ट्री लगाने का तो छोड़िए, यहां पर बात ही नहीं होती थी, हम तो आंख बंद कर इंपोर्ट करते थे. ये सही है कि आज भी इंपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रोडक्शन यहां शुरू नहीं हुई है. पर आपको मैं एक आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सेमीकंडक्टर में बहुत आगे जाने वाला है, और हम ना केवल अपनी घरेलू जरूरतें इससे पूरी करेंगे, बल्कि हम दुनिया के लिए बहुत बड़े एक्सपोर्टर निकल के आएंगे. अमित, यह ध्यान रखना चाहिए, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट होता है, जिसको चिप हम बोलते हैं, उसको सेटअप करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, तो समय लगता है. असहज पके सो मीठा होए, किसी ने कहावत बोली है. तो मुझे लगता है आप 1-2 साल और इंतजार करिए, अगले साल इसी समय इस प्रश्न को फिर करिएगा, तब इस परिस्थिति का हम आकलन करके और आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा. जी.
3: From Delhi we are joined in by Captain Jagmal. A warm welcome, Captain.
6: हाँ सर.
3: जी
6: सर. मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, कोहली साहब को भी नमस्कार.
2: नमस्कार कैप्टन साहब.
6: सर मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये सवाल पूछा था लेकिन वो बीच में रह गया था आधा
2: जी।
6: मैंने 2013 में एक 46 लाख की कोई प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदा था
2: जी,
6: वो भी बैंक से, डिफॉल्टर्स का होता ना ऑप्शन
2: जी जी जी,
6: उसमें जी। पूरा सब अच्छा। और अभी मैंने मुझे बिका वो 38 लाख का
2: अच्छा
6: मुश्किल। तो उसमें जब हमने वो रिटर्न भरी
2: जी,
6: हेलो
2: जी जी जी,
6: हाँ जी, रिटर्न भरी तो उसमें वो कैपिटल लॉस वो पुराने फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर रहा है। और मैंने गूगल वगैरह में देखा, मैंने थोड़ा आपको याद आया होगा मैंने बात करी थी आपसे
2: जी,
6: तो
2: जी।
6: वो कह रहे गवर्नमेंट ने 2023 में
2: जी
6: 24 जुलाई को उसमें थोड़ा सा कोई ट्विस्ट कर दिया कि कैपिटल गेन तो आपको पुराने फॉर्मूले से मिलेगा लेकिन कैपिटल लॉस वो केवल जो
2: जी
6: सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है
2: जी
6: उसका डिफरेंस मिलेगा
2: जी जी जी,
6: जो कभी कहीं 80 लाख के करीब लॉस बन था वो करीब 8 लाख के करीब वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसमें
2: जी जी जी।
6: अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने जुलाई में रिटर्न भरी थी
2: जी,
6: उसके साथ जो मेरी फैमिली की बाकी रिटर्न भरी थी उनका सबका वो आ गया फाइनल, पर रिफंड भी आ गया
2: जी।
6: ये जब से अब से उन्होंने होल्ड की हुई है
2: जी जी
6: उसमें भी।
2: चलिए कैप्टन साहब, आपने जो बात करी ये आप ये जिस का जिक्र कर रहे हैं निखिल राजेश, ये ग्रैंडफादरिंग पोजीशन प्रोविजन लाए थे क्योंकि एक डेट से ही जो जब से 12.5% किया टैक्सपेयर को ऑप्शन दी गई पुरानी प्रॉपर्टीज पे आप इंडेक्सेशन लेके या विदाउट इंडेक्सेशन लेके आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लॉस को ऐसे ले रहा है क्योंकि प्रॉफिट में क्या है कि कैप्टन साहब वो आपको दो ऑप्शंस देता है कि आप इंडेक्सेशन लीजिए या आप 12.5% इंडेक्सेशन लेके आप 20% देंगे, पर अगर आप इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो वो 12.5% सीधा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करता है, परंतु ये लॉस में ऐसा नहीं है। जब आप लॉस है तो लॉस सीधा सीधा आप इसको, क्योंकि आपका 8 लाख का सीधा लॉस दिख रहा है तो वो लॉस उस तरीके से नहीं सीधा इसमें कैलकुलेट करा जाएगा। बिल्कुल 8 लाख जो दिख रहा है आपको वो इस समय सही दिखाई दे रहा है, इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करिए या आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक आपका प्रोसेस होकर नहीं आया, तो जो नॉर्मली कैप्टन साहब ने देखा है जो जिन रिटर्न्स में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है उनमें प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, बाकी की आपकी घर की जो रिटर्न्स हैं वो सिंपल रिटर्न्स होंगी तो ये भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका इंतजार करिए। अभी तो आपने जुलाई में फाइल ही किया है, अभी तो हम मुश्किल से 1.25 महीना ही वहां से चलकर आए हैं, तो आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर आप तक, और दिसंबर से पहले तो पक्का ही आ जाएगा, तो क्योंकि आपकी कैपिटल लॉस है इसलिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बाकी प्रोसेस जो कैलकुलेशन दिखा रहा है वो मुझे सही नजर आ रही है जी।
0: भिलाई से रवि हमारे साथ है, रवि जी आपका प्रश्न क्या है?
7: नमस्ते शरद सर, नमस्ते।
2: नमस्ते रवि जी,
7: अभी एक मिस्टर प्रसाद के जवाब से क्यों लेते हुए पूछ रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग वाली बात पे
2: जी,
7: कि मेरा जो है म्यूचुअल फंड पे करीब 2018 से जो है SIP करते जा रहा हूँ
2: जी,
7: और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी।
2: अच्छा अच्छा,
7: और मुझे फंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है अभी
2: जी,
7: और मैं ये SIP कंटिन्यू करके रखूंगा
2: जी,
7: तो क्या मुझे भी प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए कि मैं रख छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि शायद रखूंगा तो रीइन्वेस्ट होता रहेगा तो और मतलब उसका प्रोग्रेशन अच्छा रहेगा बढ़ने का।
2: रवि बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत ही काम का सवाल है, मुझे लगता है बहुत लोगों का ही होगा। रवि मैं यहाँ सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करते चलिए, क्योंकि आपने कहा आपका डबल से ज्यादा हो गया है, आप आगे कंट्रीब्यूट करते रहिए पर पीछे जो प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक जो अभी मैंने प्रसाद साहब को बोला था प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, क्योंकि मार्केट जो है बहुत चैलेंजिंग आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से बहुत चैलेंज थ्रो कर रही है। आई मीन आई होप कि आपने जहां जिस फंड में किया हुआ है वो बहुत अच्छा फंड है, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, पर मार्केट जो पीछे कर रही है कोई गारंटी नहीं होती वो आगे करे, और जो आगे होने वाला होता है ये जरूरी नहीं कि पीछे ऐसा हुआ हो, तो इसलिए मैं सलाह दूंगा क्योंकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो मैं सलाह दूंगा कम से कम आधे का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के आधे में बने रहिए और आगे करते रहिए। आप देखिए, फिर वही बात आती है जो मैंने मिस्टर प्रसाद को कहा था, आप सुन रहे थे, कि बहुत स्पेसिफिक जवाब तो जब भी दिया जा सकता है जब हम यहां फंड्स के नाम लें, कौन से सेक्टर के हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, या आपने कोई हाइब्रिड लिया हुआ है, या आपने कोई लिक्विड फंड लिया हुआ है, कौन से फंड आपने लिए हुए हैं, डिफेंस में है कि एफएमसीजी में है, फंड्स के नाम क्या है, तो बाकी डिटेल्स। तो
3: क्वेश्चन इज दैट वंस ही बुक्स द प्रॉफिट, व्हाट शुड ही डू विद दैट अमाउंट? शुड ही पुट इट इन एफडी? शुड, व्हाट शुड ही डू?

0: मुझे लगता है कि आई थिंक राजेश व्हाट रवि शुड डू इज कि अगर प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो सवाल यह है कि पैसे का करें क्या, ये भी एक समस्या बन जाती है. लोग तो पैसे कहते हैं पैसे है नहीं. आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू नो यू कैन प्रॉब्ली लुक एट सम गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs. ऑल्दो यू मस्ट पे अटेंशन टू द डिस्क्लेमर विच राजेश रेड इन द बिगनिंग दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी टेकन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. बट इफ आई वॉज यू रवि आई वुड हैव पुट सम इन गोल्ड एंड सिल्वर ETFs बिकॉज इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई फील द लॉन्ग टर्म ग्रोथ prospects are looking very good. So some you can keep liquid in your FDs and all that, but maybe you don't need funds, but be very watchful. मुझे लगता है ये जो समय है ना रवि, ये पैसे कुछ पैसे को कई बार नहीं इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है. तो इसको रख के थोड़ा वॉचफुल रहिए. यहां से नवंबर तक जब तक अमेरिका में मिड टर्म पोल है, काफी उतार चढ़ाव मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं. बहुत रोलर कोस्टर टाइप राइड दिख रही है. तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए.
1: कुछ मेंटेन्स दिस स्टेटस को
0: वेल. व्हाट आई व्हाई आई सजेस्टेड हिम टू बुक प्रॉफिट इज बिकॉज इन केस मार्केट टेक्स अनदर शॉकर और इनकी कुछ NAV नीचे आ जाती है, तो इन्होंने जो अभी तक डबल हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और अच्छा प्रॉफिट है रवि, मैं मानता हूं डबल होना एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको कुछ बुक करिए. हो सकता है कम हो गया राजेश, तो फिर मैं देखिए मैं ये नहीं चाहता कि रवि का जो है जो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है वो चला जाए. सो रवि आई वुड सजेस्ट बुक सम एंड री इन्वेस्ट इन स्टॉक ETF. कीप सम लिक्विडिटी विद यू, बी वॉचफुल, कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड देन जम्प इन यू नो द मोमेंट यू फाइंड. आप मार्केट मंत्रा से तो रेगुलर जुड़ते हैं, हम समय समय पर उसकी चर्चा करते रहेंगे. और हाँ राजेश और निखिल, प्रॉफिट बुक करें तो हमें रेडियो के माध्यम से एक आध लड्डू वड्डू अगर दे दे तो अच्छी बात. जी
2: और दिल्ली से ही हमारे आज के अगले श्रोता है सतपाल सिंह. सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए.
3: सर नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
3: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार और सतपाल जी को नमस्कार.
0: नमस्कार
3: जी. सर जी मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ डेली में, जो आपका गोल्ड सिल्वर चाहती है
0: जी.
3: और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है 12 सितंबर को
0: जी,
3: तो इसमें क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इसके ऊपर जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा?
0: बिल्कुल डिस्कशन होगा जी.
3: हाँ जी. दूसरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी के क्या रहेंगे एक्सपर्ट के 2-3 साल में?
0: चलिए पहला आपका ब्रिक्स से संबंधित है. ब्रिक्स पे जो मुझे एजेंडा रहने वाला है यू नो राजेश, आई थिंक निखिल भी अग्री करेंगे, डिफेंस, ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे चर्चा तो अनिवार्य है. मुझे लगता है होगी ही होगी, क्योंकि ब्रिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि शांति, विश्व शांति बनी रहे. इसके अलावा ट्रेड पर, डिफेंस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर और कुछ कल्चरल बात भी होगी. म्यूचुअल जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए भारत उसके ऊपर भी चर्चा होगी. बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ब्राजील के साथ चर्चा हो सकती है. रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है. चाइना आई थिंक डिस्कस करना चाहेगा, जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई है उसके लिए चाहेगा कि ब्रिक्स एक डिक्लेरेशन दे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ इशारा हो, अमेरिका की तरफ इशारा हो, खुलना चाहिए दुनिया का ट्रेड नॉर्मल. और ये जो ट्रेड एम्बार्गोस लगाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये सब चर्चा होगी. और मुझे लग रहा है दबी आवाज में या शायद अनऑफिशियली डिक्लेरेशन ना, एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कहीं पर शायद एक बैकडोर डिस्कशन होगा, क्योंकि डॉलर ने जिस प्रकार से दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है और डॉलर की वजह से बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं. मुझे नहीं पता ऑफिशियली को डिक्लेयर, क्योंकि पिछली ब्रिक्स समिट में जब डॉलर पे चिंतन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी उखड़ गए थे, नाराज हुए थे. तो अब उनको नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा सीधे तौर पर. तो ये सब चर्चाएं होने की उम्मीद है. निफ्टी आपने पूछा 2-3 साल में, मुझे लग रहा है 2-3 साल में तो प्रॉस्पेक्ट बुरे नहीं है, पर थोड़ी सी सतपाल जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको लेके मैं आजकल विशेष चिंतित हूं. पता नहीं मुझे लग रहा है मैं ज्यादा चिंतित हूं या सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्योंकि रशिया नेटो के बीच में युद्ध और घमासान हो गया है, ईरान यूएस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहे. तो ये थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखिए, संभल के चलने का वक्त है ऐसा मुझे लगता है.
1: Moving on, Wall Street ended lower yesterday as hotter than expected employment data fueled concerns over a possible rate hike. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. For the week, Nasdaq rose 0.4%, S&P 500 eked out 0.1% gain, while Dow dropped 0.3%. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 162,000 in August, while the unemployment rate remained unchanged at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Sharad, a possible rate hike?

0: You know, the Truth Social post made by President Trump about Fed to, you know, threatening that they should not increase the interest rates, else he's going to stop trading with the countries on which the U.S. runs deficit. I have my doubts, although the economic principle-based assessment says yes. But somehow I feel that it just may not be done, you know, looking at the political situation in America at this point of time.
1: Okay. Global crude oil prices rose sharply over the week as disruptions around the Strait of Hormuz entered their seventh month, driving up the geopolitical risk premium in global energy markets. During the week, Brent crude November futures surged by 9.3% to settle at $96.28 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 9.7% to end at $91.48 per barrel. Since we're talking about crude, which is one of the reasons why, despite strong domestic economic data, our domestic equity indices declined for the fourth consecutive week. What could be on the anvil?
0: I think the markets are looking outwards. You know, the markets are overpowered or overwhelmed by the crude oil prices, Iran, US tensions, dollar index, bond yields. So the markets somehow are just forgetting that the country is doing great guns. We've got 7.8% GDP. So the markets start looking inwards. They'll be happy, but the markets are looking outwards, which I think this is something which is beyond anybody's control. I hope the operators and traders are listening to us and they better start looking inwards.
2: दिल्ली से हमारे आज के अगले श्रोता हैं जय किशन
3: जी. नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
3: मैं आपको प्रणाम करता हूं. मेरी एज 82 ईयर है और आई एम ए टोटल ब्लाइंड. अच्छा. मैंने भी 5 साल पहले होम लोन लिया था 25 लाख रुपए का
0: जी,
3: HDFC बैंक से
0: जी.
3: अब उन्होंने 10 साल के लिए एक किस रेगुलर बांध दी कि 28,000 रुपए पर मंथ आपको जमा कराना है
0: जी.
3: कोई दिक्कत नहीं है. 5 साल से मैं जमा करा रहा हूँ साहब
0: जी.
3: ये जो मेरा पेमेंट है वो ब्याज में जमा हो रहा है
0: जी.
3: अब पहले स्टेट बैंक से ये होता था कि भाई जो आप किस्त जमा कराई 28,000 रुपए की, पहले महीने आपने 56,000 जमा हुए तो उसका ब्याज कम हो जाता था
0: जी.
3: लेकिन अभी 10 साल तक मेरा अगर ब्याज में सारा पैसा कैपिटल जाता रहेगा तो फिर एंड के अंदर जो है मेरे को कैसे फायदा होगा? ये कटुआ ब्याज तो लगा नहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो 24% से भी ब्याज लगता है साहब. तो कृपया ये बताएं कि मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा एंड में जमा कराने के बाद.
2: प्रेम जीत जी, पहले तो हमारा भी आपको सादर प्रणाम. आपकी बात ठीक है. ये हाउसिंग लोन की एक टिपिकल प्रॉब्लम है निखिल राजेश, के शुरू में वो ब्याज लेते रहते हैं. मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है तो शुरू के सालों में वो ब्याज लेते हैं. और जो बात की प्रेम जीत जी, जो किस्त होती है आखिर की, उनमें आप तो आप अगर एक किस्त को देखेंगे तो उसमें ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा होगा शुरू में. और प्रिंस अजय किशन जी, क्षमा करें, क्षमा चाहता हूं, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट एंड में कम होगा, पर शुरू में इंटरेस्ट का ज्यादा होगा और प्रिंसिपल का बहुत कम होगा. तो ये एक टिपिकल जयकिशन जी तरीका है इन लोगों का रीपेमेंट लेने का. आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद नहीं है, पर उनकी उनकी मंशा ये होती है कि लोग लोन लेके कई दफे बहुत जल्दी वापस कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो जल्दी वापस लोन कर रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप तो उनके लिए ग्राहक हैं, उनको लोन में से प्रॉफिट कमाना है. तो वो चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आप बने रहें, तो शुरू में वापस करेंगे तो आपका घाटा है, क्योंकि आप पूरा वापस कर देंगे, जो दिया होगा वो सब ब्याज में चला जाएगा. इसलिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल जब एंड आने लगता है, लास्ट के 3-4 साल होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाएगा और ब्याज कम जाएगा. बदकिस्मती से जयकिशन जी ऐसा ही है. मैं चाहूंगा अब एक बार मिल ले बैंक से, हो सकता है आपकी आपकी जो कंडीशन है उसको देख के शायद वो कुछ आपको रिवाइज करना चाहे आपकी किस्त वगैरह.
4: दिल्ली से ये प्रेमजीत जी हमारे साथ है. प्रेमजीत जी, बहुत जल्दी से आपका सवाल पूछिए.
5: सर, आप सब लोग को हार्दिक बधाई. और गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि सर, आपको सुन के लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं.
0: अच्छा.
5: और जैसे आप मेरा द्रोणाचार्य हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ. अब लोग ये पूछने लगे हैं सर कि क्या गोल्ड और सिल्वर भी मतलब ब्लैकआउट हो सकता है क्या सर?
0: ब्लैकआउट हो सकता है? नहीं, ब्लैकआउट का मैं अर्थ नहीं समझ पाया. ब्लैकआउट का मतलब कि लोगों को मिलना खरीदना बंद हो जाए? नहीं, ऐसा तो प्रेमजीत जी कभी नहीं हुआ, ना हमने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार से बोला है ब्लैकआउट हो जाता है. कहीं इन्होंने ये सुना होगा कि आगे विश्व युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी

0: साबित होगी, उसकी वजह से
1: एज ए
0: सर्वर्स
1: कमोडिटी तो नहीं हो
0: सब पर
1: सकता।
0: कमोडिटी जो हार्ड फॉर्म में है गोल्ड सिल्वर, बल्कि वो तो ज्यादा सुरक्षित मैं उसको मानता हूं। और कोई कंफ्यूज नहीं हुए प्रेमजीत जी, कोई कभी कंफ्यूज करने का तो मार्केट मंत्रा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी शंका निवारण होगी।
1: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया,
2: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices declined for the fourth consecutive week. Sensex and Nifty falls around 1%. US stock market indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव

कार्यालय सेवा फोरम सीएसएस की सीएसएस शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Lalima Aneja Dang. President Draupadi Murmu today said that a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teacher

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
2: देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय।

0: जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
1: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के एक क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
0: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की मूर्ति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
0: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियों पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोड़ से सीखने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
2: परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में यानी हमारे कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है। और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से IIT का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूँ लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
5: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किए, जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल

0: बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल गणित प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे मूंगफली के जरिए बीज गणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और UPI के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदलकर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है।
1: समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा

0: व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

0: श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में।
1: नमस्ते। जवाब दे देते हैं नमस्ते का। नमस्ते। भारत के गौरव और अभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, श्री अजय श्रीराम, श्री रजत शर्मा जी, प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रोफेसर मलिका कुमार और एसआरसीसी को एसआरसीसी बनाने वाले जो यहाँ सारे बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपने युवा विद्यार्थियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने एसआरसीसी में एडमिशन लिया। आपको अपने इस निर्णय पर हमेशा गर्व रहेगा। ये एसआरसीसी की उपलब्धि है और एसआरसीसी की ताकत भी है, उसके लिए भी एसआरसीसी का बहुत बहुत आभार। आज शिक्षक दिवस है, उसके लिए भी मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि शिक्षक केवल पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट के बिना भी शिक्षक शिक्षक होता है। आप सभी को उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। आज शताब्दी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है, तो ये अचीवमेंट्स को याद करने का भी दिन है और अगले कुछ दशकों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने का भी दिन है। सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है, सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री का आना हुआ है, जिन्होंने रात दिन केवल भारत को जिया है और भारत के लिए जिया है, भारत को जिया और भारत के लिए जिया है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प और उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम, संकल्प एक बात है, उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम राही मासूम रजा की कुछ पंक्तियां याद दिलाता है, जो मैं कहना चाहूंगा कि इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थककर सो गई। आज के इस चुनौतियों से भरे विश्व में, जहां हर रोज एक नया संकट है, हर रोज एक नई चुनौती है, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, देश के भविष्य के लिए निडरता से निर्णय लेने वाले, देश के लिए जीने वाले, इतनी मेहनत करने वाले, विकसित और सुरक्षित भारत के लिए दिन रात एक करने वाले, भारत के दर्द को और मर्म को समझने वाले, क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? ये युवा भी हैं और युवाओं की तरह सोचते भी हैं। मेरे जैसे न जाने कितने भारतवासी जब कभी परेशान होते हैं, तुम सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी की लगन, संघर्ष और परिश्रम से हम प्रेरणा लेते हैं कि जब इतना ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, तो एक शक्ति का संचार हम सब में, भारत के लोगों में होता है। ये एक भारत के लिए, हमारे लिए बहुत ही शक्ति का पुंज है। तो फिर मैं वही बात पूछता हूं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? एक और बात, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है, निष्ठा धृति सत्यम, समर्पण दृढ़ता और सत्य, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते इन्होंने जो अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट किया, साकार कर दिखाया है और उसको जीते हैं, इसके लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय गर्व करता है। ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसआरसीसी के 100 वर्ष में एसआरसीसी ने वो कर दिखाया जो संसार का हर इंस्टीट्यूशन करना चाहता है, जो सपना लेता है वो एसआरसीसी ने करके दिखाया। अगले 50 वर्ष में एसआरसीसी को विश्व में बहुत बड़ा बनना है। यह दिन ऐसा संकल्प लेने का भी दिन है कि हमको कैसे आगे जाना है, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान बढ़ाना है। एसआरसीसी को, ये इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बिजनेस का इंस्टीट्यूशन है, तो देश आपसे ज्यादा अपेक्षा करता है। इसे स्टार्टअप्स का कैपिटल बनाने का संकल्प लेने का भी दिन है। वो दिन भी आए कि कल को कोई इंस्टीट्यूशन कहे कि यदि स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है तो एसआरसीसी को विजिट करो, एसआरसीसी में देखो, यहां सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश की चिंता करने का मन बनाए रखना, अपने देश में इतना सामर्थ्य है कि वे आपके हित की चिंता कर लेगा, उसकी चिंता करना। मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और एसआरसीसी के सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: थैंक यू सर। वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंस्पायर द यंग माइंड्स विद योर एड्रेस।

Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, dignitaries on the dais and off the dais, because dais pe bhi dignitary hai, samne bhi main dekh raha hu, bahut dignitaries baithe hue hain. I think this is the speciality of the SRCC. All my dear students and everyone present here, it is a great honor for all of us to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji today at Sri Rama College of Commerce. I think, as I have understood, Ajay ji, when Prime Minister came in 13, he was Chief Minister at that time. Today, as the Prime Minister of India, he has first time visited Sri Rama College of Commerce. Friends, आज शिक्षक दिवस भी है. इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं. आज एसआरसीसी का 100 साल पूरा हो रहा है इस बरस. किसी भी इंस्टीट्यूट को 100 साल तक चलाना और उसी रेपुटेशन के साथ चलाना, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए बहुत लोग जो अलुमिनास बैठे हैं और बाकी सब लोग इसके लिए त्याग और तपस्या किया है, उन सभी लोगों को इस लेवल पर लाने के लिए मैं सभी को शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं. जैसे रजत जी उल्लेख कर रहे थे, जस्टिस नारिमन, जस्टिस सिकरी, अरुण जेटली और स्वयं रजत शर्मा जी के सहायक बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं.

Friends, in 1926, SRC established Hua. After that, means after 1926, after 21 years, we got freedom. Today, Prime Minister has given us call that in coming 21 years, Bharat should become विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत. उसमें आपके जिम्मेदारी भी बहुत है. उसी के साथ आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ विकसित भारत. ये भी मैं आपको नम्रता से याद दिलाना चाहता हूं. इसी विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए. मुझे इसलिए भी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, एसआरसीसी ने इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक किया है, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं. मैं हायर एजुकेशन में जो हुआ है वो भी मैं एक ही सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं. हायर एजुकेशन में टोटल इस बार 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स एडमिशन हुआ है. इन लास्ट 10 इयर्स इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1 करोर. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द 10 ऑलमोस्ट 12 इयर्स ऑफ श्री मोदी गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम एंड प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप, आज भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. And I would like to only tell you, before 2016, when Startup India was launched, that mission was launched, less than 400 startups were there. Today, more than 2,30,000 startups are there in India. They are from Delhi to Bengaluru to Tier 2 cities. Hamare jo bacche hai, aur usme startup mein hai, aur SRCC ka bhi बहुत ही स्टूडेंट ये स्टार्टअप में है. आने वाले समय में भारत को, दुनिया को रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की जरूरत है और हाई क्वालिटी सर्विसेज का भी जरूरत है. उसके लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस जो है उसका भी जरूरत है और उसका रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है. ग्लोबल मार्केट में there is already a significant gap as far as skill human resources concerned. India ke paas is samay jaise mananiya pradhanmantri ji ne bola hai, yahi samay hai, sahi samay hai, bharat ka anmol samay hai. To ye opportunity kyun hai? Because India is the youngest country of the world, highest young population is in India. Aur usi ke sath pradhanmantri ji ne ये यंग इंडिया को स्किल बनाने में और स्किलिंग इकोसिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में नयापन लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया और स्किल एक्सपांशन के लिए बहुत कार्यक्रम किया है. इंडिया के इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर मीन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 7.8% हुआ है. एंड जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है और भारत द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिया, दैट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. आज भारत में जो उपयोग होते हैं, 99% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसी के साथ एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं. इसीलिए एजुकेशन, स्किलिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ देखना जरूरी है. उसी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं. इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो ग्लोबल स्किलिंग हब भी हमको बनना है और इस दिशा में हमको काम करना है. फॉर दैट वी नीड एनर्जी. मैं आपको और एक आंकड़ा बता के मेरा वाणी को विराम देता हूं. वेन Prime Minister Shri Modi ji took over in 2014, the total generation of the electricity

0: was 249 gigawatt. Aaj, today, 552 gigawatt of energy is generated, and that is also one of the reason for the manufacturing. जो मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ रहा है उसका वो भी एक कारण है. उसमें विद इन दैट 552 302 इज थ्रू नॉन फॉसिल सोर्सेज एंड 165 गीगावाट इज थ्रू सोलार. मैं इस सोलार के बारे में एक सेंटेंस बताता हूं सिर्फ और बाद में मेरे वाणी को विराम करता हूं. 2014 के बाद हमारे सोलार प्रोडक्शन और विंड प्रोडक्शन जो हुआ है इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम हुआ है और पर्यावरण के भी पॉजिटिव परिणाम हुआ है पर्यावरण के ऊपर. बट मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले भी सूर्य था, सूरज था, सूरज में तेजी भी था, लेकिन उस एसयूएन सन में प्रधानमंत्री जी ने शक्ति को देखा. ही हैज रिकॉग्नाइज दी एनर्जी इन दिस सन एसयूएन सन. एंड इससे पहले भी जो थे एट दैट टाइम इट वाज ओनली 2.6 गीगावाट सोलार एनर्जी एंड वी रीच टू 165 गीगावाट. मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एसयूएन सन का शक्ति का रिकॉग्नाइज किया और वो शक्ति को फॉलो किया और देश को जनता को दिया. पहले वाले थे जो थे वो एसओएन सन के पीछे पड़ा और सन स्ट्रोक हो गया. इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है. आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलने वाला है. फिर एक बार मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
1: Namaskar. Thank you, sir, for your motivating and energizing words. Ladies and gentlemen, now we arrive at the historic moment everyone has been waiting for. 13 years back, I was the anchor. It was my privilege. And today again, an honor for me to request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, a leader par excellence and inspiration for billion dreams, to please deliver the SRCC centenary address. Adarniya Pradhan Mantri ji, aapke aashirvachan ke liye hamara vinamra nivedan. Thank you.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डीयू के वीसी योगेश सिंह जी, एसआरसीसी के प्रिंसिपल सिमरित कौर जी, अजय जी, मल्लिका जी, रजत जी, एसआरसीसी के जुड़े हुए सभी साथी, फैकल्टी, स्टाफ, एसआरसीसी अलमनाई और मेरे युवा साथियों, मैं छठा खिलाड़ी हूं.

आज का ये अवसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये देश के शिक्षा जगत के लिए भी उतना ही अहम है। यहां एसआरसीसी का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को एसआरसीसी के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।

मैं इसके संस्थापक सर श्रीराम जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके विजन को नमन करता हूं। साथियों, जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वो गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज की वहां एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी, और आज वही छोटा सा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसने कई पीढ़ियों को छांव भी दी है और अपनी शीतलता से समृद्ध भी किया है। आज भी डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है। साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है।

जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई और रजत जी ने बड़ी लंबी सूची बताई थी और इनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे अरुण जेटली जी यहीं पढ़े थे, और मैं कह सकता हूं कि शायद हमारी कोई मुलाकात ऐसी नहीं होती थी कोई एसआरसीसी की कोई घटना न सुनाते हो। और कभी कभी मैं तंग आ जाता था कि एक ही घटना बार बार सुनाते थे। अभी मेरी टीम में भाई संजीव सन्याल भी यहीं से पड़े हुए हैं, बाकी भी काफी साथी हैं यहां मेरे। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, कितने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले हैं। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है।

धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है। खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी, और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था, लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था, और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के तीन नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। और तीसरा, जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था

जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से आधा हवा से। और उस समय आप सब तो स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था, जैसे एलओसी पर

होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है, माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग

रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। बावजूद इसके, जिन लोगों के लिए साल 2013 में ग्लास आधा खाली था, उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनके लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहेगा। मैं ग्लास की बात करता हूं और कुछ खाली रहने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, 2013 में यहां एसआरसीसी में बात करते हुए मैंने P2G2 यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की थी। जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं, उनका एक स्टाइल था, जब आग लगे तभी नींद से जागो, जब सूखा पड़े तब जाकर कुआं खोदो। मैंने इसी अप्रोच को बदलने की बात कही थी और 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों। हाल में ही जनधन योजना को 12 साल पूरे हुए। आज आप फिनटेक के अलग ही दौर में जी रहे हैं, लेकिन 2013 के वो दिन भी थे जब गांव या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते थे। उस समय हमारी आबादी 125 करोड़ के पार थी, लेकिन मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबर थे, स्टूडेंट थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है।

ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। साथियों, 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा, और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2014 में भारत अपने ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था, आज भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। आप डिफेंस सेक्टर देखिए, पहले भारत की सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए। पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे, फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है।

आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देखेंगे जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है और इन संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए देश में लगातार काम हो रहा है। साथियों, अभी तो आपकी जिंदगी एसआरसीसी मोड में चल रही है, को-ऑप में चाय हो, या कोल्ड कॉफी पर होने वाली डिस्कशन हो, एग्जाम में लास्ट मिनट नोट्स और प्रिंट आउट के लिए भागदौड़ करना, या फिर क्रॉस रोड्स और बिजनेस क्राउन के ऊपर भी कई मेहनत। आप सब ने यहां के हर मोमेंट को अपने जीवन की एक मेमोरी बनाया है। लेकिन इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को

कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं, उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा पर एक परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाई यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा भी मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। जो काम पहले दशकों में होता था अब वो कुछ वर्षों में ही हो रहा है। मैं पूरे फैक्ट के साथ एक और उदाहरण दूंगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, आपकी कॉलेज 1926 में शुरू हुई, इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 में चली थी ये ट्रेन, इसके बाद 2014 तक यानी 90 साल में सिर्फ 30% से भी कम काम हुआ। 30% से भी कम रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था। हमने सिर्फ 12 साल में रेलवे लाइनों का करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया। साथियों, भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब नए बाजार खुलते हैं भारत के गुड्स और सर्विसेज के लिए टैरिफ कम होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है।

लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा, ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे हैं, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं आपको फिर एक बार पुराने दिनों में ले जाना चाहता हूं। याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो पूरी सरकार हिल गई थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2008 में बैंकों का संकट आया था तो तब की सरकार ने 2000 तक उस संकट के पीछे छुपने की कोशिश की थी, हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह होने की कगार पर पहुंचा दिया गया था। 2008 में ही मुंबई में भयंकर आतंकी हमला हुआ था तो तब की सरकार पर बाहर से दबाव पड़ा और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। साथियों, पिछले 12 वर्षों में तो देश में कई सारी आपदाएं आई, कितने बड़े बड़े साइक्लोन हमने झेले हैं, लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया। पिछले 6 वर्षों में तो बहुत बड़े संकट आए, पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, फिर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद ट्रेड को, सप्लाई चेन को ही वेपनाइज करने का दौर शुरू हो गया, फिर वेस्ट एशिया का ये संकट आया। हर बार ये कहा गया कि अब तो भारत नहीं बचेगा, और जो मेरे ज्यादा ही प्रशंसक है वो ये सोचकर खुश थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी गिरा, अब तो उसे कुचल ही देंगे। लेकिन मेरे देश के लोगों के आशीर्वाद में इतना दम है, इतना दम है कि भारत का बुरा चाहने वालों की हर हसरत धरी की धरी रह जा रही है। दोस्तों, अब 21वीं सदी में नए अवसर

करोड़ों की दुनिया हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि आप एम्बिशियस हैं, क्योंकि एम्बिशन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती। एम्बिशंस उस माहौल से आती हैं जो आपके बड़े सपने देखने के लिए आपको प्रेरित करती है। आज हमारा नौजवान साथी कहता है कि अपना कुछ काम करूंगा तो स्टार्टअप करूंगा, कंपनी बनाऊंगा तो यूनिकॉर्न बनाऊंगा, स्पेस और ड्रोन जैसे सेक्टर से जुड़ूंगा कुछ बड़ा करूंगा, कटिंग एज एआई सॉल्यूशन बनाऊंगा, खेती में इनोवेशन करूंगा। 13 साल पहले आपके सीनियर्स ऐसे सपने नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आप ये सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के भारत में उन सपनों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी बन गया है। साथियों, अब समय बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने का है। अभी मैंने लाल किले से कुछ बातें कही थी, मैं आपके बीच भी उन्हें दोहराना चाहूंगा। आप संकल्प लीजिए, भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म्स, हमारी लीगल फर्म्स, हमारी फाइनेंशियल फर्म्स, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें। साथियों, ये सब संभव है। इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी है और नॉलेज भी है। साथियों, हमारी आपकी प्रेरणा एसआर

एक है उगता हुआ सूरज और दूसरा है समंदर में आगे बढ़ता हुआ जहाज। सूरज जो दिशा दिखाता है और जहाज जो दिशा में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे नए रास्ते पर चलना है जिसमें सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो, उड़ान हमारी हो, आसमान हमारा हो, तेज हवाओं से टकराए वो जज्बा हमारा हो, सपना हमारा हो, संकल्प हमारा हो, आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा हो, विकसित भारत की राह में, विकसित भारत की राह में तेजी से उठता हर कदम हमारा हो। एक बार फिर इस विशेष अवसर पर एसआरसी से जुड़े सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे।

0: of sporting events across all 7 districts, bringing opportunities closer to the youth. The initiative aims not only to promote sports but also to build a healthier, disciplined and drug-free generation in Ladakh. For SportsCan, this is Anadali from Kargil, Ladakh.
1: लद्दाख में एक शानदार मुहिम जहां युवाओं को खेल के मैदान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच यूएस ओपन मुकाबला भी अब धीरे धीरे अपने चौथे पांचवें चरण की तरफ बढ़ गया है। बेन शेल्टन ने डेनिस शापोवालोव को 3 घंटे 22 मिनट चले मुकाबले में हराकर पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में जगह बनाई, जबकि टियाफो ने वेटलिन वचेरोड को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। वहीं एम्मा नवेरो ने यूएस ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर करते हुए 7वीं सीड की कैरोलिना मुचोवा को 6-3, 7-5 से हराया। और अब धीरे धीरे कार्यक्रम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और एक बार वापस दुबई में खेले जा रहे भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर नजर डाल लेते हैं। विशेष इस समय स्कोरबोर्ड पर क्या हलचल नजर आ रही है?
2: शक्ति, पाकिस्तान 6 विकेट गंवा चुकी है 35 रन के स्कोर पर और 9 ओवर का खेल हो चुका है। भारतीय गेंदबाज उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है दहाई का आंकड़ा भी छूने में मुश्किल उनको नजर आ रही है।
1: जी बिल्कुल, अब तक श्री चरणी और शैफाली थी और अब एक एक विकेट दीप्ति शर्मा और पेमा रावत ने भी ले लिया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्सकैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें sportscan की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
4: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के

0: लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60

0: हल्के होंगे,
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रूबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
10: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
9: द प्राइम मिनिस्टर सेड एसआरसीसी हैज गिवन जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ग्रो एंड मेक अ डिफरेंस ओवर द इयर्स। मिस्टर मोदी सेड द कॉलेज हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स मेकिंग अ मार्क फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ही टर्म्ड द एलुमनाई ऑफ एसआरसीसी एज वेरी स्पेशल एंड द ओजीज। The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit

0: में जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ सरीखे, बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
1: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था, और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं, और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे, अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है, और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है, और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं, और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाते

ये संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथेय बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले, जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को, जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था, उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है, यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है, और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है, जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में, मनुहारों में, क्या आंसू में, उद्गारों में, आवाहन में, अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली, मैंने तो अपने प्रिय की छांह को, यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है, और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है, और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है, और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है, तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार, ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे न समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है, महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है, लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं, जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं, कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है, दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है, और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है। दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है,
लेकिन दरअसल

0: दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहती है महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखते हो, सीधी बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीति का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानो दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनतकश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया उसके साए में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्मदिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
5: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
4: जी,
5: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
4: जी,
5: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
4: जी।
5: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
4: जी।
5: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदास मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
4: जी,
5: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
4: जी।
5: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
4: जी।
5: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही उसे लोगों ने

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्द कोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी,
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगु।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना इसका क्या मतलब। तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय, वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद।
0: जी,
1: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता है,
1: वाला भी समझ सकता है,
0: और एक प्रोफेसर भी समझता है,
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता
0: है। ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल सा थर थर, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी,
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो, मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता हिंदी भाषा

0: राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
1: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं, तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने, बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में खा क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित

0: किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरीशचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने

0: दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। श्री मोदी ने SRCC के विद्यार्थियों की भी सराहना की जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। श्री जोशी ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्कशक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में नाडिग्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के ही कारण संभव हो पाई है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत और नेपाल के बीच बचाव का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर भी भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास स्काइरूफरेवस्की से सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंचाए मार्ग का निर्णय भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 56 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में 3 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन पर सिमट गई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज मलेशिया की जोड़ी को 21-16, 18-21 और 21-11 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the

0: Centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Mr. Modi said the world is watching India becoming the fastest growing major economy.
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilimet tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastava, said today work was also underway to construct an access road from nearby Shafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastava elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief operations in the country. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. Today is International Vulture Awareness Day. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, has emphasized the need to protect vultures to secure the...
2: ...diya hai. Shri Modi ne Nai Delhi mein SRCC ke shatabdi samaroh mein upasthit logon ko sambodhit karte hue kaha ki duniya Bharat ko sabse tezi se badhti pramukh arthvyavastha bante hue dekh rahi hai. Pradhanmantri ne kaha ki SRCC ne varshon se chhatron ki kai peedhiyon ko seekhne, aage badhne aur mein SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और इसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
3: India today is self-assured.
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
3: Telling these stories with real pleasure.
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत

0: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस बीच नेपाल, भारत और चीन की बचाव टीमें बाढ़ प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए संयुक्त अभियान चला रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला न करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय शांति वार्ता के लिए अमरीकी दूतों की कीव यात्रा के मद्देनजर लिया गया। कुछ दिन पहले बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि मानवता के हित में यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत युद्ध रोकने के लिए हर शांति प्रयास का समर्थन करेगा। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच कई वर्षों से संघर्ष जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, बुनियादी ढांचे नष्ट हुए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अमेरिका ने सऊदी अरब के लगभग 5 अरब डॉलर के संभावित सैन्य हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित सौदे में हजारों सटीक निशाना साधने वाली किट, सामान्य इस्तेमाल के बम, कंटेनर, स्पेयर पार्ट्स, सहायता उपकरण तथा तकनीकी और लॉजिस्टिक सेवाएं शामिल हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस सौदे से सऊदी अरब की सुरक्षा मजबूत होगी और इससे अमरीका की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। इन देशों को उम्मीद है कि इन केंद्रों में अगले वर्ष से प्रवासियों को भेजा जा सकेगा। ये समझौता कोपनहेगन में आयोजित बैठक के बाद सामने आया। ये यूरोपीय संघ के उन प्रवासियों को संघ से बाहर तीसरे देशों में भेजने की नई कोशिश है जिनसे चरण आवेदन खारिज हो चुके हैं। इस पहल में डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस शामिल हैं। सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान के 56 रन के लक्ष्य को भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18

0: ओवर और एक गेंद में महज 55 रन पर सिमट गई। श्री चरनी और प्रेमा रावत ने तीन तीन और दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अमृत भूषण विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts that 7.8% GDP growth amid global uncertainty is proof of India's economic resilience. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside Chilime tunnel in the Himalayan nation hit by flash floods. Russian President Vladimir Putin orders 72-hour pause in strikes on Ukrainian capital Kiev. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty reach men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: The Prime Minister added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Syabrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR, operations in the country. Separately, a Bailey Bridge is being built in Devi Ghat to restore connectivity affected by the August 26 floods and landslides. The joint effort underscored active cross-border disaster response and technical collaboration between Indian specialists and Nepalese defense forces. Mr. Srivastav highlighted India's commitment to supporting Nepal through both

0: नमस्ते
1: नमस्ते रवि जी।
0: अभी एक मिस्टर प्रसाद के जवाब से क्यों लेते हुए पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग वाली बात पे
1: जी,
0: कि मेरा जो है म्यूचुअल फंड पे करीब 2018 से जो है SIP करते जा रहा हूँ
1: जी,
0: और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी।
1: अच्छा अच्छा।
0: और मुझे फंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है अभी
1: जी,
0: और मैं ये SIP कंटिन्यू करके रखूंगा
1: जी,
0: तो क्या मुझे अभी प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए कि मैं रख छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि शायद रखूंगा तो रीइन्वेस्ट होता रहेगा, तो और मतलब उसका प्रोग्रेशन अच्छा रहेगा बढ़ने का।
1: रवि बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत ही काम का सवाल है, मुझे लगता है बहुत लोगों का ही होगा। रवि मैं यहाँ सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करते चलिए, क्योंकि आपने कहा आपका डबल से ज्यादा हो गया है, आप आगे कंट्रीब्यूट करते रहिए, पर पीछे जो प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक जो अभी मैंने प्रसाद साहब को बोला था, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, क्योंकि मार्केट जो है बहुत चैलेंजिंग, आप देख रहे होंगे पिछले एक दो साल से बहुत चैलेंज थ्रो कर रही है। आई मीन आई होप कि आपने जहां जिस फंड में किया हुआ है वो बहुत अच्छा फंड है, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, पर मार्केट जो पीछे कर रही है कोई गारंटी नहीं होती वो आगे करे, और जो आगे होने वाला होता है ये जरूरी नहीं कि पीछे ऐसा हुआ हो। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो मैं सलाह दूंगा कम से कम आधे का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के आधे में बने रहिए और आगे करते रहिए। आप देखिए, फिर वही बात आती है जो मैंने मिस्टर प्रसाद को कहा था, आप सुन रहे थे कि बहुत स्पेसिफिक जवाब तो जब ही दिया जा सकता है जब हम यहां फंड्स के नाम ले, कौन से सेक्टर के हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, या आपने कोई हाइब्रिड लिया हुआ है, या आपने कोई लिक्विड फंड लिया हुआ है, कौन से फंड आपने लिए हुए हैं, डिफेंस में है कि FMCG में है, फंड्स के नाम क्या है, तो बाकी डिटेल्स। तो
2: क्वेश्चन इज दैट वंस ही बुक्स द प्रॉफिट, व्हाट शुड ही डू विद दैट अमाउंट, शुड ही पुट इट इन FD, व्हाट शुड ही डू?
1: मुझे लगता है कि आई थिंक राजेश, व्हाट रवि शुड डू इज के अगर प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो सवाल यह कि पैसे का करें क्या, ये भी एक समस्या बन जाती है, लोग तो पैसे कहते हैं पैसे है नहीं। आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू नो यू कैन प्रोबेबली लुक एट सम गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs, ऑल्दो यू मस्ट पे अटेंशन टू द डिस्क्लेमर विच राजेश रेड इन द बिगनिंग दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी टेकन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इफ आई वॉज यू रवि आई वुड हैव पुट सम इन गोल्ड एंड सिल्वर ETFs बिकॉज इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई फील द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स are looking very good. So some you can keep liquid in your FDs and all that, but maybe you don't need funds, but be very watchful. मुझे लगता है ये जो समय है ना रवि, ये पैसे, कुछ पैसे को कई बार नहीं इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो इसको रख के थोड़ा वॉचफुल रहिए। यहां से नवंबर तक जब तक अमेरिका में मिड टर्म पोल है, काफी उतार चढ़ाव मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोलर कोस्टर टाइप राइड दिख रही है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए।
2: So what if कुछ मेंटेन्स द स्टेटस को?
1: वेल व्हाट आई व्हाई आई सजेस्टेड हिम टू बुक प्रॉफिट इज बिकॉज इन केस मार्केट टेक्स अनदर शॉकर और इनकी कुछ NAV नीचे आ जाती है, तो इन्होंने जो अभी तक डबल हो रहा है, मैं ही नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और अच्छा प्रॉफिट है, रवि मैं मानता हूं डबल होना एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको कुछ बुक करिए, हो सकता है कम हो गया राजेश, तो फिर मैं देखिए मैं ये नहीं चाहता कि रवि का जो है जो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है वो चला जाए। सो रवि आई वुड सजेस्ट बुक सम and reinvest in stocks ETF, keep some liquidity with you, be watchful, keep looking for opportunities and then jump in, you know, the moment you find. आप मार्केट मंत्रा से तो रेगुलर जुड़ते हैं, हम समय समय पर उसकी चर्चा करते रहेंगे। और हाँ राजेश और निखिल, प्रॉफिट बुक करें तो हमें रेडियो के माध्यम से एक लड्डू वड्डू अगर दे दे तो अच्छी बात जी।
3: और दिल्ली से ही हमारे आज के अगले श्रोता है सतपाल सिंह। सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
4: सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
4: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार और सतपाल जी को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
4: सर जी मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ दिल्ली में, जो आपका गोल्ड सिल्वर चाहती है
1: जी,
4: और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है 12 सितंबर को
1: जी,
4: तो इसमें क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इसके ऊपर जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा?
1: पहला क्वेश्चन ये है। बिल्कुल डिस्कशन होगा जी।
4: हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी के क्या रहे हैं दो तीन साल में, कहीं सुनने में यह आता कि 35,000 के लेवल तक चला जाएगा
1: जी, जी, जी, जी। चलिए पहला आपका ब्रिक्स से संबंधित है, ब्रिक्स पे जो मुझे एजेंडा रहने वाला है, यू नो राजेश आई थिंक निखिल भी अग्री करेंगे, डिफेंस ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे चर्चा तो अनिवार्य है, मुझे लगता है होगी ही होगी, क्योंकि ब्रिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि शांति, विश्व शांति बनी रहे। इसके अलावा ट्रेड पर, डिफेंस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर और कुछ कल्चरल बात भी होगी, म्यूचुअल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत उसके ऊपर भी चर्चा होगी, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ब्राजील के साथ चर्चा हो सकती है, रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है, चाइना

0: आई थिंक डिस्कस करना चाहेगा जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई हुई है, उसके लिए चाहेगा कि ब्रिक्स एक डिक्लेरेशन दे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ इशारा हो, अमेरिका की तरफ इशारा हो, खुलना चाहिए, दुनिया का ट्रेड नॉर्मल, और ये जो ट्रेड एम्बार्गोस लगाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये सब चर्चा होगी। मुझे लग रहा है दबी आवाज में या शायद अनऑफिशियली डिक्लेरेशन ना, एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कहीं पर शायद एक बैकडोर डिस्कशन होगा, क्योंकि डॉलर ने जिस प्रकार से दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है और डॉलर की वजह से बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित है। मुझे नहीं पता ऑफिशियली को डिक्लेयर, क्योंकि पिछली ब्रिक्स समिट में जब डॉलर पे चिंतन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी उखड़ गए थे, नाराज हुए थे, तो अब उनको नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा सीधे तौर पर। तो ये सब चर्चाएं होने की उम्मीद है। निफ्टी आपने पूछा दो तीन साल में, मुझे लग रहा है दो तीन साल में तो प्रॉस्पेक्ट बुरे नहीं है, पर थोड़ी सी सतपाल जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको लेके मैं आजकल विशेष चिंतित हूं। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा चिंतित हूं या सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्योंकि रशिया नेटो के बीच में युद्ध और घमासान हो गया है, ईरान यूएस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, जब तो ये थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखिए, संभल के चलने का वक्त है ऐसा मुझे लगता है।
1: Moving on, Wall Street ended lower yesterday as hotter than expected employment data fueled concerns over a possible rate hike. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. For the week, Nasdaq rose 0.4%, S&P 500 eked out 0.1% gain, while Dow dropped 0.3%. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 1,62,000 in August, while the unemployment rate remained unchanged at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Sharad, a possible rate hike?
0: Well, the Truth Social post made by President Trump about Fed to, threatening that they should not increase the interest rates, else he's going to stop trading with the countries on which the U.S. runs deficit. I have my doubts, although the economic principle-based assessment says yes. But somehow I feel that it just may not be done, looking at the political situation in America at this point of time.
1: Okay. Global crude oil prices rose sharply over the week as disruptions around the Strait of Hormuz entered their seventh month, driving up the geopolitical risk premium in global energy markets. During the week, Brent crude November futures surged by 9.3% to settle at $96.28 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 9.7% to end at $91.48 per barrel. Since we're talking about crude, which is one of the reasons why, despite strong domestic economic data, our domestic equity indices declined for the fourth consecutive week. What could be on the anvil?
0: I think the markets are looking outwards. The markets are overpowered or overwhelmed by the crude oil prices, Iran, U.S. tensions, dollar index, bond yields. So the markets somehow are just forgetting that the country is doing great guns. We've got 7.8% GDP. So the markets start looking inwards, they'll be happy. But the markets are looking outwards, which I think this is something which is beyond anybody's control. I hope the operators and traders are listening to us and they better start looking inwards.
2: दिल्ली से हमारे आज के अगले श्रोता हैं जय किशन
3: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी एज 82 ईयर है और आई एम ए टोटल ब्लाइंड।
0: अच्छा।
3: मैंने भी 5 साल पहले होम लोन लिया था 25 लाख रुपए का
0: जी,
3: HDFC बैंक से
0: जी।
3: अब उन्होंने 10 साल के लिए एक किस्त रेगुलर बांध दी कि 28,000 रुपए पर मंथ आपको जमा कराना है
0: जी।
3: कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल से मैं जमा करा रहा हूँ साहब
0: जी।
3: ये जो मेरा पेमेंट है वो ब्याज में जमा हो रहा है
0: जी।
3: अब पहले स्टेट बैंक से ये होता था कि भाई जो आप किस्त जमा कराई 28,000 रुपए की, पहले महीने आपने 56,000 जमा हुए तो उसका ब्याज कम हो जाता था
0: जी।
3: लेकिन अब ये 10 साल तक मेरा अगर ब्याज में सारा पैसा कैपिटल जाता रहेगा तो फिर एंड के अंदर जो है मेरे को कैसे फायदा होगा? ये कटुआ ब्याज तो लगा नहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो 24% से भी ऊपर ब्याज लगता है साहब। तो कृपया ये बताएं कि मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा एंड में जमा कराने के बाद?
0: प्रेमजीत जी, पहले तो हमारा भी आपको

0: आदर प्रणाम। आपकी बात ठीक है, ये हाउसिंग लोन की एक टिपिकल प्रॉब्लम है निखिल राजेश, के शुरू में वो ब्याज लेते रहते हैं। मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है तो शुरू के सालों में वो ब्याज लेते हैं, और जो बात की प्रेम जी जो किस्त होती है आखिर की, उनमें आप तो आप अगर एक किस्त को देखेंगे तो उसमें ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा होगा शुरू में, और प्रिंस अजय किशन जी क्षमा चाहता हूं, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट एंड में कम होगा, पर शुरू में इंटरेस्ट का ज्यादा होगा और प्रिंसिपल का बहुत कम होगा। तो ये एक टिपिकल जयकिशन जी तरीका है इन लोगों का रीपेमेंट लेने का। आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद नहीं है, पर उनकी उनकी मंशा ये होती है कि लोग लोन लेके कई दफे बहुत जल्दी वापस कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो जल्दी वापस लोन कर रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप तो उनके लिए ग्राहक है, उनको लोन में से प्रॉफिट कमाना है, तो वो चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आप बने रहे, तो शुरू में वापस करेंगे तो आपका घाटा है, क्योंकि आप पूरा वापस कर देंगे जो दिया होगा वो सब ब्याज में चला जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल जब एंड आने लगता है, लास्ट के 3-4 साल होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाएगा और ब्याज कम जाएगा। बदकिस्मती से जयकिशन जी ऐसा ही है। मैं चाहूंगा आप एक बार मिल ले बैंक से, हो सकता है आपकी आपकी जो कंडीशन है उसको देख के शायद वो कुछ आपको रिवाइज करना चाहे आपकी किस्त वगैरह।
1: जी, दिल्ली से प्रेमजीत जी हमारे साथ है। प्रेमजीत जी, बहुत जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
2: सर, आप सब लोग को हार्दिक बधाई, और गुरुदेव मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि सर आपको सुन के लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं।
0: अच्छा,
2: और जैसे आप मेरा दुर्माचार्य हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ, अब लोग ये पूछने लगे हैं सर कि क्या गोल्ड और सिल्वर भी मतलब ब्लैकआउट हो सकता है क्या सर?
0: ब्लैकआउट हो सकता है? ब्लैकआउट का मैं अर्थ नहीं समझ पाया। ब्लैकआउट का मतलब कि लोगों को मिलना खरीदना बंद हो जाए? नहीं, ऐसा तो प्रेमजीत जी कभी नहीं हुआ, ना हमने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार से बोला है ब्लैकआउट हो जाता है। कहीं इन्होंने ये सुना होगा कि आगे विश्व युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी प्रभावित होगी, उसकी वजह से सर्वर
3: कमोडिटी तो नहीं हो
0: सब, पर कमोडिटी जो हार्ड फॉर्म में है गोल्ड सिल्वर, बल्कि वो तो ज्यादा सुरक्षित मैं उसको मानता हूं, और कोई कंफ्यूज नहीं हुए प्रेमजीत जी, कोई कभी कंफ्यूज करने का तो मार्केट मंत्रा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी शंका निवारण होगी।
1: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया,
3: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल्स अराउंड 1%। US स्टॉक मार्केट indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
2: देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आप

0: सामने खड़ी हूँ। साथी मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
1: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
0: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
0: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियों पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोड़ से सीखने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुँचें, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से

0: ऊपर ले जाना, विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों ही कहीं उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
2: परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में यार हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है, और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से IIT का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
5: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किए, जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे

0: मूंगफली के जरिए बीजगणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और यूपीआई के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदलकर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है।
1: समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ता है, तो कोई मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। शिक्षक दिवस हमें ऐसे ही योगदानों को याद करने और शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने और तकनीकी सहयोग दिया अक्षत ममगाई ने। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-0940044।
4: सुर्खियों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से SRCC गए और कॉलेज के

0: शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद और में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore.

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है दस्तक खुशियों की। इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

इस साल का सबसे युवा और सर्वाधिक कामयाब स्टार्टअप के वर्ग में जो विजेता कपल है उसका नाम है मनस्वी और सार्थक, एंकर ने कहा। स्टार्टअप की दुनिया में आप दोनों रोल मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने नई सोच, हिम्मत और मेहनत के साथ स्टार्टअप को नया आयाम दिया है। ये एक ऐसे युवा स्व उद्यमी है जिन्होंने मेड इन इंडिया की सोच को गति दी है, प्रगति दी है, और आज ऐसे ही लोगों की कामयाबी को हम मना रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं मनस्वी और सार्थक से उनकी कामयाबी का राज। एंकर ने ये प्रश्न किया तो सार्थक ने कहा, देखिए दिल्ली में 3 साल तक मैंने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया। उस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लोग घर पर बैठे अपने दरवाजों पर उस दस्तक का इंतजार करते हैं कि कोई उनके लिए चीजें डिलीवर करे। इंतजार करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और डिलीवर करने वाले बहुत कम। तो हमारा पहला स्टार्टअप था डिलीवरी सर्विस ट्रेनिंग। उधर मनस्वी ने भी बताया कि वो कनाडा से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के वक्त महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट कर रही थी और उसकी टीम को बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था। उसी वक्त उसने सोच लिया था कि भारत लौटकर वो जरूर कुछ अपना काम करेगी और उसकी खुशकिस्मती कि उसे सार्थक का साथ मिला। मनस्वी ने कहा, हमारा दूसरा स्टार्टअप डिलीवरी गर्ल्स की ट्रेनिंग और टीम तैयार करना था। एंकर ने फिर पूछा, आपका लेटेस्ट स्टार्टअप का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सार्थक बोला, इसका श्रेय तो मम्मी को जाता है। उन्हीं का आइडिया था कि ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को घर जैसा खाना बनाकर खिलाएं, डिलीवर करें तो फिर आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत सारी गृहणियां हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं और फूड डिलीवरी सर्विस भी करना चाहती हैं, पर नहीं जानती कहां से करें, कैसे शुरू करें। तो हम लोगों ने फूड फ्रॉम किचन टू ऑफिस ऐप शुरू किया और अगले 2 साल में हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गृहणियों को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएं। एंकर ने फिर पूछा, कुछ और बताइए अपने सफर के बारे में। सार्थक ने बताया, देखिए कोई भी सफर हो ना, वो एक कदम से शुरू होता है, बशर्ते वो कदम सही दिशा में हो। अगर सही हम सफर मिल जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं खुशकिस्मत रहा कि हौसला देने वाली मेरी माँ और सही राह दिखाने वाली मेरी हमराही मनस्वी दोनों मेरे साथ थे। पर इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद में दिल्ली आ गया। फिर मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करना भी शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, मैं कई बार गिरा, पर माँ की बात याद रहती, इरादे अगर नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते

अभी भी याद है 5 साल पहले का वो दिन, कहर मानसून का ऐसा जैसे सैलाब आ गया हो। क्या रास्ते, क्या मकान, हर तरफ पानी पानी, यातायात तो ठप, घर से बाहर निकलना दुश्वार। कितने सारे पेड़ गिर गए और सारे एरिया में बिजली गायब। ऐसे मौसम में सार्थक डिलीवरी करने के लिए निकला। डिलीवरी अपूर्व को देनी थी। अपूर्व के घर में बारिश के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और घर में खाने योग्य कुछ भी नहीं था। जब उसने डिनर का ऑर्डर दिया तो बाहर का नजारा देखकर मायूस

हो गया। यहाँ पेट में आग लगी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था डिलीवरी बॉय, रेनकोट पानी से तरबतर। बिजली नहीं है ना, इसीलिए डोरबेल नहीं बजाई, अपूर ने खाने का पैकेट लेते हुए कहा। तो लिफ्ट भी बंद हो गई होगी ना, तुम 7वीं मंजिल तक पैदल आए? वो मुस्कुराया। पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश या ऑनलाइन? अपूर ने पैसे दिए और बोला, गरम चाय लोगे या कॉफी? बोलो थैंक यू सो मच, और भी बहुत जगह फूड डिलीवरी करनी है। अगर कुछ देना चाहते हैं सर तो बस अच्छी ऑनलाइन फीडबैक दे देना और रेटिंग दे देना। श्योर श्योर, क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक संघवी। खाने का पैकेट खोलने से पहले अपूर ने मोबाइल पर ऐप खोला, सार्थक को 5-star रेटिंग दी और लिखा, बेस्ट डिलीवरी बॉय।

कर देना, इस बार उन तीनों का बोनस भी मुझे दे देना। दोनों हंस पड़े। तभी मैनेजर का मोबाइल बज उठा। कंपनी के सीईओ का कॉल था। बात पूरी होते ही सार्थक ने पूछा, ऑल वेल? हाँ। बिग बॉस ने बताया कि अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के दो डिलीवरी बॉयज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोल्डन अपार्टमेंट में जो लड़की से छेड़खानी का केस था, उसकी सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों बॉयज की क्लिपिंग मिली है। सारी मीडिया में उसका हो हल्ला हो रहा है। सार्थक ने सूप खत्म करते हुए कहा, कुछ ऐसे बदमाश लड़कों के कारण सबका नाम खराब होता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारी सर्विस फीडबैक तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छी है, बेस्ट रेटिंग मिल रही है। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा। उसने फोन को काट दिया। मैनेजर ने पूछा, भाई ये कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल करता है और तुम हमेशा अवॉइड करते रहते हो? फोन फिर बज उठा। इस बार सार्थक ने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो माँ, बेटा मैं टीवी पर देख रही हूँ, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब माँ मानसून है तो बारिश तो होगी ना? बेटा सब तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए कॉल तो करेंगे ना। तुमने फिर से मनस्वी का फोन काट दिया? माँ मैं काम पर हूँ, प्लीज। देखो बेटा, अपने पार्ट टाइम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के साथ साथ कभी अपने लिए, अपने अपनों के लिए भी तो वक्त निकालो। ओके मम्मी जी, और कोई हुक्म? अच्छा, बड़ौदा कब आ रहे हो, घर कब आओगे बच्चे? अब पहले एग्जाम तो दे दूं, डिग्री मिल जाए, अपनी पहचान तो बनाऊं। तुम और तुम्हारे बहाने। चलो ऐसा करो, एक बार मनस्वी से बात कर लो, वो बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। माँ मुझे अब रूम पर लौटना है, बारिश बहुत तेज है, बाद में कॉल करूं, बाय।

बाद रिव्यू मीटिंग थी। मैनेजर बोले, देखिए आज कंपनी सीईओ खुद समीक्षा मीटिंग में शामिल होंगे, सब तैयार रहना। सीईओ ने आते ही कहा, बॉयज अब त्योहारों का सीजन शुरू होगा, हमारा टर्नओवर ग्राफ डबल होना चाहिए। हाँ, आर वी रेडी? यस सर, सभी ने बोला। किसी को कोई शिकायत या कोई फीडबैक? सर वो डिलीवरी के लिए जब हम बाइक पर जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है, कंपनी की पंच लाइन है सबसे तेज डिलीवरी, और स्पीड पर गौर करते हैं तो ट्रैफिक नियमों से पंगा हो जाता है। देखो भाई, रोड रूल्स तोड़े बगैर स्पीड और सेफ्टी में जो बैलेंस बनाए वही होते हैं बेस्ट डिलीवरी बॉय। पर सर कुछ कस्टमर्स तो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि दिमाग घूम जाता है। क्लाइंट इज द किंग या क्वीन, याद रहे सिर्फ खाना डिलीवर करने जाते हो, कोई दोस्त बनाने नहीं जाते। और सर अक्सर ये जो रेस्टोरेंट से हम फूड पिकअप करने जाते हैं ना, उनकी पैकेजिंग इतनी खराब होती है कि खाना गिर जाता है। सीईओ ने कहा, देखो सिर्फ डिलीवरी पर ही नहीं पिकअप पर भी ध्यान देना सीखो, वो बहुत जरूरी है। सर ये हमारे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। सीईओ बोले, एक बार फिर हाईएस्ट रेटिंग एंड बेस्ट फीडबैक है सार्थक। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा, उसने कॉल काट दी। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, गो हेड टेक द कॉल। माँ मीटिंग चल रही है, सार्थक बोला। ओ मैं बाद में करूँ क्या? नो नो इट्स फाइन, अब बोलो। आपकी आवाज से तो लगता है आप बहुत खुश हो। ऑफ कोर्स, दो दो वजह है। पूछोगे नहीं? मेरे पास कोई और चॉइस है, सुनना तो पड़ेगा, बताओ। रूपा मेहता ने बताया कि तुमने उनके लोन की आखिरी किश्त भी चुका दी है। ऑफ कोर्स माँ, रूपा आंटी और संजय अंकल ने तो मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की है, आप ही से तो सीखा है किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे। माँ आप खुशी की दूसरी वजह भी बताने वाली थी ना? हाँ बेटा, वो रूपा जी ने जो नया क्लाउड किचन शुरू किया है ना, मेहता जी अब उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं। हेड शेफ मैं ही होंगी, और उनको तो तुम्हें पता ही है कि मुझ पर कितना भरोसा है। वो चाहते हैं कि काम और बढ़े। मनस्वी अगले महीने कनाडा से आ रही है ना? मनस्वी का नाम सुनते ही सार्थक अनमना हो गया, बोला, माँ मैं फोन रखता हूँ, डिलीवरी के लिए जाना है। माँ की बेस्ट फ्रेंड रूपा मेहता की इकलौती बेटी मनस्वी स्कूल के दिनों से ही सार्थक को चाहती थी, लेकिन सार्थक चाहता था समन्विता को। पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था, माँ के केटरिंग काम में सार्थक हाथ बटाने लगा। वहीं अचानक से समन्विता दिल्ली चली गई और सार्थक भी आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का असली कारण था समन्विता को ढूंढना। 3 साल गुजर गए लेकिन कभी भी समन्विता को भुला नहीं पाया।

पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के काम और स्टार्टअप की पढ़ाई को वो इतनी शिद्दत से करने लगा कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं रहता था। सार्थक के मैनेजर ने कहा, सार्थक आज ये जो ऑर्डर है ना, ये बड़ा हाई एंड क्लाइंट है और ये स्पेशल केक है और साथ में फ्रेंच क्यूजीन है। देखो संभाल कर डिलीवरी करना। हाँ, एड्रेस दिया, रिहायशी इलाके में पेंट हाउस था। सार्थक ने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी समन्विता। इतने सालों बाद अचानक उसको देखकर सार्थक के मन में जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। सांसें रुक गईं, मन ही मन पूछ बैठा, अचानक कहाँ चली गई थी? कोई खबर भी नहीं, ना कोई पता। साथ थे, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या कोई मजबूरी थी? मैं तुम्हें भूल नहीं सका, शहर छोड़कर भी देख लिया, तुम्हें भूल नहीं पाया। ये सब प्रश्न उसके मन में ही चल रहे थे। कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, कौन है समन्विता? और समन्विता बोली थी, कोई नहीं, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उस आदमी ने कहा, पार्सल रिसीव कर लो, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है। सार्थक चुपचाप खड़ा रह गया। तो क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पैकेट लेते हुए पूछा था, तुम दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? वो कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसने कहा, त्योहार के दिन आए हो, रुको, टिप देना तो बनता ही है। फिर से उस आदमी की आवाज आई, क्या हुआ समन्विता? समन्विता ने पीछे मुड़कर आवाज दी, कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय को टिप दे रही हूँ। वो पर्स लेने अंदर मुड़ी, सार्थक फौरन वहां से निकल गया। सार्थक के आंसुओं को अच्छा बहाना मिल गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादलों से बरसते पानी के साथ आंखों का खारा पानी भी घुल मिल गया। बाइक चलाते वक्त समन्विता नाम का पागलपन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया था। सिर्फ डिलीवरी बॉय? बार बार ये बात उसके मन में गूंज रही थी।

ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने कहा, दरवाजों पर डोरबेल बजाकर घर घर तुम सिर्फ खाना नहीं देते सार्थक, खुशियाँ डिलीवर करते हो। और देखो आज खुशियाँ खुद तुम्हें तलाशते यहाँ आ गई हैं। देखो कौन है? सार्थक ने मुड़कर देखा, माँ और मनस्वी। सरप्राइज! मनस्वी के हाथ में केक था। बोली, अब तक तो मेरे फोन को अवॉइड करते थे, ये लो आज अपने बर्थडे केक को काटो, वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। सार्थक भावुक हो गया, वो भूल गया था आज उसका बर्थडे है। वो माँ से गले लगकर रो पड़ा। मनस्वी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, डिडंट मीन टू अवॉइड यू, बट अपने काम और पढ़ाई को लेकर मैं। माँ बोली, अब बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले केक काटो। मनस्वी ने कहा, और बर्थडे बॉय के साथ हम करेंगे डिनर। सार्थक बोला, जिंदगी का बेस्ट बर्थडे सरप्राइज मिला है, थैंक यू सो मच आने के लिए और मम्मा को भी साथ लाने के लिए। देखो मैं इंडिया आते ही सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कुछ तो ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। सार्थक, बचपन से ही हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, क्या दिल की बात मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मनस्वी, प्राइमरी स्कूल से हम साथ पढ़ते थे, पर पापा के अचानक गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। तो क्या तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल लगता था सार्थक? नहीं नहीं मनस्वी, इनफैक्ट तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे और मेरी माँ को बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की, माँ को काम दिलवाया। तुम और तुम्हारी फैमिली कितने अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम मेरे साथ ही थी। मैं यहाँ समन्विता को ढूंढने आया था, मेरी दोस्त समन्विता।

मुझे मालूम है। सीरियसली, तुम ये जानती थी? सार्थक, मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम दिल्ली किस लिए गए हो। तुम दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नहीं जानते, तुम खरा सोना हो। तुम अपनी कामयाबी पर मोहर लगा सकते हो। सार्थक भावुक हो गया, बोला, मनस्वी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज जीवन का नया साल शुरू हो रहा है। मैं नए नजरिए से जिंदगी को निहारना चाहता हूँ, नए रिश्तों की बुनियाद रखना चाहता हूँ, और उससे भी पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए और तुम्हारे फोन अवॉइड करने के लिए। मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्त तो हम हमेशा से रहे हैं। हाँ, आज से हैं पक्के दोस्त।

एंकर ने खनकती आवाज में कहा, वाकई इसमें प्रेरणा भी है और प्यार भी। सार्थक जी वापस आइए। सार्थक ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जब कोई स्टार्टअप की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो अपनों के सहारे की बहुत जरूरत होती है। शुरुआती दौर

संघर्ष से भरा होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैदान छोड़कर भाग जाने का मन करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मेरे जीवन की नारी शक्ति ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज अगर मेरी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो है मेरी माँ और मनस्वी। तभी मैं क्षितिज की उड़ान ले पाया हूँ।

तो दोस्तों, ये थी कहानी दस्तक खुशियों की, जिसे आपके लिए लिखा था शीतल शाह ने। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर उन्हें खुली आंखों से देखा गया हो। आज की कहानी, जिसमें सार्थक ने जिंदगी शुरू की एक डिलीवरी बॉय से और बन बैठा एक बहुत बड़े स्टार्टअप का मालिक, इसमें भी तो थे उसके देखे गए सपने, मेड इन इंडिया के सपने, उसकी सोच जिससे कि स्टार्टअप को मिली थी गति और प्रगति। तो संभव सब कुछ है, जरूरत है अगर आप मन में कोई भी बात ठान लें, कोशिश करें, तो जरूर कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। और इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज की कहानी दस्तक खुशियों की। रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रिय तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्य

0: राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said, India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports are now exceeding 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि आपके बीच। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशीं क्या बात करूं। क्या बात करूं जो अक्स था मेरी आंखों में, जो छोड़ गया एक शाम कहीं क्या बात करूं। क्या बात करूं ये लोग भला कब सुनते हैं, सब बातें अंदर डूब गईं क्या बात करूं। क्या बात करूं मेरे साथी मुझसे छूट गए, वो लोग नहीं वो ख्वाब नहीं क्या बात करूं। आता ही नहीं होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशीं क्या बात करूं, क्या बात करूं।

अब वो गलियां वो मकां याद नहीं, कौन रहता था कहां याद नहीं, कोई उजला सा भला सा घर था, किसको देखा था वहां याद नहीं।

अब वो गलियां वो मकान याद नहीं, कौन रहता था कहाँ याद नहीं। भाई जब बात होती है किसी के यादों की, किसी के साथ की और किसी के साथ मोहब्बत की, तो कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल बहुत तसल्ली पा जाता है, चाहे दिल कितना भी बेकरार क्यों ना हो। तो चलिए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में इशारा फिल्म का ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, खैर औरों ने भी तो चाहा है तुझसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, देखता और न ठहरता तो कोई बात भी थी, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना, तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, बस किसी वक्त बुरा लगता है तन्हा होना, ये अलग बात की मुमकिन

दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ।

जाता हूँ, कुछ दूर तुम्हारे साथ जाकर देख लेता हूँ। अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए, अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए। तेरी बातों को ख्वाबों में मिलाकर देख लेता हूँ। हवाएं जिनकी आंधी खिड़कियों पर सर पटकती हैं, मैं उन कमरों में फिर शम्मा जलाकर देख लेता हूँ। उड़ाकर रंग कुछ होठों से, कुछ आंखों से, कुछ दिल से। उड़ाकर रंग कुछ होठों से, कुछ आंखों से, कुछ दिल से। गए लम्हों की तस्वीरें बनाकर देख लेता हूँ। तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ।

मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, जिसकी सांसों से महकते दरो बाम तेरे, ये मकां बोल अब मकां वो मकीं रहता है। रोज मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए, इश्क में वक्त का एहसास कहाँ रहता है। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ. शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ. शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce SRCC in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
1: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. Aaj Duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared the smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as a very special ones and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden 4-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section of the Indian community in Saudi Arabia and Indian business leaders, entrepreneurs and professionals during the visit. He will interact with Indian workers, reflecting the government's unwavering commitment to the welfare of Indian workers overseas. The Ministry of External Affairs highlighted that the visit will provide an opportunity for both sides to discuss issues of mutual interest in the areas of human resources, skill development, environment, climate change and international affairs, and further strengthen the multifaceted strategic partnership between India and Saudi Arabia. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, yesterday said work was also underway to construct an access road from nearby Siafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, with around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. The central government has formally deferred the house listing operations for Census 2027 in Manipur until further declaration, according to a notification issued by the Ministry of Home Affairs yesterday. The notification issued by the Office of the Registrar General of India amended the earlier Census 2027 notification dated January 7, 2026 by inserting amendment words except the state of Manipur till further declaration in reference to house listing operations in all state and UT. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत। फिल्म है सड़क, आवाज है कुमार शानू की।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, उन्हें कैसे बताएं हम कि वो कैसे लगे हमको। हम उनको सोच में गुम देखकर वापस पलट गए, वो अपने ध्यान में बैठे हुए अच्छे लगे हमको। भाई जब इश्क मोहब्बत और प्यार हो जाता है तो ये जो दिल है वो शेर व शायरी भी करने लगता है। यकीन नहीं आ रहा आपको तो सुनिए ये गीत, फिल्म है साजन।

चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, क्यों तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया। दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हंस के बोला करो बुलाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका है घर आया जाया करो।

रात सुरमई के हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ ही गए हैं दोस्तों, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत। बहुत खूब कहा है किसी ने कि सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं, सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं, दो खज को चाहता हूँ कि जन्नत पे वार दूं, इतनी सी है तसल्ली कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहाँ भी अपनी कयामत पे वार दूं, एक ख्वाब था जो देख लिया नींद में कभी, एक नींद है जो तेरी मोहब्बत पे वार दूं, इतनी सी तसल्ली है कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहाँ भी अपनी कयामत पे वार दूं।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी जल्द ही अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी

0: ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियांग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "The world is watching India become the fastest growing major economy." Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. President Draupadi Murmu yesterday appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. A press communique issued by the Rashtrapati Bhavan informed about it. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh, has also served as Deputy Chief Minister of the state. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden 4-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section of the Indian community in Saudi Arabia and Indian business leaders, entrepreneurs and professionals during the visit. India and Nepal rescue teams are continuing.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

तुझे देखा तुझे चाहा। चले तो दोनों ही थे एक साथ, चले तो दोनों ही थे एक साथ, पता नहीं कैसे रास्ता भटक गए। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, पता नहीं बीच में कैसे अटक गए। की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, पर यहां गलतियां तुम मेरी और हम तेरी समझ गए। रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के, रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के, फिर भी पता नहीं कैसे रास्ता भटक गए।

राह चलते जो मिल जाते थे कभी, राह चलते जो मिल जाते थे कभी, अब तो बुलाने से भी नहीं आते। आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, अब तो उनके सपने भी नहीं आते। शिकायत खुद से करूं या खुदा से, शिकायत खुद से करूं या खुदा से, रहते हैं वो दिल में और उनके ख्याल दिमाग से नहीं जाते। 3:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तजुर्बा ए ज़िंदगी हासिल किया है बाहर घूम घूम कर, तजुर्बा ए ज़िंदगी हासिल किया है बाहर घूम घूम कर, किताबी ज्ञान मुझे कम ही आता है। डूबे रहते हैं लोग दिन रात किताबों में, डूबे रहते हैं लोग दिन रात किताबों में, मुझे तो अब लोगों के चेहरे पढ़ना भी आता है। 3:40 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

हकीकत मानो या फसाना, हकीकत मानो या फसाना, तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। दिल लगाने को अच्छा है ये बहाना। रहते हो इतने पास तो मिलते क्यों नहीं, रहते हो जब इतने पास तो मिलते क्यों नहीं। यूं बिना वजह ईद का चांद क्यों ही बन जाना। मिल गए कभी जो तुम हमसे, मिल गए कभी जो तुम हमसे राह चलते, तो फिर क्या बनाओगे ये सोच लो बहाना। हकीकत मानो या फसाना, अब तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। 3:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, अब करना क्या है कोई मुझे ये बता दे। हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, या फिर तू ही मुझे कोई नया रास्ता दिखा दे। 3:56 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षक क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के IoN डिजिटल जोन सीतापुर परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हुई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत

वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ईस्ट, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश टिल टुमारो. मीनवाइल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल येस्टरडे रिसीव द मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल. द वेदर डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो प्रिडिक्टेड द सेम वेदर कंडीशन विल प्रसिस्ट टूडे एज वेल. And in women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a Group A match of the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE yesterday. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, हर रिश्ते में होती हैं कुछ तो मजबूरियां। सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, पर कुछ भी ठीक ना चले ना बढ़ाइए रिश्तों में वो दूरियां। 4:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

0: एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, वरना जिंदगी तो सफर कर ही रही है। घूम लो तुमको जहां जितना मर्जी है घूमना, घूम लो तुमको जहां जितना मर्जी है घूमना, वरना ये धरती तो घूम ही रही है। घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, वरना घर बैठे तो ये जिंदगी गुजर ही रही है। चार बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:34 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी हर्षित के साथ।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन में तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब की रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के ION डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark of academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilimet Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, yesterday said work was also underway to construct an access road from nearby Siafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief HADR operations in the country. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till tomorrow. Meanwhile, different parts of the national capital yesterday received moderate to heavy rainfall. The Weather Department has also predicted that the same weather condition will persist today as well. And in women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a Group A match of the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE yesterday. Pakistan had set a target of 56 runs for India. India achieved the target comfortably, scoring 57 for 3 wickets in 8.7 overs. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं और हमेशा की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज का दिन कुछ नया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक प्यारे से गीत के साथ।

तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है, तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है, ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, कुछ आज भी हैं, कुछ कल भी थी और कुछ आगे भी रहेंगी। 5:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सो कर उठने को जागना नहीं कहते। 5:27 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।